0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आई थिंक द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लव स्टोरीज जो मैंने इस दुनिया में देखी हैं वो सब एक एयरपोर्ट पर देखी है. अभी रिसेंटली आई वॉज गोइंग टू हिमाचल टू मीट माई पेरेंट्स एंड एयरपोर्ट पर एक बंदा था जिसकी गर्लफ्रेंड उसे एक बहुत ही क्यूट सी सा छोटा सा फ्लावर का बुके देकर सी ऑफ कर रही थी. आई डोंट नो वॉट फ्लाइट ही वॉज ऑन, नॉट माई फ्लाइट, बट वी वर इन द सेम एयरपोर्ट फॉर अ वाइल. एंड ये बंदा, इसके पास दो पीसेज ऑफ लगेज हैं, ही इज नॉट कैरिंग अ डैम अबाउट दोज टू पीसेज ऑफ लगेज, बट उसके लिए ना वो फ्लोरल बुके इतना इम्पॉर्टेंट था, उसे अपने जिगर से ऐसे लगा कर रखा था ना उसने, कि उसे देखते ही मेरे मन से ऐसे आ रहा था कि पूकी वाला लव. इतना पूकी बंदा. आई लुक्ड अप टुवर्ड्स द यूनिवर्स एंड आई वाज लाइक, हे भगवान, इतने साल सिंगल रखने के बाद अगर मेरी जिंदगी में एक कोई भी लड़का, कभी भी लड़का आएगा, लेट हिम बी लाइक दिस पूकी ड्यूड यार. और अगर आपने भी अपनी जिंदगी में ऐसे लव एंड रोमांस को ब्लॉसम करते हुए देखा है एट द मोस्ट अनयूजुअल प्लेसेस, I really want to hear your story, Morning Glory. और वो बताने के लिए आपको मुझे ढूंढना होगा on the gram या Facebook. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. So go ahead, darling, do what you need to do. लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.
2: Oh God, one more.

0: only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आप जो पार्टीज में अपना भाव बढ़ाने के लिए लोगों को ये कहते रहते हो कि आप एक प्रोफेशनल पोल डांसर हो, वेयर द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपके सामने पोल आ जाए तो आपको समझ ना आए उसके साथ करना क्या है, लाइकली यू विल स्मैश योर फेस इनटू द पोल, ऐसे झूठ पकड़े जाएंगे तो कैसा लगेगा आपको?
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: But if you have a secret confession, feel free to hit me up Insta पर या FB पर. I'll be so happy to talk to you. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
3: हाय रोशी,
1: हाउ आर यू?
3: आई एम गुड.
1: आप गुड तो नहीं साउंड कर रहे थे जब आपने मुझे अपना कन्फेशन भेजा था इंस्टाग्राम पर. क्या हो गया आपकी जिंदगी में? इज अभा सर,
3: बस पूछो ही मत यार रोशी.
1: अभी बोल रहे थे आई एम गुड, अब शुरू हो गए. बस पूछो मत रोशी, इतना खराब हुआ है मेरे साथ.
3: इट्स सच एन ऑकवर्ड सिचुएशन ना, मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ.
1: वही मैं बोलने वाली थी, बताना तो पड़ेगा. हाँ तो
3: यस. सो अभी थोड़े दिन पहले ही ना मेरी एनिवर्सरी थी, मेरी 5th एनिवर्सरी थी. ओके,
1: तो शादी की एनिवर्सरी?
3: नहीं नहीं, मतलब ऐसे बॉयफ्रेंड है तो हमारी एनिवर्सरी,
1: रिलेशनशिप एनिवर्सरी. ठीक है,
3: एग्जैक्टली
1: राइट.
3: तो हमने एक अच्छा सा सोचा, एक अच्छा सा एयरबीएनबी ढूंढेंगे एंड वी विल स्पेंड सम क्वालिटी टाइम. ओके, विद माय बॉयफ्रेंड आई विल स्पेंड
1: सम क्वालिटी टाइम. तो सिर्फ एयरबीएनबी में ही स्पेंड होता है ऑफ कोर्स.
3: यस, तो हमने बुक कर लिया एंड बहुत एकदम पसंद की लोकेशन पे मिला एंड एवरीथिंग वाज वेरी परफेक्ट. ओके, एंड मूड बिल्कुल ऐसा बन गया था. ओके, और हमने अपना ना एनिवर्सरी केक मंगाया था. तो डिलीवरी बॉय आया और बेल बजी, तो मैं दरवाजा खोलने गई थी. ठीक है, एंड मैं दरवाजा खोला एंड जब मैं डिलीवरी ले रही थी, जब मैं सामान ले रही थी, तभी उसी टाइम पे गेस व्हाट रोशी, उसी टाइम पे मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई और उसकी गर्लफ्रेंड, वो दोनों चल के आ रहे थे उसी टाइम उधर ही. उधर ही, और वो भी एक एयरबीएनबी में जा रहे थे
1: ऑब्वियसली यार.
3: एग्जैक्टली, और हम दोनों की नजरें मिली, आई कॉन्टेक्ट हुआ, हमने एक दूसरे को देखा और वी एंड आई वेंट ब्लैंक. भाई मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मतलब इट वाज सो ऑकवर्ड. उसे क्या लगा होगा मुझे देख के भाई?
1: तुझे क्या लग रहा था उसे देख के भाई? वो भी तो सोच
3: वही वो, मतलब इट वाज वेरी ऑकवर्ड. ओके, कि मैंने उसे रेड हैंडेड पकड़ लिया, उसने मुझे रेड हैंडेड पकड़ लिया एंड उस टाइम पे हम दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं बोला, हम बस वहां से चले गए. बट यू नो रोशी, मेरा तो सारा मूड स्पॉइल हो गया एंड फिर हम कुछ नहीं कर पाए, लाइक मैं और मेरे बॉयफ्रेंड, फिर हम कुछ नहीं कर पाए,
1: सारा
3: मूड स्पॉइल हो गया. हाँ बिल्कुल वैसा ही बस रोशी.
1: केक खाने का मन कर रहा था आपका लेकिन उस टाइम पे? मैं होती हूँ, मेरा तो नहीं करता. आदमी लाइक छोड़ यार केक वेक कुछ नहीं करते, चल घर चलते हैं अपने अपने.
3: वो केक मेरा उसके मुंह पे मारने का मन कर रहा
1: था. आई लाइक दिस वॉयलेंस बेबी, आई लव द वॉयलेंस. अच्छा फिर क्या हुआ? तो आप क्या सिचुएशन है, घर जाके बता दिया आपके भाई ने?
3: नहीं नहीं बताया, फॉर्चुनेटली. अगर वो बता देता तो मैं भी बता सकती थी ना कि वो भी आया था. तो एग्जैक्टली, लेकिन उसके बाद से हम दोनों ने इस बारे में, मेरे और मेरे भाई ने बात नहीं करी इस बारे में एक बार भी. एंड जब भी हम डाइनिंग टेबल में खाने बैठे थे, हम दोनों एक दूसरे को बस एक ऑकवर्ड सी लुक देते थे एंड नजरें चुरा लेते थे, दैट्स इट. और मुझे अभी भी डर लगता है कहीं वो बता ना दे, बट अगर वो बताएगा तो मैं ही बता दूंगी.
1: एग्जैक्टली, तू टेंशन मत कर. और इनफैक्ट यू हैव समथिंग दैट योर ब्रदर डज नॉट हैव. यू नो व्हाट दैट इज?
3: व्हाट?
1: दिस.
4: यू've been roshified.
1: तो आज के बाद आपका भाई पकड़ा जाएगा. बट यू बीन रोशिफाइड, यू आर फाइन, आपको कोई पकड़ेगा नहीं. बिंदास, जो भी करना है अपना बिलेटेड एनिवर्सरी सेलिब्रेट करो. आपको मैं केक भेजूंगी और इस बार केक खाना, एक दूसरे के मुंह पे मत मारना. ओके,
3: थैंक यू रोशी, थैंक यू.
1: इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू यार. आपकी आवाज सुन के ऐसे लग रहा है, पता नहीं आप अंडर एज तो नहीं हो. अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही कोई सीक्रेट कन्फेशन है, फील फ्री टू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. आई विल बी सो हैप्पी टू टॉक टू यू. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: राखी यादों की कारवां है,
1: जहां मीठी करारी नमकीन कई यादें हैं।
0: यही यादें राखी को पूरा करती हैं।
2: अपने सिब्लिंग्स के साथ मीठी तीखी मेमोरी शेयर कीजिए एंड गेट अ चांस टू विन शानदार गिफ्ट हैम्पर्स।
3: क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com। विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
5: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
3: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
6: भाई बहन का रिश्ता होता है प्राइसलेस, तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
7: Celebrate Rakhi with Rajbhog. Rajbhog wishes you a very happy Raksha Bandhan. Orders on Rajbhog.com or visit your local grocery store.
8: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
9: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
8: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
9: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzylin.
10: नो
11: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
12: इंडिया के रंग, सुर और स्वाद सब कुछ एक जगह।
3: एक्सपीरियंस जन्माष्टमी फेस्टिवल विद कृष्णा लीला, ट्रेडिशनल डांसेस, लाइव म्यूजिक, भजन्स, डिलीशियस फूड, शॉपिंग एंड किड्स एक्टिविटीज।
12: संडे अगस्त 23rd 1 to 6 PM, न्यू ब्रंसविक परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर, लोकेटेड एट 9 लिविंगस्टन एवेन्यू, न्यू ब्रंसविक। फ्री एंट्री एंड पार्किंग। आवर वेबसाइट इज www.newbrunswickarts.org। कॉल ट्रेसी एट 9089172862।
0: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
13: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
14: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
15: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
14: ओनली ऑन 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: भाई बहन का रिश्ता होता है प्राइसलेस, तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
1: सेलिब्रेट राखी विद राजभोग. राजभोग विशेस यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन. ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन.
4: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी. हर ड्राइव बनेगी यादगार.
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
5: अब मिर्ची का
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: हम खेतों में जाकर स्ट्रॉबेरीज पिक करेंगे. स्ट्रॉबेरीज पिक करने के बाद एक दूसरे को स्ट्रॉबेरीज खिलाएंगे. दैट साउंडेड सो डिलाइटफुल एंड सो रोमांटिक कि मैंने कहा हाँ हाँ ऑफ कोर्स, कहाँ होती है ये स्ट्रॉबेरी पिकिंग, चलते हैं इस वीकेंड. ये एक ऐसी डेट थी जिस पर शायद मुझे जाना ही नहीं चाहिए था इन द फर्स्ट प्लेस. आई मेट दिस गाय ऑब्वियो ऑन अ डेटिंग ऐप. हम चले गए ठीक है इस स्ट्रॉबेरी पिकिंग स्ट्रॉबेरी फार्म में, और उस दिन इतनी ह्यूमिडिटी थी आई कांट बिगिन टू टेल यू. मतलब जैसे ही नहा के बाहर निकलो ऐसे लग रहा था फिर नहाने की जरूरत है. इस मौसम में जनाब वेंट स्ट्रॉबेरी पिकिंग विद मी. इतनी गंदी छोटी घटिया स्ट्रॉबेरीज, ऊपर से इस बंदे का सेंस ऑफ ह्यूमर उससे

खराब. ऊपर से जब हमने वो स्ट्रॉबेरीज पिक की एंड ही वाज लाइक मैं तुम्हें ये स्ट्रॉबेरी खिला सकता हूँ, आई वाज लाइक आई एम नॉट रियली श्योर, ओके बट ठीक है करके देख लेते हैं. उसने मुझे जो स्ट्रॉबेरी खिलाई ना, मुझे उसकी पर्सनैलिटी से भी ज़्यादा खट्टी स्ट्रॉबेरी. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि अगर आप ये आउटडोर्स ही डेट्स प्लान करना चाहते हो, स्पेशली अपनी फर्स्ट डेट पर, कम से कम एक ऐप पर देख लो मौसम कैसा होगा उस दिन का, क्योंकि इस मौसम ने वो स्ट्रॉबेरी फार्मिंग एंड पिकिंग वाला जो सीन था इतना खराब किया. एंड फाइनली व्हेन एवरीथिंग गॉट ओवर, ठीक है मतलब पसीने में भीग गए, बंदे की पर्सनैलिटी स्टिंक कर रही थी, मौसम स्टिंक कर रहा था, जैसे ही उसने मुझे घर छोड़ा इट स्टार्टेड रेनिंग और मौसम ऑसम हो गया. दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड शायद ये यूनिवर्स कहने की कोशिश कर रहा है दैट दिस गाय इज नॉट रियली मेंट फॉर मी. आपके साथ कभी ऐसी घटिया वाहियात डेट हुई है? अगर हाँ देन आई वांट टू नो योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी. और वो बताने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. एंड व्हाइल यू डू दैट कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: क्या स्वाद नूडल्स बनी है यार. क्या अगर कोई आपके सामने ऐसा करे और आपको वो इंसान डिसेंटली पसंद है, बट ये सुन के क्या आप उन्हें डंप कर दोगे? That's what happened to me and I hate to make this confession, but ये सच है. So this guy and I, ये बंदा मुझे बहुत interested था, मुझे cute भी लगता था. We decided to go out for a dinner date. Unfortunately, मैंने Chinese choose किया and I don't eat fried rice, मैं noodles खाती हूँ. तो noodles आई table पे. इस बंदे ने मुझे देख के कहा कि यार मैंने नया नया चॉपस्टिक से खाना शुरू किया है, तुझे खा के दिखाता हूँ. मैंने फोक यूज किया बिकॉज आई एम रियली बैड विद चॉपस्टिक्स. दिस गाय, इसने चॉपस्टिक्स में अपनी नूडल्स उठाई एंड देन ही वाज लाइक, भाई उसने पूरा का पूरा बोल ऑफ नूडल्स स्लर्प करते हुए खाया है. एंड आई वाज लाइक, आई कांट डू दिस, आई विल नॉट डू दिस. आज के बाद मैं इस बंदे को कहीं नहीं मिल रही हूँ, ऑफिस में, ऑफिस के बाहर, इस पूरे एशिया सब कॉन्टिनेंट में आई एम नॉट मीटिंग दिस गाय. आई अनफॉर्चुनेटली हैड टू कट शॉर्ट उसके सारे एस्पिरेशंस ऑफ अ लव स्टोरी बिटवीन द टू ऑफ अस, बिकॉज भाई तू स्लर्प करके नूडल्स खा रहा है. इट इज NG, मुझे BT दे रही है ये तेरी नूडल्स खाने का तरीका. अगर आपके साथ भी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है दैट यू आर लाइक, यार सब कुछ सही है, बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन इस वजह से मैं इस इंसान को डेट नहीं कर सकता या कर सकती, आई रियली वांट टू नो योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी. और वो बताने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE एंड आई सुपर लव यू. तो कहीं मत जाना, जाना क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
1: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: इंडिया जैसे देश में बहुत कम ऐसा होता है कि एक आदमी की जिंदगी में एक नहीं दो दो औरतें हों, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, व्हाई डोंट यू हिट मी अप एंड लेट्स डिस्कस व्हाट इज रियली नॉट इवन अ प्रॉब्लम। मेरा नाम है मिर्ची रोशनी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ अभी जो इंसान है, व्हाइल यू फाइंड मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, ही डज नॉट वॉन्ट टू रिवील हिज नेम, तो वी विल गो विद मिस्ट्री कॉलर। हेलो मिस्ट्री कॉलर, हाउ आर यू माई डार्लिंग? अरे यार, आई एम तो सेक्सी एज ऑलवेज। ये बताओ कि आपकी जिंदगी में चल क्या रहा है?
1: 4 to 5 years back, कॉलेज में एक्चुअली देयर वाज समबडी, तो मैं जर्नी स्टॉक करता था एंड कुछ पहले ही कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो वो आगे सीन हुआ ही नहीं कुछ। एंड आफ्टर दैट टुडे 4 साल बाद आई गॉट अ मैसेज एंड शी इज आस्किंग कि लाइक पुराने मैसेज मुझे पढ़ के बोलती है कि ये कौन है।
0: तो आपने एक्चुअली
1: मैं वो ही कंफ्यूज हूँ कि मैं प्रेजेंट देखूँ या फ्यूचर वापस मेरे जो सामने आ रहा है वो कंसिडर करूँ कुछ, मे बी कि वो नाम उसने बहुत सालों के बाद पढ़ा होगा तो मे बी शी गॉट कंफ्यूज कि कौन है।
0: अच्छा ठीक है, बट ऐसे कोई मोहब्बत वोहब्बत तो नहीं है ना? शी इज जस्ट ट्राइंग टू लाइक

0: अंडरस्टैंड की आप कौन हो और वो दोस्ती करना चाह रही है, करेक्ट?
1: हाँ जी।
0: और ये तो आपकी पास्ट ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट है। रिसेंटली आपने एक डेटिंग ऐप पर एक एक्सपीरियंस किया था, वो क्या था?
1: मैं मिला किसी से, तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था, मेरा मतलब गर्ल्स के इंटरेक्शन काफी कम है। वी गॉट अ मैच, मतलब मैच हुआ, तो उसके बाद में आई लाइक कंटिन्यूड की रिलेशनशिप के हिसाब से मैंने कभी वो पर्सपेक्टिव सोचा ही नहीं। लाइक आई वाज कंसीडरिंग लाइक मतलब फ्रेंडशिप के टाइम पे, मतलब ऐसे कैजुअली हम बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, क्योंकि शी वाज आल्सो ऑन द डेटिंग ऐप, मुझे तो पता नहीं था। मैंने एक्चुअली बस वो एफर्ट से रिस्पॉन्स दिया या पॉजिटिव में रहा कुछ रहा, लेकिन मैंने मेरे साइड से एफर्ट जैसे कुछ नहीं रहा। उसे भी लग रहा होगा यार हम एफर्ट दे रहे हैं दे रहे, तो उसे भी एक्सपेक्ट किया होगा कि सामने से आएंगे, लेकिन वैसे कुछ हुआ नहीं। तो लेटर भी मतलब वो ऐसी कंडीशन हो गई थी कि एक टाइम पे मैं थोड़ा मतलब गुस्सा टाइप हो गया था कि वो ऐसे मुझे मैसेज भेज रही थी, मैं बोलता था कि वो मुझे भी भेज रही है। शी वाज टेलिंग मी कि मेरा इतने इतने इसके साथ मैच हुआ है, मैं अभी इनके साथ बात कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, जो मुझे एक तरह से मुझे लगा कि यार वो मुझे भी बोल रही है, मतलब एक तरह से गुस्सा नहीं था लेकिन वो मुझे लग रहा था कि वो मुझे भी बोल रही है। एंड लेटर उसके बाद में फिर वो सीन ठंडा हुआ, फ्रेंड्स हम काफी अच्छे बन गए, और अभी करेंटली वही है कि हम मतलब कैजुअल फ्रेंड्स हैं, सब मतलब दिन भर बात होती है।
0: सो बेसिकली एक लड़की ने आपको फ्रेंड जोन कर दिया बिकॉज यू आर नॉट क्विक टू शो हर द पैशन, करेक्ट? क्यों करते हो यार आप? अब वो लड़की तो हाथ से निकल गई, और ये दूसरी वाली जो आपसे पूछ रही है कि हाय हु इज दिस, आई थिंक अब आपको उस पर फोकस करना चाहिए। आप जवाब देकर देखो क्या आता है पीछे से, लाइक यू नो हाउ शी रिस्पॉन्ड्स टू योर मैसेज, फिर देखते हैं कि ये कहाँ जाता है। बिकॉज ये जो आपकी ऑनलाइन डेटिंग वाली फ्रेंड है, आप दोनों के बीच में तो अब सिर्फ फ्रेंडशिप है, देयर इज नो स्कोप फॉर रोमांस। बट इस लड़की के साथ हो सकता है कि आपका कोई रोमांस का स्कोप निकल जाए, लेकिन अगर अब चांस मिले ना, तो गर्ल्स लाइक मैन हु आर अ लिटिल बिट प्रोग्रेसिव एंड कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंस से अप्रोच करना और दोस्ती मत करने बैठ जाना। बिकॉज गर्ल्स, अगर गर्ल्स को ये लगता है दैट द गाइज आर बीइंग सुपर स्वीट एंड यू नो कोई चेज नहीं है बंदे में और कोई मिस्ट्री नहीं है बंदे में, वो जल्दी बोर हो जाती हैं और जल्दी बंदे को फ्रेंड जोन कर देती हैं। और जब आपको प्यार हो जाएगा तो प्लीज मुझे एक बार टेक्स्ट करके बता देना, ठीक है? ऑल द बेस्ट टू यू माई डार्लिंग। अगर आपकी भी जिंदगी में मेरे मिस्ट्री कॉलर की तरह कोई भी कंफ्यूजन है, हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB एंड वी विल गेट टॉकिंग। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची।

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: मैंने बहुत रिसेंटली एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक रियलाइज की इन इंटिमेसी, ओके, एंड दैट ट्रिक इज, अगर आप अपने पार्टनर से विस्पर्ड टोन्स में कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, तो मान लीजिए कि बाहर बारिश हो रही है, आप दोनों एक गाड़ी में हो एंड आप दोनों एक दूसरे से एक कोई भी कॉन्वर्सेशन कर रहे हो अबाउट, लेट्स से यू वांट टू हैव एन आइसक्रीम या समोसे, जलेबी, जो भी, एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग इट आउट लाउड, आप उसे विस्पर करके कह रहे हो कि मुझे ऐसा लगता है दैट शायद हमें समोसे खा लेने चाहिए, ठीक है? और आपका पार्टनर अब आपसे वापस उसी कम टोन में कह रहा है, समोसे के साथ साथ थोड़ी जलेबी हो जाए। अगर आप विस्पर करके एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अपेरेंटली देर आर पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन जो ये विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन स्टिम्यूलेट करता है, दैट इन टर्न कैन मेक यू फील वेरी पैशनेट एंड अराउज्ड एज वेल। भाई इस दुनिया में ना जितना जी लो उतनी ज़्यादा चीज़ें समझ में आती रहती हैं। अपने पार्टनर के साथ इसे ट्राई करके देखो, बेटर स्टिल इफ यू हैव अ क्रश, ट्राई डूइंग दिस विद योर क्रश एंड यू विल बी अमेज्ड एट द रिजल्ट्स। यू आर

Welcome in advance. अगर आपके पास भी ऐसी कोई tips and tricks हैं जो आपने खुद discover की हैं, aren't you gonna share them with me, baby? And to do that, आप मुझे ढूंढ सकते हो Insta पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की spelling है R-O-C-H-I-E. Find me on the gram या Facebook. And while you do that, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: आप जो पार्टीज में अपना भाव बढ़ाने के लिए लोगों को ये कहते रहते हो कि आप एक प्रोफेशनल पोल डांसर हो, वेयर द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपके सामने पोल आ जाता है, आपको समझ ना आए उसके साथ करना क्या है, लाइकली यू विल स्मैश योर फेस इनटू द पोल, ऐसे झूठ पकड़े जाएंगे तो कैसा लगेगा आपको?
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: बट इफ यू हैव अ सीक्रेट कन्फेशन, फील फ्री टू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. आई बी सो हैप्पी टू टॉक टू यू. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, और मेरे साथ लाइन पर है मेरी मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
3: Hi Roshi.
1: How are you?
3: I'm good.
1: आप गुड तो नहीं साउंड कर रहे थे जब आपने मुझे अपना कन्फेशन भेजा था इंस्टाग्राम पर. क्या हो गया आपकी जिंदगी में? Is there Abha sir?
3: बस पूछो ही मत यार Roshi.
1: अभी बोल रहे थे I'm good, अब शुरू हो गए. बस पूछो मत Roshi, इतना खराब हुआ है मेरे साथ.
3: It's such an awkward situation ना, मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ.
1: वही मैं बोलने वाली थी, so, बताना तो पड़ेगा. हाँ तो
3: यस. सो अभी थोड़े दिन पहले ही ना मेरी एनिवर्सरी थी, मेरी 5th एनिवर्सरी थी. ओके,
1: तो शादी की एनिवर्सरी?
3: नहीं नहीं, मतलब ऐसे बॉयफ्रेंड है तो हमारी एनिवर्सरी,
1: रिलेशनशिप एनिवर्सरी. ठीक है,
3: एग्जैक्टली
1: राइट.
3: तो हमने एक अच्छा सा सोचा, एक अच्छा सा एयरबीएनबी ढूंढेंगे एंड वी विल स्पेंड सम क्वालिटी टाइम. ओके, विद माय बॉयफ्रेंड एज़
1: वेल. और क्वालिटी टाइम तो सिर्फ एयरबीएनबी में ही स्पेंड होता है, ऑफ कोर्स.
3: यस, तो हमने बुक कर लिया एंड बहुत एकदम पसंद की लोकेशन पे मिला एंड एवरीथिंग वाज वेरी परफेक्ट. ओके, एंड मूड बिल्कुल ऐसा बन गया था. ओके, और हमने अपना ना एनिवर्सरी केक मंगाया था. तो डिलीवरी बॉय आया और बेल बजी, तो मैं दरवाजा खोलने गई थी. ठीक है, एंड मैं दरवाजा खोला एंड जब मैं डिलीवरी ले रही थी, जब मैं सामान ले रही थी, तभी उसी टाइम पे गेस व्हाट Roshi, उसी टाइम पे मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई और उसकी गर्लफ्रेंड, वो दोनों चल के आ रहे थे उसी टाइम उधर
1: ही,
3: उधर ही, और वो भी एक एयरबीएनबी में जा रहे थे
1: ऑब्वियसली यार.
3: एग्जैक्टली, और हम दोनों की नजरें मिली, आई कॉन्टेक्ट हुआ, हमने एक दूसरे को देखा और वी एंड आई वेंट ब्लैंक. भाई मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मतलब इट वाज सो ऑकवर्ड. उसे क्या लगा होगा मुझे देख के भाई?
1: तुझे क्या लग रहा था उसे देख के भाई? वो भी तो सोच
3: वही वो, मतलब इट वाज वेरी ऑकवर्ड. ओके, कि मैंने उसे रेड हैंडेड पकड़ लिया, उसने मुझे रेड हैंडेड पकड़ लिया एंड उस टाइम पे हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं बोला, हम बस वहां से चले गए. बट यू नो Roshi, मेरा तो सारा मूड स्पॉइल हो गया एंड फिर हम कुछ नहीं कर पाए, लाइक मैं और मेरे बॉयफ्रेंड, फिर हम कुछ नहीं कर पाए,
1: सारा
3: मूड स्पॉइल हो गया. हाँ बिल्कुल वैसा ही बस Roshi.
1: केक खाने का मन कर रहा था आपका लेकिन उस टाइम पे? मैं होती हूँ, मेरा तो नहीं करता. आदमी लाइक छोड़ यार, केक वेक कुछ नहीं करता, चल घर चलते हैं अपने अपने.
3: वो केक मेरा उसके मुंह पे मारने का मन कर रहा था.

0: लाइक दिस वायलेंस बेबी, आई लव द वायलेंस. अच्छा फिर क्या हुआ, तो अब क्या सिचुएशन है, घर जाके बता दिया आपके भाई ने?
1: नहीं नहीं बताया, फॉर्चुनेटली. हाँ. अगर हाँ. वो बता देता तो मैं भी बता सकती थी ना.
0: Correct,
1: कि exactly. वो भी आया था.
0: हाँ.
1: तो एग्जैक्टली exactly, लेकिन उसके बाद से हम दोनों ने इस बारे में, मेरे और मेरे भाई ने बात नहीं करी इस बारे में एक बार भी. एंड जब भी हम डाइनिंग टेबल में खाने बैठे थे, हम दोनों एक दूसरे को बस एक ऑकवर्ड सी लुक देते थे एंड नजरें चुरा लेते थे, दैट्स इट. और मुझे अभी भी डर लगता है कहीं वो बताना दे, बट अगर वो बताएगा तो मैं ही बता दूंगी.
0: एग्जैक्टली exactly. तो टेंशन मत कर. और इन फैक्ट यू हैव समथिंग दैट योर ब्रदर डज नॉट हैव. यू नो व्हाट दैट इज?
1: व्हाट?
0: दिस.
2: यू've been roshified.
0: तो आज के बाद आपका भाई पकड़ा जाएगा. बट यू बीन रोशिफाइड, यू आर फाइन, आपको कोई पकड़ेगा नहीं. बिंदास जो भी करना है, अपना बिलेटेड एनिवर्सरी सेलिब्रेट करो. आपको मैं केक भेजूंगी और इस बार केक खाना, एक दूसरे के मुंह पे मत मारना. ओके
1: थैंक यू रोशी, थैंक यू.
0: इट वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू. यार आपकी आवाज सुन के ऐसे लग रहा है, पता नहीं आप अंडर एज तो नहीं हो. अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही कोई सीक्रेट कन्फेशन है, फील फ्री टू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. आई विल बी सो हैप्पी टू टॉक टू यू. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
1: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
2: और तू तो देवी है ना।
3: इस राखी बोल दो दिल की बात, क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

यू नो जिंदगी में सबसे खराब चीज क्या हो सकती है एक रिलेशनशिप में. आई थिंक द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू यू इज अगर आपका पार्टनर आपको इतना अंडर वैल्यू करे, इतना निग्लेक्ट करे, इतना इग्नोर करे कि आपको लगे कि आपकी वजूद एग्जिस्ट ही नहीं करती है. एंड यू नो कॉन्ट्ररी टू दैट एक सबसे खूबसूरत रिलेशनशिप कौन सा होता है, वो रिलेशनशिप होता है जिसमें एक इंसान आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि उसकी मोहब्बत को देख के आपको लगता है कि शायद यार सूरज मेरी आंखों से ही उगता होगा और मेरे आंखों में ही बुझता होगा, क्योंकि ये इंसान जिस तरह से मुझे प्यार करता है मुझे ऐसा लगता है कि ये धरती का एक्सेस भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही समाया है. नाउ इमेजिन कि दोनों फीलिंग्स आपको दो अलग अलग इंसान सेम टाइम पर दे रहे हैं, कैसा लगेगा आपको? आई एम आस्किंग यू दिस क्वेश्चन फॉर ए रीजन. इसका जवाब मैं आपको तब दूंगी जब आप मुझे पर्सनली इंस्टा या FB पर लिखकर बताओगे आपके साथ कभी ऐसा हुआ है. एंड टू टेल मी अबाउट दैट आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RoCHIE. वैसे तो मैं पहेलियां बुझाती नहीं हूँ लेकिन आज लेट्स जस्ट से इट्स अ स्पेशल डे. एंड ऑन दैट नोट, जिसके पास लव है ना उसके पास सब है. एंड आई लव यू लोड्स.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Ghana Indie Top 10.
2: Kanika ke saath. On Mirchi.
3: Mirchi sun rahe hain aap. Ab baari hai hafte ke hottest pop countdown ki. This is the Ghana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Ye wo show hai jahan hafte ke top 10 hottest pop gaane hum aapke liye lekar aate hain. Hafte ke top 10 hottest gaano mein do nayi entries hain. Hamara 90s 2000s ka indie pop classic hai. Some special shout outs aapke favorite artist se baatein, all this and more. To seedha shuruaat karti hu is hafte ke countdown ki gaana number 10 ke saath. Gaane ka naam hai Move Body, Zara Khan Scales ka gaana. Char hafton se hai ye barqarar. Pichle hafte se 3 position niche drop होके Move Body is this week on गाना नंबर 10. उसके बाद हर्ष नुसी की आवाज, उन्हीं की लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है साड़ी सुन, 8 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जम करके साड़ी सुन दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर द होल काउंटडाउन एंड अ कैसेट क्लासिक. बंदी का नाम है आरजे कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 10.

0: हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी दीप क्लेयर के लिरिक्स, सुनेगी कॉम्पोजिशन. द सॉन्ग फीचर्स एल्विश यादव एंड सारे कॉम्बिनेशंस की वजह से 8 हफ्तों से ये गाना इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 9.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ अभी के अभी. मेरा हैंडल इज @RJKanika. फॉलो करना बिल्कुल फ्री है. कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप. आई ट्रूली बिलीव दैट गाने शेयर करने से प्यार बढ़ता है. काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो एक ऐसे आर्टिस्ट की आवाज है जिसके साथ एक पूरी जनरेशन ने प्यार करना सीखा है. सोच के देखो, कॉलेज का पहला क्रश या वो एक तरफा प्यार, गाड़ी में बैठे रात की ड्राइव्स, एक पूरी जनरेशन को इन्होंने प्यार करना सिखाया. आई एम टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली शान. मैं शान का नाम भी ऐसे मुस्कुराए बिना नहीं ले पाती हूँ, बिकॉज उनकी गानों में, उनकी आवाज में हमें उनकी मुस्कुराहट सुनाई देती है. पूरे 3 दशक हो चुके हैं एंड शान इज स्टिल गिविंग अस द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स ऑफ ऑल टाइम. चाहे वो फिल्मों के गाने हो या नॉन फिल्म गाने हो, चांद सिफारिश हो या हे शोना, अलग अलग प्यार के चैप्टर्स में कहीं ना कहीं शान की आवाज रही है. नाउ काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है, इट्स अ नया नवेला गाना. उसमें उनके साथ हैं दीदार कौर, यानी दोनों का पहला कोलैबोरेशन है. उदीपन शर्मा का म्यूजिक है, श्लोक लाख के लिरिक्स, एंड इस गाने में वो शान के प्यार वाले सारे इंग्रेडिएंट्स हैं. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. दीदार कौर एंड शान की आवाज में गाने का नाम है दिलदारा, अ नई नवेली एंट्री. इस गाने ने डेब्यू किया है सीधा ऑन गाना नंबर 8. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 8.

0: Indie Top 10
1: कनिका के साथ On Mirchi It's Hot।
2: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
3: Goalie goes down the ground, goalie goes out of the ground।
2: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
4: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
2: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
5: एक ही होता है।
2: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया

0: संजू राठौड़ की आवाज, गाने का नाम है बैंगल्स। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जम करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले मेरा फेवरेट सॉन्ग ऑन द काउंटडाउन, फरक की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम तारे, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello, hello. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This show is all about the hottest pop music of the week. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is at RJ Kanika. Koi gaana suggest karna ho, baate batani ho, bindas aake hit me up. Sanju Rathod ki awaaz aisi hai, sunte hi pata chal jata hai, it's his song. इस काउंटडाउन पे एक नई नवेली एंट्री हुई शान का, दीदार कौर की आवाज में हमने सुना दिलदारा ऑन गाना नंबर 8। इनफैक्ट शान की आवाज भी वही है, पहले नोट से यू नो इट्स हिम, चाहे वो सिंगर की आवाज हो या कुछ गानों का इंट्रो म्यूजिक, वो गाने जो एकदम याद आ जाते हैं ना, दे गॉट दैट स्टिकिनेस फैक्टर। आज के शो में जो मैं कैसेट क्लासिक में आपके लिए गाना बजाने वाली हूँ, दैट इज आर 90s एंड 2000s का आइकॉनिक पिक, उस गाने का मैं इंट्रो म्यूजिक आपके लिए प्ले करने वाली हूँ। @RJ कनेका पर आके बताओ ये म्यूजिक कौन से गाने का है।

एट आरजे करेंगे और इंस्टाग्राम पर बताओ मुझे गाना कौन सा है। ये पूरा गाना शो पर आगे हम आपके लिए प्ले करेंगे। बट टॉकिंग अबाउट टेक अवे फैक्टर्स, ऐसी आवाज, ऐसा म्यूजिक जिसे सुनते ही हम आर्टिस्ट को एकदम रिकग्नाइज कर जाते हैं, उसमें से एक आवाज है रेखा भारद्वाज की। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो उन्हीं का गाना है। शायद

0: आप गाना पहली बार सुने लेकिन सुनकर लगेगा कि इस गाने को तो आप बरसों से जानते हैं। दैट मैजिक इज रेखा भारद्वाज। ये गाना मुसाफिर कैफे नाम की सीरीज का है, जो एक नेटफ्लिक्स सीरीज है। कंटेम्प्रेरी लव स्टोरी, यंग रिलेशनशिप प्रॉब्लम उसके बारे में है, लेकिन प्यार को डेफिनेशन दे दिया रेखा भारद्वाज की आवाज। क्योंकि रेखा भारद्वाज की आवाज में प्यार गहरा लगता है, सदियों पुराना लगता है। उनकी आवाज में वो तजुर्बा है, एक याद है जिसको सुन के लगता है कि ब्रो ये दर्द तो पहले भी झेला है। एंड मुसाफिर कैफे जो शो है वो एक बुक पे बेस्ड है, सो ऑलरेडी उसकी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है। द सीरीज इज ऑल अबाउट लव। ये जो गाना है ये भी एक नई नवेली एंट्री है। इस गाने का जो दिल है ना वो बहुत खूबसूरत है और बहुत दुखी भी है। द सॉन्ग इज अबाउट राइट पर्सन रॉन्ग टाइम, बट रेखा भारद्वाज की आवाज में इट विल ऑल साउंड मैजिकल। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। नई नवेली एंट्री ऑन द काउंट डाउन, राघव कौशिक एंड रेखा भारद्वाज की आवाज, अमृता सलूजा के लिरिक्स, राघव कौशिक की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है दरमिया। इट डेब्यू सीधा ऑन गाना नंबर 5। यू ऑल लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।
1: नंबर 5।

0: Blana Indie Top 10
1: Kanika ke saath
0: on Mirchi. It's hot.
2: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
3: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
4: और तू तो देवी है ना।
5: इस राखी बोल दो दिल की बात, क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
6: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
5: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
0: Ghana Indie Top 10.
1: Kanika ke saath on Mirchi.
0: Number 4.

0: अनीश सरकार हृदय की आवाज में गाने का नाम है उड़ी उड़ी। 10 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 1 पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ।
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi, which is all about the hottest pop music of the week. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Instagram par jao, follow karo. Follow karna bilkul free hai. Handle is at RJ Kanika. Koi gaana suggest karna hai, baatein batani ho, bindaas aake hit me up. Independent music basically ek artist ko wo mauka deta hai ki tum jo feel karte ho, jo mehsoos karte ho, jo kahani batana chahte ho, apne music ke zariye wo batao. एंड स्पेस में कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने ट्रूली म्यूजिक में मीनिंग ढूंढा है, एंड वन ऑफ दोज आर्टिस्ट इज इंडियन ओशन, लेजेंडरी आइकॉनिक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। व्हाट अ बैंड, आई स्वेयर हर किसी को इंडियन ओशन का लाइव शो देखना चाहिए, आपको गूज बम्स आ जाएंगे। दे ट्रूली डिफाइन द इंडिपेंडेंट इन इंडिपेंडेंट म्यूजिक बिकॉज वो कल्चरल पे कॉमेंट्री करते हैं, अपने ओपिनियंस देने से कतराते नहीं है। उनका म्यूजिक कहीं ना कहीं हमें इंटरनली रिफ्लेक्ट करने पे मजबूर कर देता है। आज हम इंडियन ओशन के ही एक गाने को स्पॉटलाइट देने वाले हैं। ये ऐसा गाना है जो आपको रुकने पे मजबूर कर देता है। अक्सर हम क्या करते हैं, हम जब भी किसी इंसान से मिलते हैं, वी आर वेरी क्विक टू जज। नाम से कोई ना कोई लेबल लगा देते हैं कि ये इस तरफ का है, वो उस तरफ का है, ये अपना है, वो पराया है। एक बार हमने ये करना शुरू कर दिया ना बॉस, हमको सिर्फ वही दिखता है। और ये गाना जो है वहीं पे हमारी नब्स पकड़ लेता है कि ये क्या लगा रखा है उस नाम के पीछे, उस लेवल के नीचे। सामने वाला बंदा बिल्कुल मेरे और तुम्हारे जैसा ही है। That's the beauty of Indian Ocean. उनके गाने आपको सोचने पे मजबूर करेंगे, उनके गाने सवाल भी उठाते हैं और आईना भी दिखाते हैं। That's why their voice matters and they are truly one of those artists जो music and meaning को

साथ में लेके चलते हैं, तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। जिस गाने की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है रुक जा रे बंदे, तो थोड़ा रुक कर इस गाने को सुनो, इंडियन ओशन का रुक जा रे बंदे ऑन आर स्पॉटलाइट दिस वीक। बंदी का नाम है आरजे कनिका। एंजॉय।

इस गाने में ना वो बात है कि आसपास का सारा शोर एकदम के लिए रुक जाता है और आप इस गाने को सुनने के लिए, महसूस करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इंडियन ओशन द बैंड का दैट वॉज बंदे ऑन आर स्पेशल स्पॉटलाइट दिस वीक। @RJKanika और इंस्टाग्राम पर आओ, कोई भी ऐसा गाना जो आपको रुकने पर मजबूर कर देता है मुझे उस गाने के बारे में बताओ, एंड वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। नाउ बैक टू द काउंटडाउन। नूर खान मधुर एक्सो का आरजू इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 3। उसके बाद मिट्टा रॉयर की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है शीशा। 20 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार शीशा इज ऑन गाना नंबर 2। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडिया टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

से गाना नंबर दो का सफर हम पूरा कर चुके हैं. नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द नुमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कसर क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं. द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज

एंड जो गाना हम आज फीचर करने वाले हैं इज गाने का नाम है तन्हा दिल इन द वॉइस ऑफ वन एंड ओनली शान. इट्स ट्रू दैट ये गाना एक पूरी जेनरेशन का एंथम था. साल 2000 मिलेनियम नया नया शुरू हुआ था, नई जॉब्स क्रिएट हो रही थी, नए कॉलेजेस आ रहे थे एंड पहली बार बहुत सारे नौजवान अपने घर छोड़ के निकल रहे थे, कोई नए कॉलेज के लिए, नए शहर के लिए, पहली नौकरी, नया फोन जिस पे STD के पैसे बचाने के लिए मिस कॉल दिए जाते थे. उस पूरे दौर का जो दिल था ना वो कहीं ना कहीं इस गाने में है, तन्हा दिल. क्योंकि ये तन्हाई किसी ब्रेकअप वाली तन्हाई के बारे में नहीं है, ये घर से दूर एक नए शहर में कमरे में कोई अकेला बैठा है, घर की याद, माँ के हाथ के खाने का स्वाद, वो बचपन का दोस्त जो सब पीछे छूट गया. पर दिस सॉन्ग कैप्चर्स अ यूनिवर्सल फीलिंग, राइट? तन्हा दिल तन्हा सफर. ना यूट्यूब था ना इंस्टाग्राम था, लेकिन ये गाना और बहुत सारी लैंग्वेजेस में अडेप्ट हुआ था एंड आज 2026 में भी ये फीलिंग इतनी रेलिवेंट है बिकॉज कोई ना कोई आज भी अपना घर छोड़ के एक नए शहर में है, थोड़ा लॉस्ट फील कर रहा है, मे बी अपनी फैमिली को मिस कर रहा है, बस कैसेट की जगह हाथ में फोन है बट फीलिंग तो वही वाली है. और शान की आवाज में दिस सॉन्ग कैप्चर्स इट ऑल, तो अपने रेडियो सेट की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. कैसेट क्लासिक विद दिस वीक राम संपत की कॉम्पोजिशन, शान की आवाज, तन्हा दिल इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन अ कैसेट क्लासिक. बंदी का नाम है RJ कनिका. एंजॉय.

शान की आवाज, राम संपत की कॉम्पोजिशन, दैट वॉज तन्हा दिल ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक। गाना भले पुराना हो, फीलिंग वही है, चाहे आप घर से दूर हो या ना हो, ये गाना सबके लिए है। एट आरजे कनिक ऑन इंस्टाग्राम पर आओ, कोई भी 90s एंड 2000s का वो पॉप सॉन्ग जो आज भी आपको बहुत पसंद है हमारे साथ शेयर करो। मैं और मेरा साउंड प्रोड्यूसर अशकाय, हम दोनों आपके कैसेट क्लासिक के रिक्वेस्ट को बहुत सीरियसली लेते हैं। वी माइट फीचर योर सॉन्ग नेक्स्ट वीक। Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी, which is the numero uno song of the week, यानी इस हफ्ते का गाना नंबर एक, पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार बंजारे द आर्टिस्ट का गाना, उन्हीं की आवाज, उन्हीं के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है बैरन। दिस हरियाणवी पॉप सॉन्ग इज येट अगेन ऑन गाना नंबर एक। यू आर लिस्टिंग टू गाना इन द टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर वन।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब
3: मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: 105.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans, Mirchi Shreya ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
3: अच्छा ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच देना। डन
4: डन
3: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें लेकर के हाजिर हो गई है स्टूडियो में हॉट सीट पे आपकी प्यारी श्रेया। हेलो हेलो, वेलकम। अच्छा, जब भी हम कोई फिल्म देखते हैं तो हमें हमेशा ये लगता है ना कि यार हीरो का क्या होगा, और अगर हीरो को कोई मतलब यू नो कोई डिजीज़ होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वी कीप थिंकिंग इन द एंटायर फिल्म कि यार बस किसी तरह हीरो जो है ना वो ज़िंदा बच जाए। मतलब ये दिल से आवाज़ निकलती है कि हीरो जो है वो सर्वाइव कर जाए। लेकिन एक ऐसी फिल्म के बारे में आज मैं बताऊँगी जिसमें डायरेक्टर साहब ने राइटर साहब को ना साफ साफ ये कह दिया था कि ओपनिंग सीन में ही पता चल जाए कि हमारा हीरो नहीं रहा। वेल, ये कौन थे और कौन सी फिल्म की बात हो रही है सब बताऊंगी आपको, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। यू नो कि मैं ना आपको ऐसे थोड़ा सस्पेंस में छोड़ के जाती हूँ और मुझे बड़ा मजा आता है, बिकॉज देन आई एम श्योर कि यू विल कम बैक टू मी और यू विल कम बैक टू पुरानी जीन्स। तो बस गाने सुनकर के वापस आओ, आज की कौन सी खूबसूरत फिल्म है उसके बारे में बात करेंगे। मैं हूँ श्रेया, ओनली ऑन।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: लिस्नर है मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा बैक टू बैक गाना सुनेगा
2: on 92.7 FM Radio Mirchi New Jersey also available on 103.3 FM HD2 It's hot

गुलजार साहब को ऋषिकेश दा के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि ओपनिंग सीन में ही ऑडियंस को पता चल जाए कि भाई आनंद जिंदा नहीं है। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म आनंद। सोचो हम कितनी सारी फिल्में देखते हैं ना, और उसमें थ्रू आउट द फिल्म हम बस ये सोचते रहते हैं कि हीरो जो है ना वो हीरो बन करके निकले, हीरो जो है वो सर्वाइव कर जाए, फिर चाहे उसका लव एंगल हो या फिर लाइफ एंगल हो। लेकिन इस एक पर्टिकुलर फिल्म में गुलजार साहब जिन्होंने फिल्म को लिखा था, उनको ना डायरेक्टर साहब ऋषिकेश दा ने स्ट्रिक्टली कहा था कि ओपनिंग सीन्स में ही ऑडियंस को ये पता चल जाए कि आनंद इज नो मोर। वेल, ऐसा उन्होंने क्यों किया था, इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड रीजन है। इनफैक्ट आई शुड से बहुत ही ऋषिकेश दा रीजन है। क्या है वो, आई विल लेट यू नो। कम राइट बैक। मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: राखी यादों की कारवां है,
2: जहां मीठी करारी नमकीन कई यादें हैं,
1: यही यादें राखी को पूरा करती हैं।
3: अपने सिब्लिंग्स के साथ मीठी तीखी मेमोरी शेयर कीजिए एंड गेट अ चांस टू विन शानदार गिफ्ट हैम्पर्स।
4: क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
5: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
4: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
6: अब मिर्ची खा।
8: Radio Mirchi, it's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ऋषिकेश दाना हमेशा एसेंस ऑफ लाइफ पे फिल्में बनाते थे, कुछ ऐसी क्वालिटीज, कुछ ऐसे फ्लेवर्स जो हमको अपनी जिंदगी में उतारने चाहिए, एंड दैट वाज हिज वे ऑफ डायरेक्शन, दैट वाज हिज वे ऑफ स्टोरी टेलिंग। फिर चाहे उनकी कोई भी फिल्म ले लो, अभिमान ले लो, या फिर आज जिसकी बात कर रहे हैं आनंद ले लो। सो ऋषिकेश दा चाहते थे कि जब वो आनंद बना रहे हैं ना,

तो लोग, ऑडियंस जो फिल्म देखने आए, वो पूरे टाइम ये ना सोचे कि शायद आनंद जिंदा रह गया, शायद आनंद ने यू नो कैंसर को डिफीट कर दिया होगा। वो अगर कॉन्सेंट्रेट करें तो अपनी लाइफ की क्वालिटी पे कॉन्सेंट्रेट करें। और इसीलिए ऋषिकेश मुखर्जी ने भाई स्क्रिप्ट राइटर यानी द राइटर ऑफ द फिल्म गुलजार साहब को ये एकदम ओपनली कहा था कि वो चाहते हैं कि पहले सीन में ही ऑडियंस को पता चल जाए कि आनंद विल नॉट सर्वाइव, जिससे कम से कम ऑडियंस के दिल में एक क्वेश्चन ना रह जाए और वो पूरी फिल्म ये सोचते हुए ना देखे कि शायद आनंद जो है ना वो जी जाएगा, बल्कि पूरी फिल्म में वो एसेंस ऑफ लाइफ पे कॉन्सेंट्रेट करें कि हाउ टू यू नो आप अपनी जिंदगी को खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। इसीलिए इस फिल्म में वो डायलॉग है ना, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए बाबू मोशाय, क्या बात है। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, आनंद की बातें एकदम आनंदमय होके करेंगे, सो कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

राज कपूर साहब इनको प्यार से बाबू मोशाय कहते थे, और इस फिल्म के थ्रू वो राज कपूर साहब को एक ट्रिब्यूट देना चाहते थे। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड वी आर डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट वो फिल्म जिसमें बाबू मोशाय को फेमस किया, यानी आनंद को। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले ऋषिकेश मुखर्जी, तो जब उन्होंने फिल्म बनाई वो चाहते थे कि वो अपने सबसे क्लोज दोस्त राज कपूर को ना कहीं से इस फिल्म में उतार करके लाएं। तो उन्होंने सोचा कि इस फिल्म में वो ना अमिताभ बच्चन को जो प्यार से राजेश खन्ना बोलेंगे वो होगा बाबू मोशाय, बिल्कुल वैसे ही जैसे राज कपूर साहब उनको प्यार से बाबू मोशाय कहते थे। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। एक टाइम तो ऐसा आया जब ऋषिकेश दा ने सोचा कि इस फिल्म में आनंद का रोल करने वाले यानी राजेश खन्ना का रोल शुड गो टू राज कपूर साहब, लेकिन फिर उन्होंने अपने इस थॉट को ही कैंसिल कर दिया, और उसके पीछे एक रीज़न था, दोस्ती का रीजन। वो रीजन पूरा क्या था डिटेल में बताऊंगी। कम राइट बैक, मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station, also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans, Mirchi Shreya ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
3: दीवाना.
4: एक दीवाना शहर में.
3: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी.
4: दो दीवाने शहर में.

पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड आज एक ऐसी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं जो मुझे लगता है कि अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो क्या आप रेट्रो फैन हैं भी कि नहीं है। इन केस आपने 0.00001% भी नहीं देखी हो ना तो यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस फिल्म। इनफैक्ट इस फिल्म को ना रिविजिट हमें करते रहना चाहिए टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ। यू नो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज कि हम जिंदगी बड़ी जिए, लंबी नहीं यार। Of course, I'm talking about Anand. So, मैं बता रही थी गानों के पहले कि भाई ऋषिकेश मुखर्जी और राज कपूर साहब बहुत अच्छे दोस्त थे और ऋषिकेश दा चाहते थे कि वो किसी तरह राज कपूर साहब को अपनी इस फिल्म में उतारें। तो उन्होंने बाबू मोशाय वर्ड जो राज साहब ऋषिकेश दा को प्यार से बोलते थे ना उसको इस फिल्म में रखा। इनफैक्ट वो तो ये भी चाहते थे कि आनंद का रोल जो काका यानी राजेश खन्ना ने किया है वो रोल राज कपूर साहब निभाएं। ये स्क्रिप्ट लेकर के वो उनके घर भी गए लेकिन दहलीज से ही वापस लौट आए। वो इसलिए क्योंकि उनको रियलाइज़ हुआ कि उसी समय राज साहब की तबीयत ख़राब हुई थी, उनको हार्ट स्ट्रोक आया था एंड राज साहब को ऑन स्क्रीन भी जाते हुए देखना ये ऋषिकेश दा नहीं ले पाते। दिस इज़ नॉट वॉट ही कुड हैव टेकन ईजिली। तो उन्होंने ये आइडिया बिल्कुल स्क्रैप किया और फिर उन्होंने कहा कि राज साहब ने राजेश खन्ना ये रोल करेंगे। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म की बातें चलती रहेंगी। मैं हूँ श्रेया।

बच्चन साहब तो बिल्कुल भी ये रोल नहीं करना चाहते थे. इट वॉज हिज डियर फ्रेंड एट दैट टाइम महमूद साहब हु एक्चुअली कन्विंस्ड हिम टू डू इट. पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ और आनंद फिल्म की बात हो रही है. सो बच्चन साहब को जब बाबू मोशाय वाला रोल मिला, यानी डॉक्टर साहब का रोल मिला काका के लिए, एज इन राजेश खन्ना के लिए, तो भाई बच्चन साहब ऑलरेडी कई सारी फिल्में कर चुके थे, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ देम फ्लॉप्ड एट द बॉक्स ऑफिस. पर वो ना ये रोल इसलिए नहीं करना चाहते थे, एक तो ऑलरेडी सुपरस्टार राजेश खन्ना थे इसमें, उसके बाद उनका रोल जो था वो बहुत ज़्यादा नहीं था. तो उन्होंने ना महमूद साहब से कहा कि भाई इस पूरी फिल्म, दिस एंटायर फिल्म इज़ अबाउट आनंद, यानी राजेश खन्ना, मैं इसमें क्या ही करूँगा. सो भाई महमूद साहब ने उनको समझाया कि काका जो कि सुपरस्टार थे एट दैट टाइम, उनके साथ एक फ्रेम में ही आना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और जब वो उस फ्रेम में आएंगे तो वो ऑडियंस को अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा सकते हैं, उस ऑडियंस को जो अभी तक बच्चन साहब को देखने बॉक्स ऑफिस पे गई ही नहीं है. ये बात उनको क्लिक करी एंड ही डिड दिस रोल. एंड एक्चुअली उनका रोल बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुआ था. मतलब जब आप आनंद के बारे में सोचते हो तो सिर्फ काका नहीं, बच्चन साहब भी जहन में ज़रूर आते हैं. इसी फिल्म की बातें विद मी श्रेया आज, ओनली ऑन पुरानी जीन्स.

0: राखी यादों की कारवां है,
1: जहां मीठी करारी नमकीन कई यादें हैं।
0: यही यादें राखी को पूरा करती हैं।
2: अपने सिब्लिंग्स के साथ मीठी तीखी मेमोरी शेयर कीजिए एंड गेट अ चांस टू विन शानदार गिफ्ट हैम्पर्स।
3: क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
5: Tera kya hoga kalya?
6: Sardar, maine aapka namak khaya sardar.
5: Ab mirchi kha.
7: Radio Mirchi. It's hot.
8: Aap sun rahe hain Purani Jeans. श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, ऋषिकेश दा की खूबी थी कि अगर वो किसी पॉइंट को समझते थे, अगर किसी लॉजिक को समझते थे कि वो सही है, तो उसके बाद वो किसी की नहीं सुनते थे। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म आनंद टुडे, और यही बात उन्होंने अप्लाई की थी आनंद के म्यूजिक के लिए। सो ऋषिकेश दा को बहुत सारे लोगों ने उस टाइम पे बोला कि योगेश एज अ लिरिसिस्ट एंड सलिल चौधरी एज अ म्यूजिक कंपोजर अब सक्सेसफुल नहीं है, उनको ना नए म्यूजिक कंपोजर्स और लिरिसिस्ट के साथ काम करना चाहिए फॉर दिस फिल्म। लेकिन क्योंकि सलिल चौधरी उनके दोस्त भी थे और हमेशा से क्वालिटी सॉन्ग्स देते आए थे, इवन दो वो कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, भाई ऋषिकेश दा को लगा कि नहीं, मैं अपनी म्यूजिक टीम नहीं चेंज करूंगा। और उसके बाद तो रेस्ट इज हिस्ट्री। आनंद के गाने सुपर डुपर हिट ही नहीं, इनफैक्ट ऑल इंडिया रेडियो पे हर हफ्ते कई हफ्तों तक भाई म्यूजिक लिस्ट में, चार्ट लिस्ट में एकदम अव्वल आते थे। इसी फिल्म का गाना विच इज कंपोज बाय सलिल चौधरी एंड रिटन बाय योगेश जी, कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू। मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
3: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
2: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

गाने के लिए तो खुद काका यानी राजेश खन्ना ने कहा था कि मुझ पे पिक्चराइज होगा ये गाना। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म आनंद, जिसको बनाया ऋषिकेश मुखर्जी ने। इसको लिखने वाले थे गुलजार साहब और इसमें थे काका यानी राजेश खन्ना एंड बच्चन साहब। सो एक दिन ना काका रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाते हैं और वो देखते हैं कि योगेश जी लिरिसिस्ट बैठे हुए हैं और सलिल चौधरी जो फिल्म के गाने कंपोज कर रहे हैं एंड मनाटे कुछ गुनगुना रहे हैं और सलिल दाना उसमें म्यूजिक दे रहे हैं ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना, और योगेश जी ना इसमें लिरिक्स भर रहे हैं, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। तो भाई काका को पता चलता है कि आनंद फिल्म का ये जो गाना है बैकग्राउंड स्कोर की तरह यूज होगा। काका को इस गाने के लिरिक्स, ये गाना इतना इतना पसंद आया कि वो सीधे गए ऋषिकेश दा के पास और कहा कि मैं चाहता हूँ ये गाना मुझ पर पिक्चराइज हो और ये सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर की तरह आकर के वेस्ट ना हो। तो अब इस फिल्म का बजट तो कुछ खास होना नहीं था, तो ऋषिकेश दा ने कहा अच्छा अगर करेंगे भी तो कहाँ करेंगे, हम कहीं ले नहीं जा सकते, हमारा शूट यहीं होना है, सब कुछ यू नो चार दीवारी के अंदर होके ख़त्म हो जाएगा। तो काका ने कहा ठीक है चलो हम जुहू बीच चलते हैं, चौपाटी चलते हैं, मैं बस बीच पे ऐसे टहलूंगा और आप शूट कर लेना दादा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये गाना मुझ पर पिक्चराइज हो। कहते हैं कि काका का इंस्टिंक्ट बहुत काम करता था कि कौन सी फिल्म चलेगी, कौन सा गाना चलेगा, एंड ही न्यू दैट दिस सॉन्ग इज गोइंग टू ऑलवेज स्टे विद पीपल, एंड दैट एक्चुअली हैपेंड। जब ये गाना बना तब से लेकर के आज तक हम कभी ना कभी जिंदगी की कश्मकश में अगर उलझे होते हैं ना तो ये गाना गा ही लेते हैं। यही गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: कभी तो हंसाए।
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
2: सारे गामा
3: मासा।

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey, South Asia's number one radio station. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Purani Jeans, Mirchi Shreya ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

राज कपूर साहब इनको प्यार से बाबू मोशाय कहते थे, और इस फिल्म के थ्रू वो राज कपूर साहब को एक ट्रिब्यूट देना चाहते थे। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, एंड वी आर डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट वो फिल्म जिसमें बाबू मोशाय को फेमस किया, यानी आनंद को। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले ऋषिकेश मुखर्जी, तो जब उन्होंने फिल्म बनाई वो चाहते थे कि वो अपने सबसे क्लोज दोस्त राज कपूर को ना कहीं से इस फिल्म में उतार करके लाएं। तो उन्होंने सोचा कि इस फिल्म में वो ना अमिताभ बच्चन को जो प्यार से राजेश खन्ना बोलेंगे वो होगा बाबू मोशाय, बिल्कुल वैसे ही जैसे राज कपूर साहब उनको प्यार से बाबू मोशाय कहते थे। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। एक टाइम तो ऐसा आया जब ऋषिकेश दा ने सोचा कि इस फिल्म में आनंद का रोल करने वाले यानी राजेश खन्ना का रोल शुड गो टू राज कपूर साहब, लेकिन फिर उन्होंने अपने इस थॉट को ही कैंसिल कर दिया, और उसके पीछे एक रीज़न था, दोस्ती का रीज़न। वो रीज़न

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इतनी सारी खूबियां थी उनमें कि कौन कौन सी बताऊं। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, ऋषिकेश दास जब भी अपनी फिल्में बनाते थे ना, तो उनका सिर्फ एक मोटो होता था, बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन करना बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये कि जब भी उनका ऑडियंस उनकी फिल्म देख करके निकले ना, तो उसमें ऋषिकेश दास ट्रेडमार्क हो, यानी वो अपनी जिंदगी के बारे में कुछ सोचते हुए निकले, उसे कैसे और बेटर करना है वैसे निकले, एंड कोई ना कोई लेसन जरूर लेकर के निकले। ऋषिकेश दास के फिर चाहे आप अभिमान ले लो, या फिर गोलमाल ले लो, या फिर आप डेफिनेटली आनंद ले लो, मतलब लाइफ के लेसन गिविंग फिल्म्स होती थी। एंड पता है आपको, कोई लैविश सेट नहीं, कोई बहुत ही हाई फाई एक्टर एक्ट्रेस विद लॉट ऑफ मेकअप ने, एकदम सिंपल घर के अंदर ही फिल्म शूट हो जाती थी और इसीलिए कम दिनों में होती थी। अगर आप आनंद लो तो 28 दिन में शूट हुई, गोलमाल लो तो 1.25 महीने में शूट हुई, अभिमान लो तो 2 महीने के अंदर, 60 डेज के अंदर फिल्म शॉट खत्म, एडिट होके रिलीज, बॉक्स ऑफिस पे सुपर डुपर हिट। पुरानी जीन्स पे ना ऋषिकेश दास की फिल्मों की बातें चल रही हैं, स्पेशली आनंद की, तो बस आनंद में ही रहिए और श्रेया के साथ यहीं पुरानी जीन्स पे रहिए।

0: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
1: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
0: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
0: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के

0: मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जींस पे आप श्रेया के साथ जाने का टाइम, यानी ऑफ कोर्स गाड़ी में बैठना पड़ेगा और हाईवे तक मेरे साथ चलना पड़ेगा। ऑलराइट, आज का मेरा हाईवे हिट इज अ सॉन्ग जो मैं दोस्तों को डेडिकेट करना चाहती हूँ, क्योंकि दिए जलते हैं, दिल खिलते हैं बड़ी मुश्किल से, जिंदगी में दोस्त मिलते हैं और बहुत ज़्यादा दोस्त

की जरूरत नहीं है, चंद दोस्त जो आपके साथ हमेशा खड़े रहे ना, बस उनको अपने पास जरूर रखना। ऑन दैट नोट दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ। अगर मुझसे बात करनी है वन टू वन तो फेसबुक और इंस्टा पे आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माई हैंडल, RJSHREYA श्रेया विद लव। गुड नाइट।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, इट्स टाइम फॉर मी टू गो, नॉट फॉर मी, हम सबको बैठना है और गड्डी में हाईवे तक जाना है। ऑलराइट, आज का मेरा हाईवे हिट, मैं ना उन लोगों को डेडिकेट करना चाहती हूँ जिन्हें दिल ही दिल में पता होता है कि वो जो चेंज उनकी लाइफ में आ रहा है, जो वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह उनसे बात हो जाए, या फिर उनकी आवाज़ सुनाई दे जाए, या उनका कोई मैसेज आ जाए, या फिर अपने ऊपर ध्यान देने लगे, और फिर भी वो ये सवाल करते हैं क्या यही प्यार है। दिल ही दिल में तो आपको पता है कि यही प्यार है, फिर भी पूछ लो ये सवाल। On that note, this is Shreya signing off. I will see you tomorrow. Facebook or Insta pe RJ Shreya with love. That's RJ SHREY Shreya with love is my handle. Good night.

0: होगा कालिया।
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
1: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
2: और तू तो देवी है ना।
3: इस राखी बोल दो दिल की बात, क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
0: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit ViraniJewelers.com.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
1: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
2: और तू तो देवी है ना।
3: इस राखी बोल दो दिल की बात, क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viraniejewelers.com।
5: रेडियो मिर्ची इट्स ऑन 92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: बरकत नहीं बरकत दी है क्यों क्योंकि अपना टाइम आएगा तू नंगा ही तो आया है क्या
1: यू आर लिसनिंग टू 103.3 एफएम HD2 WPRP प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी रेडियो मिर्ची इट्स हॉट

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

गगन घिरे बदरा, सगन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा, सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है।

शाम कन्हाई, ले जाओ इसको घर राधे, ले जाओ इसको घर राधे, ले जाओ इसको घर।

0: सुनता है सबकी, करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले ले उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: का समय
1: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
2: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हार्ट।

आर के जूल्स। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आर के जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम एचडी2।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अंदर की उलझन को समझना ही बाहर की शांति का पहला कदम है। आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर श्रेया, ये बात तो बहुत अपने अच्छी कही कि खुद के साथ समय बिताओ, खुद को रिचार्ज करो, और खुद के साथ जब समय बिताओगे तो खुद को रिजेक्ट नहीं कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि जब खुद के साथ बैठता है इंसान तो शायद और नेगेटिव स्पाइरल में चला जाता है। अरे मैं ये कैसे हैंडल करूंगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो पागल हो जाऊंगा, मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की, आज की रिकॉर्डिंग के लिए, आज की इंटरव्यू के लिए तो मैं रेडी नहीं हूँ, मेरी तो शक्ल भी अच्छी नहीं है, मेरे पास तो कपड़े अच्छे नहीं हैं, मुझे तो पता ही नहीं। तो इज सिटिंग विथ योर सेल्फ ऑल द टाइम ये अच्छी बात है या कभी कभी ये गलत दिशा में भी जा सकता है?
1: ये आपने बहुत अच्छा कहा, बिकॉज कई लोग जब अपने साथ बैठते हैं तो उनको ये रियलाइज होता है कि अंदर इतना नेगेटिव चल रहा है तो उनको एक्चुअली अपने साथ बैठना अच्छा नहीं लगता है। इट इज समटाइम्स फॉर पीपल, उनको फियरफुल जैसा लगता है, माना वो किसी से फोन पे बात कर सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, पर खुद के साथ समय बिताना उनको बहुत कंफर्टेबल नहीं लगता है, क्योंकि विच इज अ वेरी सैड थिंग, क्योंकि आप एक जने के साथ सारा दिन बिताते हैं, वो आप खुद हैं, एंड इट्स अ रियलाइजेशन कि आपको किसकी कंपनी अच्छी नहीं लग रही है, आपको खुद की कंपनी अच्छी नहीं लग रही है। इसमें इसलिए ज़रूरी होता है कि जब हम खुद के साथ समय तो बिताना ही होता है, उसमें भी एक होता है थोड़ा समय अपने साथ बिताना, सेल्फ अब्सॉर्ब्ड नहीं होना। कई लोग क्या होते हैं, मैं यू नो, दे टू मच अबाउट, ऐसा है जो आपने कहा, एक नेगेटिव स्पाइरल साइकिल होती है। पर यहाँ पर ज़रूरी होता है कि अपने साथ समय बिताना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत नेगेटिव स्पाइरल है तो कुछ बाहर का इन्फॉर्मेशन या सत्संग या नॉलेज या इनपुट की ज़रूरत है जो आपके थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करने में आपको मदद करे।
3: अच्छा,
1: इसीलिए तो हम क्यों, हमारे कल्चर के अंदर सत्संग इतना कॉमन है। भारत की संस्कृति दिन की शुरुआत ही कैसे होती है, कहते कुछ अच्छा सुनो, अच्छी अच्छी बातें सुनो। वो अच्छी बातें क्या करती हैं, आपके संकल्पों को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करती हैं। आप अपने साथ बैठे, आपने कहा आपको रियलाइज हुआ कि नेगेटिव चल रहा है, इट इज लाइक आज आप एक टेस्ट कराने गए और आपको रियलाइज हुआ कि आप बीमार है। अब आप क्या करेंगे,
3: आप मेडिकेशन लेंगे
1: और मेडिकेशन बाहर से लेंगे। हो सकता है मेडिकेशन की भी जरूरत नहीं हो, थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज की जरूरत
3: है। बिल्कुल,
1: आज आपको पता चला, कई चीजें तो आपको ऐसी पता चलती हैं, अच्छा आप ओबीस हैं या आपका आप ओवरवेट हैं या आप बॉर्डरलाइन डायबिटीज पर हैं। अब कई लोग घर आकर के क्या कहते हैं, मुझे डायबिटीज होने वाली है,
3: और कई लोग कहते हैं कोई बात नहीं, ये शुगर छोड़ देते हैं।

0: कि अंदर में बहुत नेगेटिव है, इट इज जस्ट अ साइन
1: कि बाहर की मेडिकेशन की जरूरत है।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: गलत संगति हमारी सोच और एनर्जी को धीरे धीरे नेगेटिव कर देती है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कभी कभी वो इन्फ्लुएंसर आपको इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में, जैसे विवियन रिचर्ड्स का एग्जांपल मैंने दिया आपको, वो च्युइंगम खाते हुए आते थे, वो शायद उनको आदत नहीं होगी, लेकिन जब वो शायद उनका फोकस करने का तरीका था कि जब मैं बैटिंग करने जाऊं मैं च्युइंगम खाऊंगा तो मेरा दिमाग वहां पे चलता रहेगा। लेकिन मैं उसको लेकर इन्फ्लुएंस हो गया क्योंकि मुझे लगा यार कितना स्मार्ट लग रहा है यार, नॉन चैरेंटली आ रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है, बहुत कैजुअल अप्रोच रखते थे। ज्यादातर आप देखेंगे बैट्समैन जब क्रीज पे आते हैं बहुत टेंशन में आते हैं, दौड़ते हुए आते हैं, वो आराम से चलते हुए राजा की तरह, हाथी की तरह आता था। सो जरूरी नहीं है कि वो इस बात का प्रचार नहीं कर रहा था, वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने उससे इन्फ्लुएंस लेना शुरू किया।
4: ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और शायद च्युइंगम में कोई बहुत बड़ी चीज भी नहीं होगी, इतना डैमेजिंग भी नहीं होगा, पर जो जरूरी चीज है कि कई बार जब हम गलत चीजें इंडोर्स हो रही होती है वो हमेशा ऐसी हो रही होती है कि वो बहुत कूल है।
3: बिल्कुल,
4: चाहे वो अल्कोहल भी है तो आप देखेंगे वो किस तरह, वो कभी भी ऐसे नहीं एंडोर्स हो रही होती कि वो डैमेजिंग है। अगर वो ऐसे हो रही होती तो कोई करता ही नहीं। आज एक बच्चे को भी कोई चीज समझो, वो गलत है भी, वो पेरेंट उसको समझाने की कोशिश भी करते हैं कि ये गलत है, लेकिन जो उसका इन्फ्लुएंस होता है उसके मन में ये होता है कि ये बहुत कूल है, स्मोक करते हुए बहुत मैनली है, ये बहुत यू नो एक्सपेरिमेंट करने की चीज है, जो आपने कहा वही चीज होती है। तो गलत को आप कैसे प्रोपोगेट कर रहे हैं कि एक्चुअली में आपको वो गलत लग ही नहीं रहा है, आपको ये रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि वो चीज
3: गलत है।
4: कितना अभी आप चाहे और काफी कहीं ना कहीं देखो एंटरटेनमेंट का या जो चीजें हम देखते सुनते हैं उसका इम्पैक्ट तो पड़ता है।
3: बिल्कुल,
4: हम नहीं कह सकते कि नहीं पड़ता है, पड़ता तो है। आप जो भी चीज देखते हैं उसका कहीं ना कहीं आपके मन पर इम्पैक्ट तो पड़ता है। अब उसमें अगर आप किसी को वायलेंस करते हुए भी देखते हैं, पर वो वायलेंस बहुत कूल रीति से दिखाया हुआ है कि आपने वायलेंस किया बट यू आर यू नो आप एक हीरो हैं, आप एक माचो मैन हैं, तो आपके मन में क्या बैठ जाता है कि
3: ऐसा ही होना है।

0: साइलेंस इज गुड, इट इज ओके.
1: बिल्कुल.
0: सो समवेयर आप अंदर अंदर वो आपकी एक कंडीशनिंग तो हो रही होती है ना.
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: दर्द ना होना एक स्टेट है और समस्याओं को संभालना एक स्किल. आइए समझते हैं.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: प्रॉब्लम फ्री लाइफ और दूसरी है पेन फ्री लाइफ. तो प्रॉब्लम फ्री लाइफ तो हो सकती है, पेन फ्री लाइफ होना जरूरी नहीं है.
1: प्रॉब्लम फ्री लाइफ नहीं हो सकती है क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है.
3: प्रॉब्लम्स तो आएंगी,
1: वो तो बाहर से आ रही है, अभी मुझे क्या पता कल क्या होने वाला है.
3: लेकिन अगर हम अपने मन को शांत रखेंगे तो पेन फ्री होना जरूरी नहीं है.
1: कोविड के समय में आई मेट दिस बॉय, अभी हर एक की लाइफ इतनी परफेक्ट चल रही होती है. तो उसके फादर जो थे वो ये कार चलाते थे और उसकी मदर जो थी वो वेजिटेबल बेचती थी. और वो बच्चा एक सिंगल चाइल्ड था अपने पेरेंट का, और वो आई थिंक 9th स्टैंडर्ड में था उस समय. अब कोविड में अचानक उसके फादर ने शरीर छोड़ दिया.
3: अच्छा,
1: अब जब उसके फादर ने शरीर छोड़ दिया तो मदर सब्जी बेचती थी, लेकिन उससे इतना नहीं होता था कि घर चल सके. तो फिर उसने कहा कि अब मुझे कुछ करना था. अब हर बच्चे के अपने सपने होते हैं, हर बच्चे के अपने एम्बिशंस होते हैं, एक क्लियर सेट जर्नी होती है. दोनों पेरेंट कमा रहे थे, वो तो पढ़ रहा था, स्कूल में पढ़ रहा था, फिर उसको था मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, जो हर एक का सपना होता है. फिर उसने कहा कि मदर का ऊपर भी काफी टोल पड़ा जब सारे के सारे सीन हुई. तो उसने फिर क्या किया, उसी सब्जी मार्केट के अंदर चाय बेचना शुरू किया. केटल लेकर के जाते हैं ना चाय बेचना. आई मेट दैट बॉय, आई सेड हाउ आर यू, ही सेड बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा, इट्स ओके. आई सेड आपको कुछ फील नहीं होता? कहते नहीं, अभी ठीक है, जो सीन है उसको एक्सेप्ट किया. अब इतना अच्छा था कि वो बच्चा चाय बेच रहा था कप में ले जाकर. मैंने कहा बिक जाती है? कहते जिसको नहीं लेनी होती ना वो भी ले लेता है, क्योंकि हर एक को उसके सर्कमस्टेंस पे पता होते हैं, एक कंपैशन भी होता है. कहते फटाफट बिक जाती है, सब प्यार भी करते हैं, सब दुआएं भी देते हैं. अब मुझे है कि मैं थोड़ा सा मुझे ये काम करना है, फिर थोड़ा सा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, फिर मुझे एक फोन खरीदना है, मैंने ऑनलाइन पढ़ाई करनी है. तो मेरा एक साल तो वेस्ट हो गया, लेकिन मुझे आगे वेस्ट नहीं करना है. एंड आई वॉज शेयरिंग दिस स्टोरी ऑन सम प्लेटफॉर्म, आई डोंट नो, एंड अबाउट 5 पीपल केम अप एंड सेड कैन वी स्पॉन्सर फॉर दिस चाइल्ड, क्या हम उसको फोन दिला सकते हैं. एंड सडनली आई फेल्ट कि मैंने ये स्टोरी क्यों शेयर करी, क्योंकि वो उसकी मजबूरी में वो दुखी परेशान विक्टिम जैसा नहीं जी रहा था. उसने वो चैलेंज को एक्सेप्ट किया था, फटाफट अपने रोल को शिफ्ट किया था, वो बहुत काम स्टेबल एंथुजियास्टिक था. जब आप ऐसे होते हैं ना तो सारे, जैसे वो कहते हैं ना, सारी कायनात आपको मदद करने के लिए लग जाती है. तो अभी उसकी लाइफ प्रॉब्लम फ्री बिल्कुल नहीं थी. बिल्कुल प्रॉब्लम फ्री नहीं थी,
3: लेकिन पेन फ्री हो गई.
1: पेन फ्री उसने चूज किया.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 Only on Mirchi, it's hot.
0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi, it's hot.
1: हर पल हमारे पास एक चुनाव होता है, रिस्पॉन्स का, डायरेक्शन का, और

0: एनर्जी का, आइए जानते हैं।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
2: मुझे एक चीज बताइए सिस्टर श्रेया, कि तो फिर ये कभी मान लें कि जिंदगी में अगर प्रॉब्लम्स आएंगी तो शायद वो आपको डिसिप्लिन का रास्ता दिखा देती हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत एक रिपीट फैक्टर देखने को लग रहा है कि प्रॉब्लम लीड यू टू अ सॉल्यूशन। कभी कभी डिसिप्लिन बहुत लोगों की जिंदगी में नहीं होती है और उनकी जिंदगी अचानक चेंज होती है क्योंकि कोई प्रॉब्लम आ गई, आपदा आ गई, लाइफ चेंजिंग इवेंट हो गई, या फियर से आता है, फियर ऑफ परफॉर्मेंस। तब जाके आपको लगता है अगर मैं ये नहीं करूंगा तो ऐसी जिंदगी तो मेरी होगी ही नहीं। ये भी एक तरीका है?
0: तरीके तो कई हैं। एक होता है कि आप कॉन्शियसली चूज करते हैं मुझे डिसिप्लिन लाइफ जीनी है क्योंकि उसमें बेनिफिट है। दूसरा होता है कि जब आप नहीं जीते फिर वो कोई चैलेंज, जैसे आप उसकी बात कर रहे थे जो उबर ड्राइवर है, वो तंबाकू खाता है। अब समझो किसी दिन उसको कोई बड़ी बात हो गई, होने में देर थोड़ी ना लगती है। आप इन सब चीज़ों का कोई ना कोई इल इफेक्ट तो है ही ना। अब वो किसी दिन जाता है उसको पता चलता है कि कैंसर हो गया, भगवान करे कभी कुछ नहीं हो, पर हो ही जाता है ना। अब क्या होगा, वो छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा?
2: बिल्कुल छोड़ेगा।
0: डिसिप्लिन लाइफ, तो फिर हम क्या कहेंगे, ये बात आई ना तो मैंने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाया। बना पहले भी सकते थे, पर हम में से मेजोरिटी कई बार क्या करते हैं, उसको खींचते जाते हैं, स्ट्रेच करते जाते हैं,
2: फिर वो समथिंग हैपेंस।
0: दैट इज व्हाई इन स्पिरिचुअलिटी यू ऑलवेज से दैट पेन लीड्स टू अवेकनिंग। कई बार क्या होता है, आप जब खुद नहीं सीखते तो फिर वो दर्द आपको सिखाने के निमित्त बन जाता है, क्योंकि अब वो समझो आपको कोई बीमारी हो गई, अब आप फर्म हो जाते हैं। आप पहले भी कर सकते थे लेकिन अब आप भी बहुत फर्म हो जाते हैं, आपका परिवार वाले भी बहुत फर्म हो जाते हैं। वो कहते हैं हमें कम पैसा चलेगा, आप इस चीज को टच नहीं करना। हम आपके बिना नहीं रह सकते, हम कम चीजों के बिना रह सकते हैं, हम कम धन के साथ रह सकते हैं, पर हम आपके बिना नहीं रह सकते। अब वो विल पावर कहाँ से आ गई?
3: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: डर से लिए फैसले कभी सस्टेनेबल नहीं होते, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: लेकिन आपने शुरुआत में कहा था कि कुछ करने से पहले ये सोचो कि क्यों करना है, क्योंकि जब वो वाई क्लियर हो जाता है तो ऑटोमेटिकली इंसान उस तरफ भागने लगता है। तो कभी कभी ये जो पेन है, ये जो फियर है, ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं, ये भी मोटिवेशन का काम करते हैं।
4: फॉर एग्जाम्पल फियर कभी मोटिवेशन का काम नहीं कर सकता। ये भी एक हमारे बहुत सारे हमारे मिसकंसेप्शन है, ठीक है, फियर में हम काम कर देते हैं, ऐसा नहीं है, रिजल्ट भी आ जाता है, पर फियर हमेशा डैमेजिंग ही होता है। फियर है ना, फियर एक नेगेटिव एनर्जी है, तो वो मोटिवेशन का काम कैसे करता है? गिव मी एन एग्जांपल।
3: मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे साथ कई बार काम करता है कि एक जमाना ऐसा था जब मुझे बहुत स्टेज फियर था, और बचपन से ही स्टेज का काम रहा है मेरा। तो जो स्टेज फियर है, एट सम पॉइंट टाइम आई टोल्ड माई सेल्फ कि मुझे इसको पॉजिटिवली लेना है, क्योंकि मेरे में स्टेज फियर है, मुझे डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, मैं गलती कर दूंगा, मैं गिर जाऊंगा, मेरा कोई वार्डरोब मैलफंक्शन हो गया, तो मैं प्रिपेयर ज़्यादा करने लगा। मैं कहता था ठीक है, अब ये सारी चीज़ों को आई हैव टू बी बेटर प्रिपेयर्ड, अगर मैं बेटर प्रिपेयर्ड रहूँगा फिर जो भी हो एटलीस्ट मैं प्रिपेयर्ड था। और फिर दूसरी चीज़ जो मैंने अपने आप को कही कि जब वो मुझे फियर होता है तो मैं फील कैसा करता हूँ, एक तो मुझे डर लगता है तो मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, एक तो यह है, दूसरा है जब मैं स्टेज पर जाता हूँ उस माहौल में जब मेरा शो होता है तो फीलिंग क्या आती है। तो एक तो नर्वसनेस है कि स्टेज फियर है, दूसरा है परफॉर्मेंस, क्योंकि अच्छा हुआ तो वो अच्छी फीलिंग आती है, तो इन दोनों को मापने लगा मैं। तो फियर इनेबल्ड मी टू परफॉर्म बेटर इज एन एग्जांपल दैट आई हैव फॉर यू।
4: फियर इनेबल्ड यू टू परफॉर्म बेटर और यू वांटेड टू ओवरकम योर फियर?
3: बिकॉज आई हैड फियर तो आई वांटेड टू ओवरकम इट, यस।
4: सो यू वांटेड टू ओवरकम योर फियर सो दैट यू कैन परफॉर्म
3: बेटर।
4: तो एक चीज है कि मेरे पास एक संस्कार है फियर का, और मुझे उसको ओवरकम करना है, उसके लिए मुझे कोई डिसिप्लिन लेकर आना पड़ेगा लाइफ में।
3: वही तो, कहीं ना कहीं मोटिवेशन था एक फियर का था कि हटाना है चाहे वो।
4: मोटिवेशन फियर नहीं है, मोटिवेशन है कि परफॉर्मेंस के बाद आपको जो अच्छा लगता था
3: वो फीलिंग क्या है,
4: वो फीलिंग क्या है, तो वो फीलिंग आपका मोटिवेशन है
3: जी,
4: पर वो फियर आपको परफॉर्म नहीं करने देता। दिस हैपेंस विद लॉट ऑफ अस, कभी कभी हम एक बार स्टेज पर परफॉर्म करते हैं तो वो जो यूफोरिया की फीलिंग होती है, एक्सटेसी की फीलिंग होती है, वो हमें बहुत अच्छी लगती है, पर अंदर में कहीं ना कहीं डर भी होता है।
3: बिल्कुल,
4: कि हमारे से कोई गलती नहीं हो जाए, हम डायलॉग ना भूल जाए, लेकिन आपको जो चीज डिसिप्लिन बनाने के लिए करती है वो फियर नहीं है। आप फियर को तो ओवरकम करना चाहते हो, क्यों? यू वांट टू फील द सेम थिंग अगेन। आप वो जो आपने फील किया था, एवरीबॉडी वाज अप्लॉडिंग, वो उस समय जो एक सेंस ऑफ ब्लिस होता है, एक्सटेसी होती है, वो चीज आपको कहते हैं मुझे कैसे भी करके इसको ओवरकम करना ही है। सो आई डोंट फील कि फियर इज अ गुड मोटिवेटर एवर, क्योंकि फियर तो अंदर आपकी कैपेसिटी को और ही कम करता है, एफिशिएंसी को और आपके कम करता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully red, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन, यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islin.
8: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी, एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट। Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
9: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
7: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।
10: Oh, no!
7: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
11: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
12: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
11: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।
13: कुछ आवाजें सिर्फ गानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
14: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए, इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मैंने एक चीज और देखा है, मेरे 3-4 दोस्त हैं, कुछ ऐसे हैं जो कोई भी चीज होती है ना जो अच्छा हो गया तो बहुत खुश होते हैं, बहुत सेलिब्रेट करते हैं और बहुत बात करते हैं उस समय, बहुत खुश रहते हैं जनरली। और उसमें से एक मेरा दोस्त है, वो हर चीज को बहुत नॉर्मली ट्रीट करता है कि हाँ ठीक है हो गया चलो कोई बात नहीं ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो ना वो अपने अपने विंस को सेलिब्रेट करता है, और मैं देखता हूँ इसलिए जब कुछ बुरा होता है उसके साथ वो बहुत स्टेबल रहता है, वो इतनी मुश्किलों में नहीं आता, इतने नर्वस नहीं रहता, इतने टेंशन में नहीं रहता। और दूसरी तरफ मेरे जो 2-3 दोस्त हैं जो बहुत सेलिब्रेट करते हैं, जब उनके साथ कुछ बुरा होता है ना वो उतनी बुरी तरह से नीचे जाते हैं। तो ये भी एक जरूरी है कि हम अपने आप को इतना स्टेबल रखें, डिसिप्लिन होने के चक्कर में हमारे में कहीं ना कहीं अंदर मेंटल स्टेबिलिटी आ जाती है कि हम हर चीज को बहुत आराम से ले पाते हैं।
1: एब्सोल्युटली, देखो डिसिप्लिन्ड माइंड है ये योगी के लिए क्या कहते हैं, जो लोग योगी हैं या जो मेडिटेट करते हैं उनके लिए उनकी निशानी पता क्या बताते हैं, उनकी निशानी होती है निंदा स्तुति,
0: निंदा स्तुति,
1: हार जीत,
0: मान अपमान,
1: सर्दी गर्मी,
0: हाँ,
1: समान।
0: क्या बात है,
1: एक योगी के निशानी। आप कितना भी कहें मैं बहुत योग करता हूँ, मैं बहुत स्क्रिप्चर्स पढ़े मैंने, पर उसकी निशानी क्या है, हाउ डू यू फाइंड आउट
0: कि निंदा स्तुति हार जीत मान अपमान सर्दी गर्मी हर चीज में आप समान है।
1: आप ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं, विच मीन्स उन चीजों के आप गुलाम नहीं है, वो चीज आपके मन को इम्पैक्ट नहीं करती।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: It's 7:30 AM. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अपनी रोल क्लैरिटी रखें ताकि एनर्जीज मिक्स ना हो और पीस मेंटेन रहे। आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मैं हर साल अपना एनुअल हेल्थ चेकअप कराने जाता हूं, तो उसमें एक होता है ट्रेडमिल टेस्ट, TMT कहते हैं उसे। तो ट्रेडमिल टेस्ट में जब आप दौड़ते हैं तो बेसिकली आपके हार्ट को मॉनिटर किया जाता है। तो मैं जहाँ पे पिछली बार गया था उसने कहा आपका हार्ट ठीक है, स्टेबल है। तो मैंने कहा, तो मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा इससे भी स्ट्रांग तुमने देखा है? बोलता अभी थोड़ी देर पहले एक मैराथन रनर आए थे, उनका तो पता नहीं चलता इतना स्टेबल रहता है, क्योंकि वो हाई परफॉर्मेंस करने की उनकी हार्ट को आदत है। इतना उन्होंने मेहनत किया, इतने डिसिप्लिन डाला है कि हार्ट रेट

0: पड़ता ही नहीं है, एकदम स्टेबल रहता है। तो आप भी कह रहे हैं कि योगी की जिंदगी में भी वो हार्ट रेट उनका जो TMT टेस्ट है बिल्कुल स्टेबल रहता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, मान हो, अपमान हो। और दूसरी चीज जो मुझे याद आती है, जो बहुत खूबसूरत एक कविता है, शायद मैंने पहले भी जिक्र किया, रुडयार्ड किपलिंग की इफ, जहाँ पे वो कहते हैं कि कोई भी स्थिति हो, तुम अगर उसमें नहीं बदलते हो तब तुम जिंदगी में ऐसे इंसान बनोगे जिसके बारे में लोग बात करेंगे।
1: ये भी एक एम होता है लाइफ का। जैसे हम बहुत सारे और गोल होते हैं ना, मुझे इस एज तक ये प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है, एक्सटर्नल, वो आपका एक एक्सटर्नल गोल है। इंटरनल भी तो ये गोल ही है ना, इंटरनली अपना बेस्ट वर्जन बनना क्या है, परफेक्शन तक पहुंचना क्या है। बाहर आपको पता है कि एवरीथिंग इज सो ट्रांजिएंट, सब कुछ क्या है,
0: बिल्कुल
1: कुछ भी
0: आज है कल नहीं,
1: हाँ इटर्नल तो नहीं है ना, कुछ भी परमानेंट तो नहीं है, आपको पता है। चाहे आज आपको कोई पोजीशन भी है, चाहे आज आपको कोई रिकॉग्निशन भी है, सब कुछ है, अगर आपकी खुशी सिर्फ उस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है तो आप एक्चुअली हमेशा डर में रहेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही, ये आप चला हमेशा डर में रहेंगे। हाँ बिल्कुल,
1: दैट इज व्हाई पीपल आर सो अफ्रेड ना, डर क्यों होता है, क्योंकि आपकी खुशी उन सब चीजों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। छोटी सी बात, अभी हम एक मेडिटेशन कोर्स मॉर्निंग में चल रहा है, एक नया बैच आता है, 60-70 स्टूडेंट का आता है, आज उनका 5th-6th डे होगा, वो आते हैं। अब कभी कभी आप देखेंगे क्या हो जाता है, रोज जो आते हैं ना वो अनोइंगली अनकॉन्शियसली उसी सीट पर आकर बैठ जाते हैं।
0: अच्छा,
1: ये कई बार कई जगहों पर होता है, आपको रोज की आपकी आदत होती है, आप आते हैं आप वहीं पर आकर के बैठ जाते हैं। अब आज एक बहन आई, वो जैसे आई वो रोज थोड़ा जल्दी आ जाती है, उसको फ्रंट सीट पर बैठने में अच्छा लगता है, लेकिन आज वो 2-4 मिनट लेट हो गई।
0: तो कोई और बैठा था,
1: कोई और बैठा था, तो उसको एकदम ही आया मेरी कुर्सी पर बैठ गया। मना बड़ी चीज नहीं है, लेकिन देखो पहले तो उसने देखते ही उसको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, कंफर्टेबल फील नहीं हुआ, फिर उसको हुआ मेरी कुर्सी। अभी कितने दिन बीते थे, 5 days। 5 days में एक कुर्सी पर बैठते बैठते मुझे क्या लगा, वो किसकी है,
0: मेरी है,
1: मेरी है। अभी तो मैंने उसको ऐसे लगा मैंने उसको अक्वायर कर लिया, और जैसे ही हर दिन उसको आते वो एक अंदर फियर बैठ जाता है कि कोई और
0: बैठ जाएगा उस पे,
1: इस पर जाकर ना बैठ जाए।
0: हाँ।
1: और अगर कोई बैठ जाता है तो उसको अंदर में बहुत दुख होता है। आज हाँ। तो उसने जाकर के उठा दिया उस बैग को कि मैं कल यहाँ पर बैठी थी,
0: ये आगे जाके नेता बनेगी।
1: And you know, sometimes we feel it is very childish, but then it comes from that deep sense of attachment to things, and you know, taking something out of that. ये मेरा है और इससे ही मुझे खुशी मिलती है, not understanding कि everything आज है कल कम हो जाएगा, परसों ज्यादा हो जाएगा, पर हम उस तरह से जीवन नहीं जीते। हम हर चीज को लेते हैं, उसको पकड़ते हैं, उससे अपने को भरना शुरू करते हैं। जब वो चीज छूट जाती है, जैसे चाहे वो पोजिशन है, चाहे वो ये तो होता रहता है ना हमारे जीवन में, आज किसी को कोई पोजीशन मिली, कल किसी को मिली, आज किसी को कुर्सी है, कल किसी को कुर्सी है, आज आप जो रोल प्ले कर रहे हो वो रोल कल को किसी को चला जाता है, तो आप ऊपर नीचे होते रहते हैं। और एक है कि आप एक बहुत एलिवेटेड, स्टेबल, खुश स्थिति से अपना रोल प्ले करते हैं, नो मैटर वो क्या रोल है। एक्चुअली रोल इम्पोर्टेंट नहीं होता, ये भी तो एक बहुत लाइफ जीवन जीने की कला है। कोई फर्क नहीं पड़ता मैं बैठकर बोल रही हूँ या वो कैमरे पर है या कोई बैठकर के लिख रहा है, हमारे में कोई डिफरेंस नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: हम सब डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं, कैसे प्ले करते हैं वो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिसाइड करेगा।
0: बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत।
1: हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इससे डिसाइडेड नहीं होती कि हम क्या रोल प्ले
0: कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं।
1: मैं दुनिया की सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर भी हो सकती हूँ, वेल्दी भी हो सकती हूँ, मुझे नाम मान शान भी हो सकता है, तो भी मैं अंदर से बहुत परेशान हो सकती हूँ,
0: क्योंकि ये चला जाएगा तो
1: चला जाएगा, या मैं अपने से खुश नहीं हूँ, या किसी से खुश नहीं हूँ, या मुझे डर है कि ये पोजीशन चली जाएंगी, या मुझे ये डर है कि ये मेरी वेल्थ, कुछ भी हो सकता है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट आई हैव एवरीथिंग इन द वर्ल्ड
0: एंड स्टिल नॉट हैप्पी
1: एंड स्टिल आई माइट बी मिजरेबल। और ये भी पॉसिबल हो सकता है किसी के पास, जैसे कहते हैं ना, पूरा सुरा ही है, कई बार आपने देखे कहते हैं गुजारे जितना है, तो भी आपको वो ऐसा मिलेगा, वेरी कंटेंट, वेरी हैप्पी। नाउ इट हैज नथिंग टू डू विद हाउ मच यू हैव एंड व्हाट यू हैव, इट्स मोर अबाउट आप, इट्स अबाउट यू, हाउ यू आर प्लेइंग दैट रोल इज सो मच मोर इम्पोर्टेंट, दैट आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो इट कुड बी बेकिंग अ केक फॉर समबडी, किसी के लिए बोलना हो सकता है, किसी के लिए कैमरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मैटर भी नहीं करता है।

0: party wear dresses and grooms ki sherwanis.
1: Visit us at 79 Middlesex Avenue, Islip.
2: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
3: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
2: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
4: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
5: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
4: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islip।
8: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी। हर ड्राइव बनेगी यादगार।
9: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 Only on Mirchi, it's hot.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: रोज थोड़ा सा एफर्ट ही लाइफ में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: ये बहुत अच्छा आपने एक इमेजरी मुझे दिया और बहुत खूबसूरती से आपने समझाया कि अगर खुद के मन में नेगेटिव्स चल रहे हैं तो

0: से हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है।
1: सी, बाहर से हेल्प नहीं, ये हमारा दिस इज अ वे ऑफ लाइफ। जैसे आप अगर अच्छा खाना खाते हैं और आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये आप कोई अपने पर एहसान नहीं कर रहे, ये आप कोई बाहर से हेल्प नहीं ले रहे, ये एक जीवन जीने का तरीका है।
0: अच्छी संगत में रहो, अच्छा ही होगा तुम्हारे साथ।
1: अगेन, अच्छी संग भी दिन भर में जरूरी है। नाउ दिस इज वेरी वेरी बेसिक कि अच्छी संग इज सेकेंडरी, अच्छी संग इज सेकेंडरी। जैसे अगर आपको शरीर को हेल्दी रखना है, खाना तो खाना ही है ना, उसमें चॉइस है क्या कि खाना खाना है कि नहीं खाना है।
0: फ्यूल तो
1: चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कोई 3 टाइम खाता है, कोई 2 टाइम खाता है, कोई 1 टाइम खाता है, पर खाना तो
0: खाना है,
1: खाना है, उसमें कोई चॉइस नहीं है। अब खाना खाने के बाद आप कितनी एक्सरसाइज करते हैं, क्या खाते हैं, दैट इज सेकेंडरी, पर खाना तो खाना ही है ना। ऐसे ही मन को खाना तो खिलाना ही है ना। संग भी सेकेंडरी है। संग क्या है, दिन भर में आपकी कंपनी क्या है, आप क्या, वो भी एक सेकेंडरी, जैसी संगत वैसी रंगत तो होती है। लेकिन जैसे आपको खाना खाना ही है, ऐसे एक्चुअली में हम सबको हर रोज माना हर रोज 10-15-20 मिनट अच्छा सुनना ही चाहिए।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही कि जैसी संगत वैसी रंगत, वो तो आएगी, वो अच्छी बात है, लेकिन रोज एवरी डे एज ए नियम अगर हम 15-20 मिनट अच्छा पढ़ें, अच्छा देखें, अच्छा सुने, तो वो हमारे अंदर के जो हमारे अंदर बहुत कुछ चल रहा है उसको धीरे धीरे निकालने में, उसको फ्लश आउट करने, वो टॉक्सिन्स को निकालने में बहुत मदद करेगा।
1: जैसे आप रोज घर की सफाई करते हैं, लेकिन दिवाली पर आप ज्यादा अच्छी सफाई करते हैं, डीप क्लीनिंग करते हैं, है ना। तो कभी कभी साल में लोग किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, किसी रिट्रीट पर जाते हैं, किसी स्पिरिचुअल रिट्रीट पर जाते हैं, दैट इज वंस इन अ ईयर। आप 3 दिन के लिए जाते हैं, आप रिचार्ज होकर आते हैं, पर आप जैसे आप रोज घर साफ करते हैं और दिवाली पर ज्यादा सफाई करते हैं, ऐसे हम साल में एक बार ही किसी कॉन्फ्रेंस रिट्रीट में जा सकते हैं, पर रोज भी तो मन की सफाई करनी है।
0: अच्छी बात है।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता, ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6-8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Priscilla, it's hot.
1: Good morning, guys. You're listening to Mirchi Mornings. My name is Priscilla. I'm keeping you company for a few hours from now. So, अगर तुम फिलहाल रेडी हो चुके हो घर से बाहर निकलने के लिए, या फिर घर पर ही काम करने वाले हो, या फिर तुम ट्रैफिक में स्टक हो, या फिर प्रिटेंड कर रहे हो दैट यू आर चेकिंग योर फोन 27th टाइम इन पब्लिक, जो कुछ भी कर रहे हो मुझे अपने साथ चिपका कर रखो. आज का रिमाइंडर काफी सिंपल है. चाय गर्म हो, मूड नर्म हो, और मंडे हो या फ्राइडे हो, सैलरी अकाउंट में हो और तुम्हें किसी भी चीज की ना शर्म हो. ओके, दैट्स अ बिट टू मच. एंड अभी देसी मॉर्निंग्स फुल मिर्चीदार तरीके से, एक तरफ ब्रेकफास्ट, दूसरी तरफ वर्क ईमेल्स, और बीच में इंडिया से तुम्हारी फैमिली वालों की तरफ से आने वाले व्हाट्सएप मैसेजेस. सो बकल अप बिकॉज वीव गॉट बॉलीवुड का म्यूजिक, ढेर सारा मसाला, ढेर सारी मिर्ची, बहुत सारा लाफ्टर एंड अ फ्यू लिटिल थिंग्स, एंड साथ साथ में अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स तुम्हें मिलने वाली है राइट हियर राइट नाउ ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ में. और मुझसे कनेक्ट करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. एंड आई हैव गॉट अ कॉन्टेस्ट फॉर यू येट अगेन, तो उसके लिए चिपक के बैठोगे, जाना नहीं. स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट. भैया मेरे
0: राखी के, दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव. सेलिब्रेट रक्षाबंधन.

0: विद राज ज्वेल्स।
1: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
0: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
2: जय गुरुदेव। अवसर आवी ने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मड़ी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। अपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोड़ायो, जेमा 14 सप्टेम्बर सोमवारे सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर, विस्काटवे ऑन 7 3 2 3 5 7 8 2 0 0। जय गुरुदेव।
3: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
4: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
5: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
6: Bhai behan ka rishta hota hai priceless. To rakhi ki koi kimat kyun ho?
7: Celebrate Rakhi with Rajbhog. Rajbhog wishes you a very happy Raksha Bandhan. Orders on rajbhog.com or visit your local grocery store.
1: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
0: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
1: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
0: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
10: Listener mein, back to back gana sunega.
11: Back to back gana sunega.
10: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: ऑलराइट, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब टाइम आ चुका है पता करने का कि आज के दिन हिस्ट्री में क्या हुआ था। 1831 में नैट टर्नर लेड अ मेजर एनस्लेव्ड ब्लैक अमेरिकन रिबेलियन इन वर्जीनिया। फिर 1911 में पेरिस के लूवर म्यूजियम से लियोनार्डो डा विंची की मोना लिसा चोरी हो गई थी, और चोर बता कोई और नहीं, म्यूजियम का हैंडीमैन था विंचेंजो पेरुजिया। भाई ने लिटरली काम करते करते काम तमाम कर दिया। 1959 में प्रेसिडेंट आइजनहावर साइंड द ऑर्डर मेकिंग हवाई अमेरिका 50th स्टेट, अलोहा हवाई। एंड 1986 में कैमरून के लेक नियोस से एक रेयर लिमनिक इरप्शन हुआ, रिलीजिंग अ मैसिव कार्बन डाइऑक्साइड क्लाउड दैट किल्ड मोर देन 1700 पीपल। और साथ साथ में आज साउथ इंडियन सेलिब्रेट कर रहे हैं वर महालक्ष्मी व्रतम, जहां पर घर घर में माँ लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है, तैयारियां होती है, काफी सुंदर रंगोली बनाई जाती है, फूलों की खुशबू से पूरा घर महकता है, और सारे लोग जो इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं वर महालक्ष्मी की ढेरों शुभकामनाएं। और फेस्टिवल और सेलिब्रेशन की बात चली रही है तो लेट मी रिमाइंड यू, नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा, ये एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें तुम्हें रजिस्टर करना है। राखी स्पेशल कॉन्टेस्ट है ये। रजिस्टर करने के लिए लिखो राखी RAKHI और भेज दो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। या फिर तुम मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम और X पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिज, दैट इज MIRCHIPRIS। दिस इज इन एसोसिएशन विद वीरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। चेक आउट देयर फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स 22 कैरेट गोल्ड पर एंड डायमंड ज्वेलरी पर। वीरानीज्वेलर्स.com पर विजिट करके भी चेकआउट कर सकते हो। और अभी जल्दी जल्दी अपनी एंट्रीज भेजो और सुनते रहो मिर्ची मॉर्निंग्स, बिरयानी की प्रसला के साथ। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
1: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
2: और तू तो देवी है ना।
3: इस राखी बोल दो दिल की बात, क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
0: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट विरानी ज्वेलर्स.com।

0: exclusive reception or party wear dresses and grooms ki sherwanis.
1: Visit us at 79 Middlesex Avenue, Islip.
2: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
3: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
4: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
3: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
6: एक ही होता है।
3: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: This Rakshabandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Rakshabandhan with Raj Jewels.
1: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
0: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज,

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स और अब टाइम है वेदर अपडेट का। राइट नाउ इट्स अराउंड 64 डिग्रीज फारेनहाइट, इट्स क्लाउडी, लेकिन विंड जो है वो बड़ी सनन सनन चल रही है। इट्स मेकिंग इट फील लाइक 63 डिग्रीज फारेनहाइट, बट डोंट लेट दोज क्लाउड्स फूल यू, बिकॉज 8 बजे से लेकर 11 बजे तक वी आर लुकिंग एट सनी कंडीशंस एंड 11 बजे के बाद चीजें जो है वो थोड़ी सी पार्टली क्लाउडी होने वाली है। टुडेज हाई इज 80 डिग्रीज फारेनहाइट विद टेम्परेचर्स फीलिंग एनीवेयर बिटवीन 61 टू 81 डिग्रीज फारेनहाइट डिपेंडिंग ऑन ह्यूमिडिटी, सनलाइट एंड विंड। सो बेसिकली आज वेदर जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज पर्सनैलिटी लेकर आया है। एंड यस्टरडेज हाई वॉज 63 डिग्रीज फारेनहाइट, आज का मैक्सिमम इज प्रिटी सिमिलर टू यस्टरडेज, तो तुम्हें कल के टाइप का ही फील होने वाला है। कल की तरह लेयर के प्लेयर बनकर बाहर निकलो, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, वेयर योर सन प्रोटेक्शन SPF 50 प्लस के साथ वाला। एंड बिग न्यूज ये है कि लास्ट 24 आवर्स ब्रॉट अस 52 मिलीमीटर्स की रेन, बट इट्स ओवर द नेक्स्ट 24 आवर्स देयर इज जीरो प्रेसिपिटेशन forecasted, that's right, 0 millimeters. So aaj umbrella ko bindaas ghar par chhodkar jao. And while we are talking about taking care of ourselves, taking care of people, here's an opportunity to become a healthcare hero yourself. Dekho, ye to hum sabko pata hai ki jab hamare ghar wale jo hain kabhi sick ho jate hain, hospitalized ho jate hain, to we are so grateful for healthcare heroes who care for them. And agar tumhara bhi man karta hai ki tum bhi isi tarah dusre logon ki seva karo, unki dekhbhal karo, then I've got just the thing for you. Call karo AIIMS Education par the College of Health Science at 902-222-0002 par. I'll repeat 902-222-0002 par to discover different ways to build a career in healthcare. And if that's your scene, then you can visit aimseducation.edu, that is aimseducation.edu, ya phir jo number maine bataya us par call karo, and then you can build a career in healthcare. Main hoon Prisila, tumhare saath mein, weather check kar liya humne, ab jhamajham barsaat hone wali hai mirchidar bangers ki only on Mirchi Mornings. Connect करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, good morning. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में and time for updates from around the world. सबसे पहले दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक रिलीजियस स्टाइल इवेंट रिपोर्टेडली हुआ जहां पर इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी के पोस्टर के सामने आरती की गई और स्लोगन्स चैंट किए गए. इवेंट में एक बैनर पर भगवान श्री नरेंद्र मोदी 40 लिखा था एंड ऑर्गेनाइजर्स ने रिपोर्टेडली 112 crores का एक टेम्पल का प्लान अनाउंस किया है डेडिकेटेड टू लॉर्ड श्री नरेंद्र मोदी विद प्रपोज्ड गोल्ड स्टैच्यू ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. नंबर टू पर फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हु 73 ईयर्स ओल्ड वॉज टेकन टू द इस्लामाबाद हॉस्पिटल फॉर अ मेडिकल चेकअप आफ्टर कंसर्न्स वर रेज अबाउट हिज हेल्थ. डॉक्टर्स रिपोर्टेडली डीम्ड हिम फिट टू रिमेन इन कस्टडी एंड ही was subsequently moved back to jail. And lastly, American Grandmaster Hikaru Nakamura says top chess players are very arrogant, including himself and even Indian players. His saying ego is almost necessary to become a seriously strong player. And that's it for Mirchi Hour ka 3 for this hour. Main hoon Priscilla, tumhare saath mein. Connect karo mujhse Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Milchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. Na vidva la burga. Milchi, burga.
2: Hello.
3: Hello, ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब?
2: किसके यहाँ से?
3: स्वर्गीय अनिल चौहान.
2: मतलब किसके यहाँ बात फोन मिलाया आपने?
3: स्वर्गीय अनिल के यहाँ फोन मिलाया भाई साहब. मैं बोल रहा हूँ
2: अनिल ही बोल रहा हूँ. स्वर्गीय नहीं हूँ मैं, जिंदा हूँ.
3: सर स्वर्गीय अनिल चौहान उनका पूरा नाम है. सर मैं से बोल रहा हूँ, पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से. तो ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से कोई हो तो उनसे बात करा दीजिए.
2: दिमाग खराब है तेरा? अब मैं खुद बोल रहा हूँ, तू सोच कम से कम.
3: सर आप ये बेवकूफी की बात ना करें. आप एक तो जुबान संभाल की बात करें. मैं पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ. आप कह रहे हैं आप जिंदा हैं, यहाँ पोस्टमार्टम कर रखा है हमने, आपकी रिपोर्ट आ गई है. सर आके ले जाइए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट.
2: स्वर्गीय नहीं, तू अनिल चौहान से ही बात कर रहा है.
3: स्वर्गीय अनिल चौहान यार, आप जो लक्ष्मी नगर में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ.
2: खराब हो गया आपका कि स्वर्गीय अनिल चौहान, मैं जिंदा हूँ भाई. बैठा है घर परिवार वाले में, तेरे कोई पागल तो नहीं हो गया?
3: कौन पागल हो गया आपकी पोस्टमार्टम? मेरी बात सुन लीजिए आप.
2: नहीं
3: मैंने मारा पोस्टमार्टम हमने किया. स्वर्गीय अनिल चौहान से बात करनी है, उनसे बात कराई. बीच में आप कैसे आ गए यार, कमाल कर दिया आपने. दिमाग खराब मेरा नहीं हुआ, आपको यकीन नहीं है तो दोबारा आके पोस्टमार्टम करा लो. एक ही रिपोर्ट है दोनों की.
2: डॉक्टर बोल रहा हूँ.
3: मैं डॉक्टर विजय बोल रहा हूँ यार. मैंने खुद पोस्टमार्टम किया उनका.
2: ऐसा
3: केस आप क्या करेंगे? केस तो मैं उन पर करूंगा, स्वर्गीय अनिल चौहान पे, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे लिखा हुआ आप बाप बनने वाले थे. वो बाप बनने वाले
2: परिवार वाले आदमी से बात करता है, कौन है तेरी
3: बेवकूफी की बात मत करिए आप. आप आइए यहाँ पे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में, दिखाता हूँ आपकी लाश, आपकी बॉडी दिखाता हूँ यहाँ पे आके. पोस्टमार्टम तो करके छोड़ूंगा मैं.
2: जी
3: स्वर्गीय अनिल चौहान जी के यहाँ से कोई बात कर सकते हैं मेरे से?
2: मेरी बात सुनिए सर,
4: आप फोन मत काटिएगा, बड़ा मुश्किल से मिलता है. अनिल चौहान जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं. आपका मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया है. आपकी उम्र बहुत लंबी है यार, आप टेंशन ना लें.
2: अरे किसी बहुत मार खाओगे आप, सही बता रहे हैं.
4: सर मैं पिटने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी हंसी सुन के मुझे मजा आता है. अब मेरे साथ आप प्यार से कह दीजिए.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: भैया मेरे राखी के.
7: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव. सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज ज्वेल्स.
8: ओ दलजीत दोसांझ.
9: ओ बड़ी
8: भाई, आप क्या लेने आए हो?
9: शुद्ध देसी घी.
8: लो भाई, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है.
9: घी टेस्ट के लिए थोड़ा खाते हैं, घी सेहत के लिए खाते हैं. मुझे चाहिए शुद्ध देसी घी, जो घर वाला टेस्ट दे, जो ब्रांड भी हो ना वो ट्रस्टेड हो. वो एक नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा.
8: नानक घी पाजी.
9: नानक घी चाहिए यार. अगर आपको भी चाहिए शुद्ध देसी घी तो कहिए नानक घी चाहिए. सो गुड सो प्योर, इट्स नानक.
10: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
11: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
10: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
12: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
13: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
14: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
15: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship.

0: USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison. अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए Lion Mortgage, assisting first time home buyers, also offering zero closing cost refinance option. For more information, call 732-339-3155. Log on to lionmtg.com.
1: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
2: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
1: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
3: सुनो ब्राइड, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
4: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन.
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा.
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, my Desi fam. मैं हूँ Priscilla, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे Mirchi Mornings. खबर आ रही है कि रणवीर सिंह के फादर जगजीत भवनानी हैज रिपोर्टेडली फाइल्ड अ प्ली विद द इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन और द IMPPA. Challenging a reported 45 crore rupees claim made by Farhan Akhtar's production house Excel Entertainment following Ranveer's exit from Dawn 3. According to reports, Excel Entertainment says it incurred losses after Ranveer stepped away from the project. Aur Ranveer ke dad jo hain, unka kehna hai ki plea to humne file kar di hai. And IMPPA ka kehna hai it will review the matter and reach what it considers an equitable decision. So we'll wait for that. And while we are waiting, let's talk about something precious. Tanishq पर चल रहा है Festival of Diamonds, जहाँ पे तुम्हें 25% off मिल रहा है कौन-कौन सी चीज़ पर, diamond की value पर and making charges पर. And इतना ही नहीं है, तुम्हारे पास अगर कोई पुराना gold रखा हुआ है, तो उस पुराने gold को ले जाकर तुम exchange करा सकते हो at 0% deduction. तो if you've got any old gold lying there in your locker, please take it to Tanishq, जहाँ पर Festival of Diamonds चल रहा है. Of course, conditions applied है. मैं हूँ Priscilla, तुम्हारे साथ में. Follow करो मुझे Insta और X पर. मेरा handle है Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp का नंबर 9033 Mirchi. That's 9033647244. और अभी के लिए Mirchi दार गाने चलाती हूँ मैं तुम्हारे लिए. Stay tuned and stay hot.

0: राखी यादों की कारवां है,
1: जहां मीठी करारी नमकीन कई यादें हैं।
0: यही यादें राखी को पूरा करती हैं।
2: अपने सिबलिंग्स के साथ मीठी तीखी मेमोरी शेयर कीजिए एंड गेट अ चांस टू विन शानदार गिफ्ट हैम्पर्स।
3: क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट विरानी ज्वेलर्स.com।

0: राखी के
1: दिस रक्षा बंधन सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव सेलिब्रेट रक्षा बंधन विद राज ज्वेल्स
2: आवर बिजनेस वाज गेटिंग रिप्ड ऑफ बिफोर विद हाई प्रोसेसिंग फीस आई एम सो ग्लैड वी स्विच्ड टू NRS Pay
3: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at NRSPay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
4: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
5: भाई बहन का रिश्ता होता है priceless. तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
6: Celebrate Rocky with

0: Rajbhog. Rajbhog wishes you a very happy Raksha Bandhan. Orders on Rajbhog.com or visit your local grocery store.
1: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
2: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
3: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
4: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी.
5: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
6: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे.
7: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
8: अब मिर्ची खा.
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में Mirchi Mornings पर. अब टाइम है बर्थडे शावर्स का. अगर आज तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है, सो लेट्स फाइंड आउट आज तुम्हारे साथ कौन कौन सेलिब्रेट कर रहे हैं. लेकिन उसके पहले हैप्पी बर्थडे टू यू. आज तुम्हारे साथ साथ हुसैन बोल्ट का भी हैप्पी बर्थडे है, द फास्टेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट. मुझे लगता है इनको बर्थडे केक के आसपास सिर्फ दौड़ लगानी चाहिए, कैंडल्स अपने आप उड़ जाएंगे. एंड ऑल्सो सेलिब्रेटिंग टूडे सॉकर सुपरस्टार रॉबर्ट लेवांडोस्की, बास्केटबॉल लेजेंड विल्ट चेम्बरलिन, कंट्री म्यूजिक स्टार केसी मस्ग्रेव. इट्स ऑल्सो द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हेडन पैनेटियर. एंड ऑल्सो टूडे वी रिमेम्बर द म्यूजिक लेजेंड Kenny Rogers. और हम सेलिब्रेशन की बात कर ही रहे हैं तो फेस्टिवल्स की बात भी कर लेते हैं. Mirchi पर चल रहा है नानक फूड्स प्रेजेंट्स Mirchi करेगा बंधन पूरा. एंड इफ यू वांट टू विन हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ, टाइप करो राखी और अपने पूरे नाम के साथ अभी के भी व्हाट्सएप करो मुझे 9033 Mirchi पर. दैट्स 9033647244 इन एसोसिएशन विद वीरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड विद फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी. विजिट करो वीरानी jewelers.com पर. और कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए तो मुझे डीएम भी कर सकते हो. Mirchi Pris इज माई हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्सपर्ट, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033 Mirchi, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: भैया मेरे राखी के
2: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटीफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव। सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज ज्वेल्स।
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो

0: ब्राइडल स्टोर।
1: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
0: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
2: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
3: दे सेल नेचुरल डायमंड्स बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
2: डोंट फॉरगेट लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
3: फूड
2: यस,
3: शॉपिंग
2: यस,
3: एंटरटेनमेंट
2: डबल यस,
3: और हेल्थ फेयर
2: ऑफ कोर्स, सब कुछ एक ही जगह। इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फेयर सितंबर 12th और 13th, श्री कृष्णा मंदिर मॉर्गनविल।
4: फॉर वेंडर्स एंड इन्फॉर्मेशन विजिट www.krishnatemple.org।
5: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.
6: Listener mein back to back gana sunega.
7: Back to back gana sunega.
6: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: ऑलराइट, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स पर अभी लेटेस्ट गोल्ड रेट अपडेट।
2: राज ज्वेल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ट्रेडिंग एट $4,355, $4,350 पर ट्रायंस के साथ गोल्ड के प्राइस ऑलमोस्ट $300 अपवर्ड ट्रेंड है एक हफ्ते में, कल से अबाउट $100 हायर। दोस्तों इंतजार ना करें, गोल्ड एग्रेसिवली अपर ट्रेंड की तरफ है। राजोल्स के साथ पैम सर्टिफाइड गोल्ड एंड सिल्वर बार 1 ounce 100 grams किलो बार्स अवेलेबल टू इन्वेस्ट। आइए राजोल्स के साथ रिस्पॉन्सिबल गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग।
1: एंड देयर यू हैव इट, लेटेस्ट गोल्ड रेट अपडेट सुना तुमने एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स विद मी प्रिसिला। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, और आपका नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।
0: दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ मैं सुन रही हूँ मिर्ची मॉर्निंग्स, एंड अब टाइम है अपडेट्स का फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड. Number one per a US Army unit is reportedly offering soldiers 4 extra days off to play ground.

0: हेलो,
1: कुड आई स्पीक टू मनीष प्लीज?
0: स्पीकिंग,
1: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके मनीष, आई नीड योर फेवर, आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी। मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट, कि पहले इंसान एप था, आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में, यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया, राइट।
0: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट। एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे। इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके?
0: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ।
1: तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था, तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे। तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर। आई एम श्योर कि सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था। बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी। तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए, कल का रख ले। मेरी बात सुनो, आई एम प्रोफेसर, मेरी बात सुनिए यार। हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है।
0: हेलो,
1: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी, मेरी बात सुनिए, मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार, मैं मुर्गा बनाया है, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार। मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार। इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
4: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
5: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
4: Buying a home, our rate saver will beat your locked rate.
5: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding, service jis par sab kare bharosa.
6: Our business was getting ripped off before with high processing fees. I'm so glad we switched to NRS Pay.
7: Retailers are saving and making money with NRS Pay credit card processing. Get free equipment with zero hidden fees and no early termination fee. Honest, clean credit card processing starts at nrspay.com or call 877-202-8112. Again, that's 877-202-8112.
8: NRS Pay is a service of National Retail Solutions. Contract required. National Retail Solutions is a registered MSP, ISO of Elavon, a wholly owned subsidiary of US Bancorp, Minneapolis, Minnesota, and a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Concord, California.
9: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए AIIMS Education हमेशा आपके साथ है.
10: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
9: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
13: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
8: to aaiye fashion queen. Yahan milega रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
13: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
8: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स और अब टाइम है सितारों की बातें सुनने का।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: इट इज यानी मेष राशि, आज थोड़ा सा फन एंड लीजर इज गुड, लेकिन रिलेशनशिप में रियलिटी चेक हो सकता है। बाउंड्रीज की बात आए तो डिफेंसिव नहीं, डायरेक्ट रहो एंड शॉपिंग कार्ट से थोड़ा सा दूर रहो। लकी कलर इज कोरल, लकी नंबर इज 14। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, एक्स्ट्रा वर्क कोड ब्रिंग एक्स्ट्रा मनी। बॉस ने फाइनली देखा कि तुम काम भी करते हो, बट कम्युनिकेशन केयरफुली करना। लव में पुराना चैप्टर क्लोज कर दो, रीओपनिंग इज नॉट ऑलवेज अ सीक्वल वर्थ वॉचिंग। लकी कलर इज सेज ग्रीन, लकी नंबर इज 6। जेमिनी यानी मिथुन राशि, तुम्हारी अडेप्टेबिलिटी तुम्हारा सुपर पावर है आज। फ्रेश कॉन्वर्सेशंस कैन ओपन डोर्स, इन्वेस्टमेंट्स को हाउएवर डबल चेक करो एंड लेट ओल्ड पेनफुल चैप्टर्स ट्रांसफॉर्म इनटू लेसन्स, नॉट परमानेंट सब्सक्रिप्शंस। लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू, लकी नंबर इज 21। कैंसर यानी कर्क राशि, होम कंफर्ट एंड फेमिलियर रूटीन विल फील एक्स्ट्रा सूदिंग। वर्क में क्वाइट परसिवरेंस पेज ऑफ, बस अनहेल्दी अटैचमेंट को बट आई नो देम सिंस 2012 बोल के जस्टिफाई मत करो। लकी नंबर इज 9 एंड लकी कलर इज पर्ल वाइट। लियो यानी कि सिंह राशि, योर करिश्मा इज ऑन टुडे बेबी। पब्लिक अपीयरेंस एंड क्रिएटिव वर्क गेट अ बूस्ट, बट बिफोर यू स्वाइप दैट क्रेडिट कार्ड आस्क योरसेल्फ, ये नीड है या सिर्फ डोपामाइन रश। लकी कलर इज मेरी गोल्ड, लकी नंबर इज 3 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वर्गो यानी कन्या राशि, पेशेंस इज योर बेस्ट फ्रेंड टुडे। वर्क परफॉर्मेंस इंप्रूव्स एंड रिवॉर्ड्स मे फॉलो, लेकिन डोंट ओवरथिंक एवरी पॉसिबल सिनेरियो। कभी कभी ब्रेन को भी यार डू नॉट डिस्टर्ब पर डालना चाहिए। लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 8 एंड दैट वाज राशि's ओन पार्ट 1। पार्ट द्वितीय लेकर आती हूँ थोड़ी सी देर में, तब तक तुम सुनो मिर्ची दार बैंगर्स और मुझे फॉलो करो। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: राखी के
1: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव. सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज ज्वेल्स.
2: कोई भी दिन त्योहार हो उसकी शुरुआत तो मुंह मीठा करवाने से ही होती है. आपका प्यार आपका जीवन साथी तब तक नहीं बनता जब तक सामने वाले कह न दे बात पक्की हुई करो मुंह मीठा. अरे पड़ोसियों की गाड़ी भी कहा तब तक अच्छी लगती है जब तक मिठाई का डब्बा घर नहीं आ जाता. नया घर लो कराओ मुंह मीठा. नए घर में नया मेहमान आ जाए कराओ मुंह मीठा. ये मिठास खुशियों की है. ऊपर वाला देता रहेगा और हम बांटते जाएंगे. ले आपको तो भूल ही गए. इस शुभ अवसर पर आप भी कीजिए मुंह मीठा.
3: नानक फूड्स ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइव्स.
4: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
5: This September 12th and 13th, join us at the Indo-American Community Fair at Sri Krishna Mandir, Morganville.
6: Enjoy delicious Indian food, shopping, live cultural performances, a health fair, kids' activities and much more. Morning 10 a.m. to 7 p.m.
7: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
9: इंडिया के रंग सुर और स्वाद सब कुछ एक जगह.
8: एक्सपीरियंस जन्माष्टमी फेस्टिवल विद कृष्णा लीला, ट्रेडिशनल डांसेस, लाइव म्यूजिक, भजन्स, डिलीशियस फूड, शॉपिंग एंड किड्स एक्टिविटीज.
9: संडे अगस्त 23rd 1 to 6 PM, न्यू ब्रंसविक परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर, लोकेटेड एट 9 लिविंगस्टन एवेन्यू, न्यू ब्रंसविक. फ्री एंट्री एंड पार्किंग. आवर वेबसाइट इज www.newbrunswickarts.org. कॉल ट्रेसी एट 9089172862.
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
11: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
11: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन.
12: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2.
13: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है. फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
14: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
13: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर 1, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है.
12: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर 1 साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, my Mirchi fam. मैं हूँ Priscilla तुम्हारे साथ में. This is Rashi Zone Part 2.
2: Mirchi Rashi Zone.
1: Libra यानी कि तुला राशि. Venus तुम्हारी साइन में है. Opposite Saturn. So balance is the theme. देखो यार, कौन सिर्फ लेता है और कौन एक्चुअली देता भी है. लाइफस्टाइल में थॉटफुल चेंजेस करो. इम्पल्सिव डिसीजन बिल्कुल नहीं लेना है. लकी कलर इज पाउडर ब्लू. लकी नंबर इज 11. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, तुम सिचुएशन को आज प्रिटी वेल रीड कर रहे हो, लेकिन डोंट स्टे सो न्यूट्रल दैट एवरीवन फॉरगेट्स यू आर एक्चुअली ऑन द टीम. सोन क्लियर फैक्ट्स कैन लीड टू अ वेरी डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन. लकी कलर फॉर यू इज रेड. लकी नंबर इज 26. सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, मून जुपिटर एंड सैटर्न आर गिविंग

0: राखी के
1: दिस रक्षा बंधन सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव सेलिब्रेट रक्षा बंधन विद राज ज्वेल्स. Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison. भाई बहन का रिश्ता होता है priceless. तो राखी की कोई

0: मत क्यों हो?
1: सेलिब्रेट राखी विद राजभोग. राजभोग विशेस यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन. ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर.
2: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
3: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइंस की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
6: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी. हर ड्राइव बनेगी यादगार.
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
7: अब मिर्ची का
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La vieva la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: आकाश
2: जी।
3: आकाश मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। आपने मुर्गा बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था ना?
2: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
3: मुझे बताइए किसका मुर्गा बनाना है?
2: मेरी गर्लफ्रेंड है।
3: ओहो, यही मिली है आपको?
2: जी, बहुत पंगे लेती है।
3: अच्छा आकाश, ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है क्योंकि मुर्गा बनाने से पहले हम जो रिक्वेस्ट करते हैं मुर्गे की उनसे एक फॉर्म फिल करा लेते हैं।
2: ठीक है,
3: मुझे अपना पूरा नाम बता दीजिए।
2: आकाश मल्होत्रा।
3: अच्छा आकाश, मैं थोड़ा सा इसको फॉर्म को पढ़ देता हूँ क्योंकि मुर्गा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है बनाना, कभी गुस्सा आ जाता है लोगों को, यू नो। तो इसमें कुछ क्लॉज और रूल्स हैं, वो आप फॉलो करेंगे, इसको अग्री करेंगे तो ही हम मुर्गा बनाएंगे।
2: राइट,
3: चलिए। अच्छा इसमें यह है, मैं इसमें आपका नाम लिख देता हूँ, मैं आपको पढ़ देता हूँ। मैं आकाश मल्होत्रा अपने होशो आवाज में अपनी गर्लफ्रेंड
2: पूजा
3: पूजा का रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बनवा रहा हूँ। अगर कल को पूजा को इस बात पे गुस्सा आ जाता है तो उसका जिम्मेदार आकाश यानी मैं खुद हूँगा। ठीक है
2: जी, डेफिनेटली।
3: ओके, अगर गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि पूजा केस कर देती है मुर्गा बनाने वालों पे, तो उसका जिम्मेदार भी आकाश मल्होत्रा होगा।
2: अच्छा,
3: अगर केस पूजा जीत जाती है और सजा के तौर पे 10 साल की बिना बेल की सजा होती है तो उसका जिम्मेदार आकाश मल्होत्रा होगा।
2: क्या कह रहे हैं?
3: अगर सजा के तौर पे सजाए काला पानी भेजा जाए तो आकाश मल्होत्रा जाएगा।
2: ये दूसरा क्या सर, मतलब नहीं, मुर्गा बनाने में ऐसा सब भी होता है?
3: नहीं नहीं, ये फॉर्मेलिटी है ना सर, ये पूरा करना होता है, ये कंपनी की तरफ से है। ये लास्ट सुन लीजिए, लास्ट में लिखा हुआ है, अगर मुर्गा बनवाने वाले ने शुरू की 2 शर्तें मान ली हैं तो उसको मुर्गा बनवाना ही पड़ेगा जिसका वो चाहता है। तो मैं पूजा को फोन करता हूँ, आप मजे लीजिएगा। है ना
2: सर, मेरी बात
3: तो सुनिए। हाँ बताइए।
2: फन की बात अलग है, हाँ, वो उसको सीरियसली गुस्सा आ गया। और
3: अरे मेरी बात तो सुनिए, गुस्सा आपको आज
2: तो प्लीज रहने दीजिए, इसको मेरी बात मान लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी।
3: चलिए मैं एक शर्त पे रहने दूंगा
2: जी,
3: अगर आप बोलेंगे मेरे साथ कुकड़ू। आकाश तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मैं तुम्हें ऑन एयर डाल दिया है और तुम्हारे मुर्गा बन गया।
2: मेरा बन गया वो कुकड़ू को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: भैया मेरे राखी के।
6: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव। सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज ज्वेल्स।
7: क्या बनाए आज? शाही पनीर बनाए, कढ़ाई पनीर बनाए, मटर पनीर बनाए या फ्राई पनीर बनाए? अगर आपके पास नानक पनीर है तो आप कुछ भी बना सकते हैं। आंखों में चमक और चेहरे पे नूर सिर्फ ब्यूटी पार्लर जाने से नहीं आता, उसके लिए अच्छा खाना भी खाना पड़ता है। खाना भी वो जो क्वालिटी और टेस्ट में हो नंबर 1, जैसे आप सबकी पसंद नानक पनीर। सो गुड सो प्योर इट्स नानक।
8: द मॉर्गेज इंडस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स, पर हमारी ऑनेस्ट एडवाइस आज भी वही है।
9: जेसन एंड समीर आर ऑफिशियली रीलॉन्चिंग SD कैपिटल फंडिंग विद अ रिन्यूड फोकस ऑन यू।
8: बाइंग अ होम, आवर रेट सेवर विल बीट योर लॉक्ड रेट।
9: ऑलरेडी अ होम ओनर? ड्रॉप योर मंथली पेमेंट्स विद आवर फ्री रेट अलर्ट सिस्टम। SD कैपिटल फंडिंग, सर्विस जिस पर सब करे भरोसा।
10: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
11: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
11: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
1: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
2: और तू तो देवी है ना।
3: इस राखी बोल दो दिल की बात, क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
5: भैया मेरे राखी के
6: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटीफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव। सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज ज्वेल्स।
7: भाई बहन का रिश्ता होता है प्राइसलेस, तो राखी की कोई कीमत क्यों हो।
8: सेलिब्रेट राखी विद राजभोग। राजभोग विशेस यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
9: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
9: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
11: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
12: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का, साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
13: मैनू नवे नवे सॉफ्टवेयर खरीदने पसंद है, जदे एक दूजे दे नाल काम ना करे।
14: आई एंजॉय यूजिंग इनएफिशिएंट एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर मामा।
15: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
12: अगर आप इनमें से नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए जोहो वन सही है। जोहो वन इज एन ऑल इन वन इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सुइट, जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। यस, योर एंटायर बिजनेस। जोहो वन इज इजी टू यूज, साथ साथ प्राइवेसी और प्रोटेक्शन का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, जोहो वन। गेट योर फ्री ट्रायल एट zoho.com/one।
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
12: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: This Rakshabandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Rakshabandhan with Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए Lion Mortgage, assisting first time home buyers, also offering zero closing cost refinance option. For more information, call 732-339-3155. Log on to lionmtg.com.

0: Milchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. La virpa, la burka.
1: Milchi, burka.
2: Hello.
3: Hello, ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब?
2: किसके यहाँ से?
3: स्वर्गीय अनिल चौहान.
2: मतलब किसके यहाँ बात सुन मिलाया आपने?
3: स्वर्गीय अनिल के.

0: हाँ फोन मिला है भाई साहब, मैं से बोल
1: मैं
0: रहा हूँ।
1: बोल रहा हूँ, अनिल ही बोल रहा हूँ, स्वर्गीय नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ
0: सर, स्वर्गीय अनिल चौहान उनका पूरा नाम है सर, मैं से बोल रहा हूँ पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से। तो ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से कोई हो तो उनसे बात करा दीजिए।
1: दिमाग खराब है तेरा, अबे मैं खुद बोल रहा हूँ, तू सोच कम से कम।
0: सर आप ये बेवकूफी की बात ना करें, आप एक तो जुबान संभाल के बात करें, मैं पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, आप कह रहे हैं आप जिंदा हैं, यहाँ पोस्टमार्टम कर रखा है हमने, आपकी रिपोर्ट आ गई है सर, आके ले जाइए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट।
1: स्वर्गीय नहीं, तू अनिल चौहान से ही बात कर रहा है।
0: स्वर्गीय अनिल चौहान यार, आप जो लक्ष्मी नगर में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ।
1: खराब हो गया आपका कि स्वर्गीय अनिल चौहान, मैं जिंदा हूँ भाई, मैं रहा है घर परिवार वाले में, तेरे कोई पागल तो नहीं हो गया?
0: कौन पागल हो गया आपकी? पोस्टमार्टम मेरी बात सुन लीजिए आप,
1: नहीं
0: मैंने मारा पोस्टमार्टम हमने किया, स्वर्गीय अनिल चौहान से बात करनी है, उनसे बात कराई, बीच में आप कैसे आ गए यार, कमाल कर दिया आपने।
1: दिमाग खराब हो रहा है बिल्कुल, पोस्टमार्टम किया है?
0: दिमाग खराब मेरा नहीं हुआ, आपको यकीन नहीं है तो दोबारा आगे पोस्टमार्टम करा लो, एक ही रिपोर्ट है दोनों की।
1: डॉक्टर बोल रहा हूँ,
0: मैं डॉक्टर विजय बोल रहा हूँ यार, मैंने खुद पोस्टमार्टम किया उनका।
1: ऐसा केस करूंगा,
0: केस करेंगे, केस तो मैं उन पर करूंगा स्वर्गीय अनिल चौहान पे, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे लिखा हुआ आप बाप बनने वाले थे, वो बाप बनने वाले।
1: परिवार वाले आदमी से ऐसी बात करता है, कौन है तेरी
0: बेवकूफी की बात मत करिए आप। आइए यहाँ पे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में, दिखाता हूँ आपकी लाश, आपकी बॉडी दिखाता हूँ यहाँ पे आके। पोस्टमार्टम तो करके छोड़ूंगा मैं
1: जी।
0: स्वर्गीय अनिल चौहान जी के यहाँ से कोई बात कर सकते हैं मेरे से?
1: तेरा दिमाग खराब हो गया।
0: सर मेरी बात सुनिए, आप फोन मत काटिएगा, बड़ा मुश्किल से मिलता है। अनिल चौहान जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया है, आपकी उम्र बहुत लंबी है यार, आप टेंशन ना लें।
1: अरे किसी बहुत मार खाओगे आप, सही बता रहे हैं। क्या
0: सर, मैं पिटने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी हंसी सुन के मुझे मजा आता है, अब मेरे साथ आप प्यार से कह दीजिए।
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: भैया मेरे राखी के।
4: दिस रक्षा बंधन सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव। सेलिब्रेट रक्षा बंधन विद राज ज्वेल्स।
5: जय गुरुदेव। अवसर आवी ने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मड़ी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए। अपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोड़ायो, जेमा 14 सितंबर सोमवारे सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सितंबर सांजे 4 वागे विसर्जन। वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर, विस्काटवे ऑन 732-357-8200। जय गुरुदेव।
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए AIIMS Education हमेशा आपके साथ है.
9: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding,
10: EKG and phlebotomy,
9: medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
8: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
11: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
12: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी।

0: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
1: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
2: और तू तो देवी है ना।
3: इस राखी बोल दो दिल की बात, क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
5: This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
6: Oh no!
7: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट, ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
10: Inefficient,
11: very complex,
12: clumsy और
13: confusion ही confusion.
9: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं। टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ, अपने business के लिए Zoho One ले आओ। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं। Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
14: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.

0: this Rakshabandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Rakshabandhan with Raj Jewels.
1: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
3: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
4: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
3: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।

उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, विद इस जमाने की श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। हेलो हेलो, वेलकम। आज मैंने पता है क्या सोचा है कि मैं आपको थोड़ा सा डराने की कोशिश करूंगी। आज एक ऐसी मिस्ट्री फिल्म कह लो, हॉरर फिल्म कह लो, मेरे मम्मी पापा का बताना है कि ये फिल्म बहुत चली थी उनके जमाने में, एंड लोग ना बार बार इस फिल्म को देखने जा रहे थे। नंबर वन, ये उस टाइम की इनिशियल जो मिस्ट्री फिल्म बन रही थी उनमें से एक थी। नंबर टू, इसमें बहुत ही ग्लैमरस हीरोइन जो कई सारी और फिल्में कर चुकी थी वो थी, एंड हर नेम वाज साधना। मनोज कुमार थे इसमें, इट वाज डायरेक्टेड बाय राज खोसला, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म वो कौन थी। तो भाई इसकी ढेर सारी बातें होंगी, एंड ऑफ कोर्स इसके बहुत सारे गाने हैं जो लता जी ने गाए हैं, मैं आपको सुनाऊंगी एक एक करके। उसके लिए आपको क्या करना है, सिट बैक एंड रिलैक्स, बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दो। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: हेलो
3: आकाश
2: जी।
3: आकाश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपने मुर्गा बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था ना?
2: हाँ, बिल्कुल।
3: मुझे बताइए किसका मुर्गा बनाना है?
2: मेरी गर्लफ्रेंड है।
3: ओहो, यही मिली आपको?
2: जी, बहुत पंगे लेती है।
3: अच्छा आकाश, ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है क्योंकि मुर्गा बनाने से पहले हम जो रिक्वेस्ट करते हैं मुर्गे की, उनसे एक फॉर्म फिल करा लेते हैं।
2: ठीक है,
3: मुझे अपना पूरा नाम बता दीजिए।
2: आकाश मल्होत्रा।
3: अच्छा आकाश, मैं थोड़ा सा इसको फॉर्म को पढ़ देता हूँ क्योंकि मुर्गा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है बनाना, कभी गुस्सा आ जाता है लोगों को, यू नो। तो इसमें कुछ क्लॉज और रूल्स हैं, वो आप फॉलो करेंगे, इसको अग्री करेंगे तो ही हम मुर्गा बनाएंगे।
2: राइट, बिल्कुल।
3: चलिए, अच्छा इसमें ये है, मैं इसमें आपका नाम लिख देता हूँ, मैं आपको पढ़ देता हूँ। मैं आकाश मल्होत्रा अपने होशो आवाज में अपनी गर्लफ्रेंड पूजा का रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बनवा रहा हूँ। अगर कल को पूजा को इस बात पे गुस्सा आ जाता है तो उसका जिम्मेदार आकाश यानी मैं खुद हूँगा। ठीक है
2: जी, डेफिनेटली।
3: ओके, अगर गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि पूजा केस कर देती है मुर्गा बनाने वालों पे, तो उसका जिम्मेदार भी आकाश मल्होत्रा होगा।
2: अच्छा,
3: अगर केस पूजा जीत जाती है और सजा के तौर पे 10 साल की बिना बेल की सजा होती है, तो उसका जिम्मेदार आकाश मल्होत्रा होगा।
2: क्या कह रहे हैं?
3: अगर सजा के तौर पे सजाए काला पानी भेजा जाए तो आकाश मल्होत्रा जाएगा।
2: ये दूसरा क्या सर, मतलब नहीं, मुर्गा बनाने में ऐसा सब भी होता है?
3: नहीं नहीं, ये फॉर्मेलिटी है ना सर, ये पूरा करना होता है, ये कंपनी की तरफ से है। ये लास्ट सुन लीजिए, लास्ट में लिखा हुआ है, अगर मुर्गा बनवाने वाले ने शुरू की 2 शर्तें मान ली है
2: जी,
3: तो उसको मुर्गा बनवाना ही पड़ेगा जिसका वो चाहता है। तो मैं पूजा को फोन करता हूँ, अब आप मजे लीजिएगा, है ना?
2: सर मेरी बात तो सुनिए।
3: हाँ बताइए।
2: फन की बात अलग है, लेकिन वो उसको सीरियसली गुस्सा आ गया और
3: अरे मेरी बात तो सुनिए, गुस्सा आपको आज
2: मैं तो प्लीज रहने दीजिए, इस को मेरी बात मान लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी।
3: चलिए मैं एक शर्त पे रहने दूंगा
2: जी,
3: अगर आप बोलेंगे मेरे साथ कुकड़ुकू। आकाश तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मैं तुम्हें ऑन एयर डाल दिया है और तुम्हारे मुर्गा बन गया।
2: मेरा बन गया वो कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट
5: भैया मेरे राखी के।
6: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटीफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव। सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज ज्वेल्स।
7: Did you see my new couch? We picked it up from Encanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan Italia.
8: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
9: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
8: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho, to abhi chalo.

0: Talmot Furniture पे, अगली पार्टी हमारे घर पे।
1: Talmot Furniture, 685 New Jersey 17 South, Paramus, New Jersey, or shop online at italmotfurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
4: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
5: लिसनर में बैक टू बैक गाना सुनेगा,
6: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
5: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
7: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

टिन गांडे के साथ फ्रॉम द फिल्म वो कौन थी जिसकी आज बातें हो रही है। सो ये गाने की पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन को 5 बार रिजेक्ट किया प्रोड्यूसर NN सिप्पी साहब ने एंड डायरेक्टर राज खोसला साहब ने, और बार बार इस गाने की कॉम्पोजिशन बना करके ना इसको पेश किया जा रहा था। अब हुआ ये कि मदन मोहन, हु लव्ड द सॉन्ग, वांटेड कि कुछ भी करके ना इस गाने को रख लिया जाए, रिटेन कर लिया जाए। तो उन्होंने 6th कॉम्पोजिशन बनाई। जब राज खोसला ने कहा अच्छा भाई ठीक है तुम्हें बहुत पसंद है चलो एक बार और बना के दिखा दो, फिर क्या हुआ जब 6th कॉम्पोजिशन सुनी राज खोसला ने, उन्हें तब भी नहीं पसंद आया। बट फॉर्चुनेटली बिकॉज दिस सॉन्ग हैड टू बी अ मैसिव हिट, उस दिन स्टूडियो में आ गए मनोज कुमार और उन्होंने इस गाने को सुन लिया। मनोज कुमार ने कहा कि दादा ये तो बेहद खूबसूरत गाना है, ये आगे जाकर के जैसे ही रिलीज होगा ना ये गाना मैसिव हिट होगा। इस गाने को रिटेन किया गया एंड उसके बाद रेस्ट वॉज हिस्ट्री। वो कौन सा गाना है? नहीं नहीं नहीं, आपको मेरी आदत तो पता है, मैं ऐसे ही नहीं बताती हूँ, थोड़ा सा ना मैं आपको सस्पेंस में छोड़ के जाती हूँ जिससे आई हैव द श्योरिटी दैट यू आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर एल्स। तो यहीं पे बने रहो श्रेया के साथ अन पुरानी जींस, मैं बताऊंगी किस गाने की बात हो रही है।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: राखी यादों की कारवां है,
2: जहां मीठी करारी नमकीन कई यादें हैं,
1: यही यादें राखी को पूरा करती हैं।
3: अपने सिब्लिंग्स के साथ मीठी तीखी मेमोरी शेयर कीजिए एंड गेट अ चांस टू विन शानदार गिफ्ट हैम्पर्स।
4: क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
5: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
4: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
6: This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
7: कोई भी दिन त्योहार हो, उसकी शुरुआत तो मुंह मीठा करवाने से ही होती है। आपका प्यार आपका जीवन साथी तब तक नहीं बनता जब तक सामने वाले कह ना दे, बात पक्की हुई, करो मुंह मीठा। अरे पड़ोसियों की गाड़ी भी कहा तब तक अच्छी लगती है जब तक मिठाई का डब्बा घर नहीं आ जाता। नया घर लो, कराओ मुंह मीठा। नए घर में नया मेहमान आ जाए, कराओ मुंह मीठा। ये मिठास खुशियों की है, ऊपर वाला देता रहेगा और हम बांटते जाएंगे। ले आपको तो भूल ही गए, इस शुभ अवसर पर आप भी कीजिए मुंह मीठा।
8: नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइव्स।
9: भाई बहन का रिश्ता होता है प्राइसलेस, तो राखी की कोई कीमत क्यों हो।
10: सेलिब्रेट राखी विद राजभोग। राजभोग विशेस यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
11: देसी खाना,
12: देसी शॉपिंग,
11: देसी कल्चर
12: और देसी एंटरटेनमेंट,
11: बस एक ही डेस्टिनेशन,
12: इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फेयर, सितंबर 12th और 13th, श्री कृष्णा मंदिर मॉर्गनविल।
13: फॉर वेंडर्स एंड इन्फॉर्मेशन विजिट www.krishnatemple.org।
14: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
15: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
14: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
16: इंडिया के रंग, सुर और स्वाद सब कुछ एक जगह।
14: एक्सपीरियंस जन्माष्टमी फेस्टिवल विद कृष्णा लीला, ट्रेडिशनल डांसेस, लाइव म्यूजिक, भजन, डिलीशियस फूड, शॉपिंग एंड किड्स एक्टिविटीज।
16: संडे अगस्त 23rd 1 to 6 PM, न्यू ब्रंसविक परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर, लोकेटेड एट 9 लिविंगस्टन एवेन्यू, न्यू ब्रंसविक। फ्री एंट्री एंड पार्किंग। आवर वेबसाइट इज www.newbrunswickarts.org। कॉल ट्रेसी एट 9089172862।
17: It's 1:30 PM. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price. Batting to kaafi saare karte hain. Virat, ek hi hota hai.
18: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
17: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
19: Isse apni jeb mein rakh le Peter. Ab ye taala main teri jeb se chaabi nikal kar hi kholunga.
17: Moral of the story? नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
20: एक ही होता है।
17: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

थोड़ी देर पहले आपको मैं सस्पेंस में छोड़ के गई थी, अब बताती हूँ पूरी कहानी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म वो कौन थी। इस फिल्म का एक गाना जो मुझे क्या पूरी दुनिया को बेहद पसंद है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप रेट्रो फैन हैं तो ये गाना आपकी प्लेलिस्ट में डेफिनेटली होगा।

इस गाने के पीछे ना एक बहुत ही कमाल की स्टोरी है। ये गाना जब कंपोज हुआ और कंपोज करने वाले थे मदन मोहन साहब, तो वो ना एनएन सिप्पी जो कि प्रोड्यूसर थे ऑफ वो कौन थी के, एंड राज खोसला डायरेक्टर, उनके पास जब लेकर के गए ना, इन दोनों को ही इस गाने की कॉम्पोजिशन नहीं अच्छी लगी। एंड नॉट जस्ट वन टाइम, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑल फाइव कॉम्पोजिशंस वर रिजेक्टेड बाय देम। तो फिर ना राज खोसला जो कि भाई ऑफकोर्स यू नो डायरेक्टर थे, जानते थे कि एक आर्टिस्ट कैसे काम करता है, उन्होंने मदन मोहन से कहा कि अगर तुम्हें ये गाना इतना ही पसंद है, चलो एक और ट्राई कर लो। मदन मोहन ने एक और बार इसको कंपोज किया। एक और बार जब ये सर्व किया गया डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को, उन दोनों ने इसको फिर से मना कर दिया। अब क्या हुआ, फॉर्चुनेटली क्योंकि ये गाना इतना ह्यूज हिट होना ही होना था, इसकी डेस्टिनी थी एंड ये इतना खूबसूरत था कि उस दिन मनोज कुमार स्टूडियो में आ गए। मनोज कुमार ने जब ये गाना सुना, उनके तो होश उड़ गए। उन्होंने कहा ये इतना खूबसूरत गाना है, इसको डेफिनेटली रखा जाए इन द फिल्म। फिर इस गाने को लता जी ने गाया और ये गाना आज तक हम सबकी प्लेलिस्ट में है। वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स coming up right next for you, and the song is oh ho, Lata ji ki awaaz mein pura gana up next for you. Main hoon Shreya on Purani Jeans.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: भैया मेरे राखी के
2: दिस रक्षा बंधन सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव। सेलिब्रेट रक्षा बंधन विद राज ज्वेल्स।
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
2: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इज

0: Visit us at 79 Middlesex Avenue, Islip.
1: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
2: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
1: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
3: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे.
4: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी. हर ड्राइव बनेगी यादगार.
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
5: अब मिर्ची खा.
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

ये स्क्रिप्ट थी किसी और की, बनाने वाला कोई और निकला। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। तो आज ना बात हो रही है द मैसिव हिट, द सस्पेंस फिल्म या फिर हॉरर फिल्म कह लो उस जमाने की, वो कौन थी। आपको पता है क्या हुआ था, मैं बताती हूँ पूरी कहानी। सो 1950s में गुरुदत्त साहब ने एक फिल्म लॉन्च करी जिसका नाम था रास। इस फिल्म में थे सुनील दत्त साहब, वहीदा रहमान एंड रहमान जी। इट वाज सपोज्ड टू बी डायरेक्टेड बाय शशि भूषण जी। पता नहीं क्या हुआ कि 10 दिन के बाद गुरुदत्त साहब ने फिल्म की शूटिंग रोक दी। उसके बाद 10 साल के बाद उन्होंने स्क्रिप्ट पे फिर से काम किया और इस बार उन्होंने स्क्रिप्ट में सुनील दत्त को नहीं बल्कि खुद को रखा। फिर से इसका नाम रखा गया रास। सो नाउ दिस टाइम वहीदा रहमान थी, रहमान थे और गुरुदत्त साहब थे। 12 रील्स इस स्क्रिप्ट की, यानी फिर इसी फिल्म रास की शूट हो गई। एंड देन अगेन कुछ हुआ कि गुरुदत्त साहब ने इस फिल्म को रोक दिया। एट दैट टाइम द मूवी वॉज बेस्ड ऑन द नॉवल द वुमन इन व्हाइट। राज खोसला साहब उस समय गुरुदत्त साहब को असिस्ट कर रहे थे एज असिस्टेंट डायरेक्टर, और उन्होंने तभी सोच लिया कि इस अनफिनिश्ड स्क्रिप्ट को मैं पूरा करूंगा, मैं बनाऊंगा एक फिल्म। सो ये जो आप वो कौन थी कि हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये जो स्क्रिप्ट थी ये राज खोसला साहब ने इसी फिल्म से उठाई थी जब वो असिस्ट कर रहे थे गुरुदत्त साहब को, और उन्होंने रास की जगह इसको नाम दिया वो कौन थी। उसके बाद तो भाई बॉक्स ऑफिस पे भीड़ लग गई थी टू वॉच दिस फिल्म। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें मेरे यानी आपकी श्रेया के साथ। और श्रेया से अगर 1-to-1 बात करनी है, बिकॉज यहाँ तो सिर्फ मैं बोलती रहती हूँ, दो ऐसी जगह है जहाँ आप भी बोल सकते हो, इस फेसबुक और इंस्टा, RJ श्रेया विद लव, दैट्स RJ SHREY श्रेया विद लव माई हैंडल, वहां पे बता देना जो भी बताना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: You are listening to 103.3 FM HD2 WPRP Princeton, New Jersey and 92.7 W224 CW Franklin Park, New Jersey. Radio Mirchi.

मनोज कुमार जी को इस फिल्म के लिए लिटरली उनके न्यू बॉर्न बेटे विशाल की दुहाई देनी पड़ी थी डायरेक्टर राज खोसला एंड प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी साहब को। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। मनोज कुमार उस टाइम के सुपरस्टार, वो जल्दी जल्दी फिल्मों को हाँ ही नहीं कहते थे, यूज टू बी वेरी वेरी सिलेक्टिव। सो इस चक्कर में उन्होंने एक दो साल कुछ काम ही नहीं किया। अब ऐसे में भाई प्रोड्यूसर साहब और डायरेक्टर साहब चाहते थे कि किसी तरह वो इस मिस्ट्री फिल्म में आ जाए। वो कौन थी में मनोज कुमार जो है वो लीड रोल प्ले कर ले। मनोज कुमार वॉज लिटिल स्केप्टिकल, ही वॉज डाउटिंग कि मिस्ट्री फिल्म है, थोड़ी सी हॉरर फिल्म है, करूं कि ना करूं। ऐसे में भाई डायरेक्टर राज खोसला ने उनसे कहा कि भाई अभी अभी तुम्हारे घर पे लड़का हुआ है और ये बहुत शगुन की बात है, तुम देखना ये फिल्म करोगे और सुपर डुपर हिट होगी फिल्म। मनोज कुमार ने अपने बेटे विशाल का नाम सुनकर के फिल्म को एक्चुअली हाँ कह दी एंड द फिल्म डिड वंडर्स एट द बॉक्स ऑफिस। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें, यानी वो कौन थी की, और इस फिल्म के गाने श्रेया के साथ। कहीं भी मत जाना, कुछ गानों के उस पार ना एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट दिस फिल्म, सब बताऊंगी। कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो,
4: कुड आई स्पीक टू मनीष प्लीज?
3: स्पीकिंग,
4: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके मनीष, आई नीड योर फेवर, आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी। मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को। मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट, कि पहले इंसान एप था, आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में। यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया, राइट।
3: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
4: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट। एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे। इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके।
3: करना क्या है, ना अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं।
4: वही, मतलब तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था, तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे। तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स के सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर। आई एम श्योर के सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था। बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी। तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए, कल का रख ले। मेरी बात सुनो, आई एम प्रोफेसर, मेरी बात सुनिए यार। आप हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है।
3: हेलो,
4: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी, मेरी बात सुनिए, मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार, मैं मुर्गा बनाया, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार। मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने जो लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार। इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
1: Simran, tu kar chhad ke kida ja sakdi hai ta? I know Simran, meri galti hai, main tenu time nahi de sakya.
2: Nahi Raj, apne vich pehla warga hun kuch nahi reha. Sab kuch badal gaya. Tu badal gaya, tere dream badal gaye, tere preferences badal gaye. Kuch hai jo inne saalan vich nahi badlya? Hai kuch? Ki?
1: Nanak rasmalai. Haan Simran, haan. Nanak rasmalai da taste aaj vi ohi hai jo sade vyah to pehla si.
2: Raj.
1: Simran.
3: Nanak, bringing sweetness to your life.
4: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
5: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी.
6: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ. जेसन एंड समीर आर बैक एट एसडी कैपिटल फंडिंग. बीट योर लॉक्ड रेट विद आर रेट सेवर टुडे.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
9: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
3: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर.
10: ए आओ ना.

10 सालों तक इस गाने को किसी फिल्म में जगह नहीं मिली, क्योंकि फिल्म में कभी ऐसी सिचुएशन ही नहीं आई। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ मदन मोहन साहब अपने खजाने में ये धुन को लेकर के चल रहे थे। 1950s में उन्होंने ये धुन बनाई थी, एंड 1960s में जब वो कौन थी?

0: राखी के
1: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव. सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज ज्वेल्स.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
3: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
4: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
5: इंडिया के रंग, सुर और स्वाद सब कुछ एक जगह.
6: एक्सपीरियंस जन्माष्टमी फेस्टिवल विद कृष्णा लीला, ट्रेडिशनल डांसेस, लाइव म्यूजिक, भजन, डिलीशियस फूड, शॉपिंग एंड किड्स एक्टिविटीज.
5: संडे अगस्त 23rd 1 to 6 PM, न्यू ब्रंसविक परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर, लोकेटेड एट 9 लिविंगस्टन एवेन्यू, न्यू ब्रंसविक. फ्री एंट्री एंड पार्किंग. आवर वेबसाइट इज www.newbrunswickarts.org. कॉल ट्रेसी एट 9089172862.
7: जय गुरुदेव. अवसर आवीने उभो छा आंगणे, चलो भेगा मळी गणेश जी ना आगमन नी तैयारी करिए. आपने गायत्री चेतना सेंटर ना गणेश उत्सव मा जोडायो, जेमा 14 सप्टेम्बर सोमवारे सांजे 4 वागे थशे गणेश स्थापना, अने सांजे 7 वागे थशे गणेश आरती, अने 20 सप्टेम्बर सांजे 4 वागे विसर्जन. वधु माहिती माटे कॉल गायत्री चेतना सेंटर, विस्काटवे ऑन 732-357-8200. जय गुरुदेव.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
1: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
8: Listener mein back to back gana sunega.
9: Back to back gana sunega.
8: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
10: It's 2:30 PM. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
11: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

मदन मोहन साहब अपने खजाने में इस धुन को लेकर के 10 साल तक घूम रहे थे। कुछ डायरेक्टर्स को उन्होंने अप्रोच भी किया, लेकिन डायरेक्टर्स ने कहा नहीं, ये गाना हमारी फिल्म में तो नहीं चलेगा, ऐसी सिचुएशन ही नहीं है हमारी फिल्म में। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और आज वी आर टॉकिंग अबाउट वो कौन थी। इंडिया के सिनेमा के इनिशियल ईयर्स में आई एक मिस्ट्री फिल्म, एक सस्पेंस फिल्म, जिसमें थी साधना जी, मनोज कुमार, डायरेक्टेड बाय राज खोसला, और इस फिल्म के गाने ऑल कंपोज बाय मदन मोहन साहब। तो अब जो मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ ना, ये गाना नहीं है, ये मास्टरपीस है। लता जी ने इस गाने को गाया था, और ये गाना बहुत टाइम तक, नॉट गाना एक्चुअली, बट ये जो धुन थी, समझ ही गए होंगे आप, ये धुन मदन मोहन साहब ने ना बस कंपोज करके रखी हुई थी। जब वो कुछ डायरेक्टर्स के पास गए तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी फिल्म में तो ऐसा कोई सस्पेंस मिस्ट्री हॉरर वाली सिचुएशन ही नहीं है, तो हम इसे कहाँ यूज़ करेंगे। एंड देन फाइनली 1962 आफ्टर 10 ईयर्स, व्हेन राज खोसला मेड वो कौन थी, इस गाने को अपनी सही जगह मिली। एंड गाना कौन सा है ज़रा गौर फरमाइए। देखो एकदम हॉन्टेड वाली म्यूजिक और साथ में लता जी की आवाज, इट इज नन अदर देन नैना बरसे। कमिंग योर वे ओनली ऑन पुरानी जीन्स, दिस इज मी श्रेया।

0: This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
1: Bhai behan ka rishta hota hai priceless. To rakhi ki koi kimat kyun ho?
2: Celebrate Rakhi with Raj Bhog. Raj Bhog wishes you a very happy Raksha Bandhan. Orders on rajbhog.com or visit your local grocery store.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है. फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत है, पर बच्चन एक ही होता है.
5: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है.
4: एक ही होता है.
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
6: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: खबर।
1: वहाँ के लोकल्स ये देख करके हैरान थे कि ये क्या हो रहा है, लड़की के मुंह से लड़के की आवाज कैसे निकल रही है। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म वो कौन थी। तो उसका ये वाला जो गाना है ना, नैना बरसे रिम झिम जो लता जी की खूबसूरत आवाज में है, इसके पीछे ना एक और कहानी है। सो होता ये है कि कश्मीर में जब ये गाना शूट हो रहा होता है, तो साधना जी को इस पे ऑफकोर्स गाना गाना था, मतलब मुंह चलाना था, लिपसिंग करना था। अब हुआ ये कि लता जी कोई कॉन्सर्ट के लिए आउट ऑफ इंडिया थी, तो वो ये गाना डब नहीं कर पाई। तो मदन मोहन साहब ने कहा कि ठीक है, तुम लोग कश्मीर में हो ऑलरेडी, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने वोकल्स गा करके भेज देता हूँ और बस साधना से लिपसिंग करा लेना। अब क्या

हुआ क्योंकि ये गाना आउटडोर पे शूट हो रहा था, तो कश्मीर के लोकल्स इकट्ठा हो गए देखने के लिए। और शूटिंग इमेजिन इन 1960s, ये तो बहुत बड़ी बात होती थी, है ना। इतनी सिक्योरिटी वगैरह भी नहीं चाहिए होती थी, आराम से लोग शूट वूट कर लेते थे। तो लोकल्स ने जब ये देखा कि ये क्या हो रहा है भाई, हीरोइन के मुँह से हीरो जैसी आवाज, यानी लड़की के मुँह से लड़के की आवाज कैसे निकल रही है, इट वॉज अ मेजर टॉक ऑफ द टाउन एट दैट टाइम। फिर खैर जब लता जी वापस आई, उनसे ये गाना डब कराया गया एंड इट बिकेम अ मैसिव हिट। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें चलती रहेंगी। मैं हूँ श्रेया।

महबूब खान काफी नाराज हुए प्रेम चोपड़ा से, उनके सारे अरमानों पे पानी फिर गया था। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ और आज ना वो कौन थी की बात कर रहे हैं। वेल, इंडिया की इनिशियल हॉरर फिल्म्स कह लो, मिस्ट्री फिल्म कह लो, सस्पेंस फिल्म कह लो, उनमें से आती वो कौन थी। साधना जी थी, डायरेक्टेड बाय राज खोसला, मनोज कुमार थे इस फिल्म में। एंड भाई महबूब खान चाहते थे कि प्रेम चोपड़ा जो इस फिल्म में एज विलेन की तरह लॉन्च हुए वो एक हीरो की तरह लॉन्च होते। सो महबूब खान ने ऑलरेडी बहुत सारी फिल्में बनाई थी एंड ही वांटेड कि वो प्रेम चोपड़ा को ना एक हीरो की तरह पेश करेंगे अपनी आने वाली फिल्मों में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि प्रेम चोपड़ा ने ऑलरेडी ये फिल्म कर ली और उसके बाद ये फिल्म इतनी हिट हुई, प्रेम चोपड़ा एज विलेन इतने हिट हुए कि भाई उसके बाद तो लोगों ने ना उनको नेगेटिव शेड में ही देखना शुरू कर दिया था। तो उनके पास जितने भी ऑफर आते थे वो एज विलेन ही आते थे। पुरानी जीन्स पे इसी फिल्म की बातें बैक टू बैक चलती रहेंगे। श्रेया के साथ हो आप। और हाँ, अगर बैक टू बैक मुझसे इंडिविजुअल बात करनी है तो फेसबुक और इंस्टा पे माय हैंडल इज आरजे श्रेया विद लव। दैट्स आरजे SHREYA श्रेया विद लव।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Gabana. Burga, burga. La virpa la burga.
2: Mirchi, burga.
3: हेलो
4: आकाश
3: जी,
4: आकाश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपने मुर्गा बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था ना?
3: हाँ हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
4: मुझे बताइए किसका मुर्गा बनाना है?
3: मेरी गर्लफ्रेंड है।
4: ओहो, यही मिली है आपको?
3: जी जी जी, बहुत पंगे लेती है।
4: अच्छा आकाश, ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है क्योंकि मुर्गा बनाने से पहले हम जो रिक्वेस्ट करते हैं मुर्गे की, उनसे एक फॉर्म फिल करा लेते हैं।
3: ठीक है,
4: मुझे अपना पूरा नाम बता दीजिए।
3: आकाश मल्होत्रा।
4: अच्छा आकाश, मैं थोड़ा सा इसको फॉर्म को पढ़ देता हूँ क्योंकि मुर्गा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है बनाना, कभी गुस्सा आ जाता है लोगों को, यू नो। तो इसमें कुछ क्लॉज और रूल्स हैं, वो आप फॉलो करेंगे, इसको अग्री करेंगे तो ही हम मुर्गा बनाएंगे।
3: राइट, बिल्कुल।
4: चलिए, अच्छा इसमें ये है, मैं इसमें आपका नाम लिख देता हूँ, मैं आपको पढ़ देता हूँ। मैं आकाश मल्होत्रा अपने होशो आवाज में अपनी गर्लफ्रेंड पूजा का रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बनवा रहा हूँ। अगर कल को पूजा को इस बात पे गुस्सा आ जाता है तो उसका जिम्मेदार आकाश यानी मैं खुद हूँगा। ठीक है
3: जी, डेफिनेटली।
4: ओके, अगर गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि पूजा केस कर देती है मुर्गा बनाने वालों पे, तो उसका जिम्मेदार भी आकाश मल्होत्रा होगा।
3: अच्छा,
4: अगर केस पूजा जीत जाती है और सजा के तौर पे 10 साल की बिना बेल की सजा होती है, तो उसका जिम्मेदार आकाश मल्होत्रा होगा।
3: क्या कह रहे हैं?
4: अगर सजा के तौर पे सजाए काला पानी भेजा जाए तो आकाश मल्होत्रा जाएगा। ये दूसरा
3: क्या सर, मतलब नहीं, मुर्गा बनाने में ऐसा सभी होता है?
4: नहीं नहीं, ये फॉर्मेलिटी है ना सर, ये पूरा करना होता है, ये कंपनी की तरफ से है। ये लास्ट सुन लीजिए, लास्ट में लिखा हुआ है, अगर मुर्गा बनवाने वाले ने शुरू की 2 शर्तें मान ली हैं तो उसको मुर्गा बनवाना ही पड़ेगा जिसका वो चाहता है। तो मैं पूजा को फोन करता हूँ, अब आप मजे लीजिएगा, है ना?
3: फिर देखिए,
4: हाँ बताइए।
3: हाँ, वो उसको सीरियसली गुस्सा आ गया और
4: अरे नहीं, बात तो सुनिए, गुस्सा आपको
3: आज तो प्लीज रहने दीजिए, इसको मेरी बात मान लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी।
4: चलिए मैं एक शर्त पे रहने दूंगा
3: जी,
4: अगर आप बोलेंगे मेरे साथ कुकड़ों। आकाश तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मैं तुम्हें ऑन एयर डाल दिया है और तुम्हारा ही मुर्गा बन गया।
3: मेरा बन गया कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
7: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
8: I am not going to bed with you ever again.
7: But why? What did I do?
8: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
7: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
8: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
7: Yes, yes, yes, come soon. Honey!
8: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
7: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
9: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
9: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
11: वॉरिड अबाउट हाउ योर चाइल्ड विल स्टे कनेक्टेड विद देयर रूट्स और मेंटेन आवर ट्रेडिशंस?
12: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
11: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
13: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
14: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
13: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
15: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए Lion Mortgage, assisting first time home buyers, also offering zero closing cost refinance option. For more information, call 732-339-3155. Log on to lionmtg.com.
16: तेरा क्या होगा कालिया?
17: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
16: अब मिर्ची खा।
18: Radio Mirchi, it's hot.
19: आप सुन रहे हैं पुरानी जींस, श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

मनोज कुमार जी की एक खास बात थी, वो सिर्फ अपनी फिल्म के हीरो नहीं होते थे, वो अपनी फिल्मों के म्यूजिक में भी बैठते थे, वो अपनी फिल्मों के कभी कभी डायलॉग्स भी लिखते थे, वो अपनी फिल्मों के कभी कभी स्क्रिप्ट भी लिखते थे। पुरानी जीन्स पे आफोज रेया के साथ एंड मनोज कुमार यूज टू बी एक्सट्रीमली इन्वॉल्व इन द पिक्चर्स ही यूज टू डू। सो वो कौन थी जब उन्होंने हामी भरी ये फिल्म करने के लिए? इंडिया की इनिशियल ईयर्स की सस्पेंस फिल्म थी, थ्रिल फिल्म थी ये, थ्रिलर कह लो। तो इसमें साधना जी के साथ थे मनोज कुमार, और मनोज कुमार को कुछ सीन्स, कुछ लिखे हुए सीन्स जो कि ध्रुव चैटर्जी ने लिखे थे, वो पसंद नहीं आए थे। तो आपको पता है उन्होंने खुद ये सीन्स लिखे, रीराइट के, एंड दे वर रियली अप्रिशिएटेड। पुरानी जीन्स पे वो कौन थी की बातें विद मी श्रेया। तो बस कहीं भी मत जाना।

0: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
1: तू ना कभी चेंज नहीं होगा।
2: और तू तो देवी है ना।
3: इस राखी बोल दो दिल की बात, क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
0: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट viranijewelers.com।
4: भैया मेरे राखी के
5: दिस रक्षा बंधन सेलिब्रेट द ब्यूटीफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
6: This September 12th and 13th, join us at the Indo-American Community Fair at Shri Krishna Mandir, Morganville.
5: Enjoy delicious Indian food, shopping, live cultural performances, a health fair, kids activities and much more. Morning 10 a.m. to 7 p.m.
7: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
8: The mortgage industry has changed over the years, but hamari honest advice aaj bhi wahi hai.
9: Jason and Sameer are officially relaunching SD Capital Funding with a renewed focus on you.
8: Buying a home? Our rate saver will beat your locked rate.
9: Already a homeowner? Drop your monthly payments with our free rate alert system. SD Capital Funding. Service jis par sab kare bharosa.
10: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
11: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी, स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
12: Oh, no!
13: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
16: Tera kya hoga, Kalia?
17: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
16: Ab mirchi kha.
18: Radio Mirchi, it's hot.
19: It's 3:30 p.m. Mirchi Time Check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मनोज कुमार जी को इस फिल्म की रियल हीरोइन ताज होटल के बाहर दिखती थी, जो उनको काफी बार डरा चुकी थी। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मिस्ट्री फिल्म कह लो, हॉरर फिल्म कह लो, वो कौन थी। तो इसमें ना एक डॉफ लेडी की जरूरत होती है। आप ना डायरेक्टर राज

असला उनको ढूंढने निकलते हैं, लेकिन उनको वो मिलते ही नहीं है। तो ऐसे में मनोज कुमार, हु वाज आल्सो द एक्टर ऑफ द फिल्म, और उन्होंने कुछ पार्ट्स ऑफ द फिल्म रीराइट भी किए थे, उनको याद आया कि जब जब वो ताज होटल के बाहर निकलते हैं ना, तो उन्हें ऐसी ही एक डॉफ बेगर दिखती है जो कि उनको कई बार डरा चुकी है। तो बस उन्होंने सजेस्ट किया राज खोसला को, राज खोसला उनको मूवी के सेट पे ले आए, एंड शी वाज एक्चुअली द हीरोइन ऑफ द फिल्म, क्योंकि फिल्म हॉरर थी तो इनको देख करके स्क्रीन पे ना बहुत लोग डरा करते थे। पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया, कम राइट बैक।

कुर्सी की पेटी बांध दीजिए दोस्तों, क्योंकि आज की शाम सीधा वीकेंड की उड़ान भरने वाली है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और मुझे फ्राइडे ना हमेशा एयरपोर्ट जैसा लगता है, क्योंकि पूरा हफ्ता हम अपनी फ्लाइट्स पकड़ते रहते हैं, ऑफिस की, मीटिंग्स की, डेडलाइंस की, ट्रैफिक की। और फिर फ्राइडे शाम आते ही लगता है जैसे अनाउंसमेंट आ गया हो, लेडीज एंड जेंटलमैन, योर फ्लाइट टू वीकेंड इज राउ रेडी फॉर बोर्डिंग। किसी ने ऑलरेडी डिनर के प्लान्स बना लिए, कोई रोड ट्रिप के लिए बैग्स पैक कर रहा है, तो कोई बस घर जाके पजामास पहनने का काउंट डाउन कर रहा है। और कुछ लोग का तो वीकेंड का पहला प्लान ही होता है कि बस सैटरडे का अलार्म नहीं लगाना है। और मुझे लगता है कि यार फ्राइडे की सबसे अच्छी बात तो यही है कि सिर्फ दो छुट्टियों का प्रॉमिस ही नहीं लाता, ये पूरे हफ्ते की मेहनत का ना रिवॉर्ड लेकर आता है। तो चलिए आज एक काम करते हैं, स्माइल थोड़ी बड़ी करते हैं, बॉलीवुड का वॉल्यूम फुल ऑन बढ़ाते हैं और ऑफिशियली वीकेंड मोड ऑन करते हैं। वैसे आप भी बताइए दोस्तों, आपके वीकेंड के बोर्डिंग पास किस डेस्टिनेशन का है? लॉन्ग ड्राइव, फैमिली टाइम, दोस्तों के साथ मस्ती, या सिर्फ डू नॉट डिस्टर्ब मोड? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए इस वीकेंड की फ्लाइट का पहला साउंड ट्रैक प्ले करते हैं एक जबरदस्त बॉलीवुड गाने के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na
1: vidba la burga. Milci, burga. Hello.
2: Hello, ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब?
1: किसके यहाँ से?
2: स्वर्गीय अनिल चौहान.
1: मतलब किसके यहाँ बात फोन मिलाया आपने?
2: स्वर्गीय अनिल के यहाँ फोन मिलाया भाई साहब. मैं बोल रहा हूँ
1: अनिल ही बोल रहा हूँ. स्वर्गीय नहीं हूँ मैं, जिंदा हूँ.
2: सर स्वर्गीय अनिल चौहान उनका पूरा नाम है. सर मैं से बोल रहा हूँ पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से.
1: हाँ.
2: तो ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से कोई हो तो उनसे बात करा दीजिए.
1: दिमाग खराब है तेरा? अबे मैं खुद बोल रहा हूँ. तू सोच कम से कम.
2: सर आप ये बेवकूफी की बात ना करें. आप एक तो जुबान संभाल की बात करें. मैं पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ. आप कह रहे हैं आप जिंदा हैं, यहाँ पोस्टमार्टम कर रखा है हमने. आपकी रिपोर्ट आ गई है सर, आके ले जाइए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट.
1: स्वर्गीय नहीं, तू अनिल चौहान से ही बात कर रहा है.
2: स्वर्गीय अनिल चौहान यार, आप जो लक्ष्मी नगर में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ.
1: हो गया आपका कि स्वर्गीय अनिल चौहान? मैं जिंदा हूँ भाई. मैं रहा है घर परिवार वाले में, तेरे कोई पागल तो नहीं हो गया?
2: कौन पागल हो गया आपकी? पोस्टमार्टम मेरी बात सुन लीजिए आप. मैंने मारा पोस्टमार्टम हमने किया. स्वर्गीय अनिल चौहान से बात करनी है, उनसे बात कराई. बीच में आप कैसे आ गए यार? कमाल कर दिया आपने. दिमाग खराब मेरा नहीं हुआ, आपको यकीन नहीं है तो दोबारा आके पोस्टमार्टम करा लो. एक ही रिपोर्ट है दोनों की.
1: डॉक्टर बोल रहा
2: हूँ. मैं डॉक्टर विजय बोल रहा हूँ यार. मैंने खुद पोस्टमार्टम किया उनका. केस आप क्या करेंगे? केस तो मैं उन पे करूंगा, स्वर्गीय अनिल चौहान पे, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे लिखा हुआ आप बाप बनने वाले थे. वो बाप बनने वाले.
1: परिवार वाले आदमी से ऐसी बात करता है? कौन है तेरी
2: बेवकूफी की बात मत करिए आप. आप आइए यहाँ पे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में, दिखाता हूँ आपकी लाश, आपकी बॉडी दिखाता हूँ यहाँ पे आके. पोस्टमार्टम तो करके छोड़ूंगा मैं.
1: जी
2: स्वर्गीय अनिल चौहान जी के यहाँ से कोई बात कर सकते हैं मेरे से?
1: तेरा दिमाग खराब हो गया.
2: मेरी बात सुनिए सर. सर मेरी बात सुनिए. आप फोन मत काटिएगा, बड़ा मुश्किल से मिलता है. अनिल चौहान जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं. आपका मुर्गा बनाया, छोटा सा मजाक किया है. आपकी उम्र बहुत लंबी है यार, आप टेंशन ना लें.
1: अरे किसी बहुत मार खाओगे आप, सही बता रहे हैं. क्या
2: सर, मैं पिटने को तैयार हूँ, लेकिन आपकी हंसी सुन के मुझे मजा आता है. अब मेरे साथ आप प्यार से कह दीजिए.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
3: भैया मेरे राखी के.
4: दिस रक्षाबंधन सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव. सेलिब्रेट रक्षाबंधन विद राज ज्वेल्स.
5: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
4: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
7: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी. एक्सपर्ट इन पाम रीडिंग, फेस रीडिंग, हॉरोस्कोप्स एंड बर्थ चार्ट. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
8: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
12: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शारदा लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम की जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट था। एल्बम था प्रीतम ने बनाया हुआ लव आजकल का, तो ये तो आपको याद होगा ही, लेकिन इसका जो ये खास गाना है जो सीधा साधा नहीं था, बिल्कुल था ट्विस्ट, पूरा मूड पार्टी मोड में स्विच कराने वाला एक गाना, जो यार लिखा तो वैसे इरशाद कामिल ने था, सिंगर थे नीरज श्रीधर और म्यूजिक था प्रीतम का। और जब भी शाम को थोड़ा ग्रूव चाहिए था ना, तो हम ट्विस्ट सुनते थे।

नीरज श्रीधर की एनर्जेटिक आवाज ही ऐसी थी कि यार अगर तुम बस बैठे हो ना तो भी थिरकने लग जाते थे। और प्रीतम का फंकी कंपोजिशन, इन दोनों का बहुत ही परफेक्ट मेल था। और ये जो गाना था हर पार्टी में अपने आप को पोजीशन कर ही लेता था। वैसे मज़े की बात तो ये है कि इस सॉन्ग की कोरियोग्राफी में सैफ अली खान ने अपने नेचुरल डांसिंग स्टाइल को फुल ऑन एक्सप्लोर किया था, जहाँ उन्होंने स्पॉन्टेनियस डांस मूव्स किए थे। मतलब वो ज़्यादा कोरियोग्राफी हुई ही नहीं थी उस मूवी में, जो फिल्म में सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग था। वैसे प्रीतम और इरशाद कामिल का कोलैबोरेशन फुल ऑन फन वाइब, ये गाना एक इंस्टेंट क्राउड पुलर बन ही गया था और आज भी उतना ही हमें थिरकाता है, उतना ही हमें डांस करने पे मजबूर करता है। तो आप भी बताना कि आपका ट्विस्ट मोमेंट कब था। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और क्या आज भी ये गाना सुन के आप भी अपने आप में डांस करते हो? वैसे इस एल्बम के और भी गाने के बारे में बात होने वाली है, तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
0: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
2: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
3: द मॉर्गेज इंडस्ट्री हैज चेंज्ड ओवर द इयर्स, पर हमारी ऑनेस्ट एडवाइस आज भी वही है।
4: जेसन एंड समीर आर ऑफिशियली रीलॉन्चिंग एसडी कैपिटल फंडिंग विद अ रिन्यूड फोकस ऑन यू।
3: बाइंग अ होम, आवर रेट सेवर विल बीट योर लॉक्ड रेट।
4: ऑलरेडी अ होम ओनर, ड्रॉप योर मंथली पेमेंट्स विद आवर फ्री रेट अलर्ट सिस्टम। एसडी कैपिटल फंडिंग, सर्विस जिस पर सब करे भरोसा।
1: देसी खाना,
5: देसी शॉपिंग,
1: देसी कल्चर
5: और देसी एंटरटेनमेंट,
1: बस एक ही डेस्टिनेशन,
5: इंडो अमेरिकन कम्युनिटी फेयर, सितंबर 12th और 13th, श्री कृष्णा मंदिर, मॉर्गनविल।
6: फॉर वेंडर्स एंड इन्फॉर्मेशन विजिट www.krishnatemple.org।
7: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
0: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
1: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
0: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
1: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islin।
8: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
9: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
8: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
10: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
8: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
1: एक ही होता है।
8: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक, न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Tickets 4:30 PM. Mirchi Time Check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shandar. Let's do not donkey have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम की जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट था। जी हाँ, लव आज का कल का, लव आज कल कंपोज्ड बाय प्रीतम। और उस एल्बम का जो ये गाना है, ये एक ऐसा गाना था जिसने यार ब्रेकअप को भी ना मुस्कुरा कर देखना सिखा दिया था। ऑफकोर्स आपने गेस कर ही लिया होगा, चोर बाजारी। मतलब कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि ज़्यादातर ब्रेकअप सॉन्ग्स रुला देते हैं या फिर फिलोसॉफिकल हो जाते हैं, मतलब अरिजीत सिंह टाइप्स, लेकिन चोर बाजारी ये हार्ट ब्रेक को भी ना थोड़ा शरारती बना देता था। मतलब अगर आज की शाम में ट्रैफिक में फंसे एक्स की याद आ भी जाए तो ये गाना कहता है कि यार थोड़ा हंस लो उस पे, क्योंकि नीरज श्रीधर और सुनिधि चौहान की नोकझोंक भरी वोकल्स बिल्कुल दो एक्स लवर्स की टीजिंग जैसी लगती है। और प्रीतम ने इसमें दर्द को ढोलक और बाउंस के साथ पैकेज किया। मतलब सोचिए क्या कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। मज़े की बात तो ये है कि इम्तियाज़ अली ने इस गाने को ना स्पेसिफिकली सैड सेपरेशन जोन में नहीं रखा था, डेलिबरेटली प्लेफुल बनाया था, क्योंकि जय और मीरा का जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म होके भी मूवी में ख़त्म नहीं हुआ था, और इसीलिए गाना ब्रेकअप सॉन्ग होकर भी सेलिब्रेशन लगता है। और वो अकॉर्डियन स्ट्रीट बैंड जैसा जो फील है ना, वो यार दिल्ली की गलियों में सीधा लेके जाता है, जहाँ दिल और ईगो दोनों साथ में भाग रहे होते हैं। जैसे आप भी बताना कि हार्ट ब्रेक का कौन सा ऐसा सॉन्ग है जो आपको बहुत पसंद है। क्या वो इसी तरह हल्का वाला गाना है या फिर दिल तोड़ के चीर देने वाला गाना है? टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHR। फिलहाल करेंगे इसी एल्बम पे थोड़ी और बातें, लेकिन आपके लिए राइट हियर चोर बाजारी ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
2: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
1: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
2: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
1: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Izzilin.
3: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
4: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
3: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
5: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
6: दिस गोल्डन आवर इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क। सुनहरी होगी ड्राइव जब तनिष्क गोल्ड ज्वेलरी से सुनहरी होगी हर वाइब।
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
7: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और राखी का सीजन जोरों शोरों से चल रहा है और इस बार सेलिब्रेशंस के साथ एक्साइटिंग प्राइजेस भी आपका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स, क्योंकि इस रक्षाबंधन सिर्फ रिश्तों की मिठास ही नहीं एक्साइटिंग प्राइजेस और अमेजिंग हैम्पर जीतने का मौका भी आपका इंतजार कर रहे हैं थैंक्स टू नानक फूड्स ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ। तो पार्टिसिपेट करना तो बहुत ही आसान है, आपको टाइप करना है राखी और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है 9033647244 या फिर आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी पर भी डीएम कर सकते हो @rjmirchisiddhi SIDDHI। सिर्फ एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन और आप एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने की रेस में शामिल। और जी हाँ, राखी की शॉपिंग का प्लान हो रहा है तो विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड इजलिन न्यू जर्सी जरूर विजिट कीजिए। वहां फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। डिटेल्स के लिए जरूर जाइए viranijewelers.com पर। तो इस राखी मिठास भी, शॉपिंग भी और एक्साइटिंग प्राइजेस भी, क्योंकि इस बार नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स। आज ही रजिस्टर कीजिए। और अब इस फेस्टिव वाइब को म्यूजिक के साथ और भी खास बनाते हैं विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट

92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Who are you?
1: This hour is brought to you by Raj Jewels.
2: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
3: शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और ऐसे कैसे हो सकता है कि वीकेंड का प्लान बने, स्क्रीन टाइम का प्लान बने, और वो भी बिना स्नैक के? नो नो नो नो। और इसीलिए दीप चिप्स लाए हैं आपका मूड सेट करने के लिए। अलग अलग फ्लेवर्स के, अलग अलग टाइप के चिप्स, चाहे फिर वो ब्लैक पेपर वाला थोड़ा बोल्ड, रेड चिली वाला थोड़ा फिल्मी, या नेचुरल एकदम सीधा साधा क्रंच। तो यार, एक बोरिंग से स्क्रीन टाइम को बनाओ फुल ऑन धमाकेदार। लाइट्स ऑफ, नेटफ्लिक्स ऑन, और दीप चिप्स का पैकेट क्रंच। ये सिर्फ स्नैक नहीं है, ये यार वीकेंड वाइब्स का रिमोट कंट्रोल है। तो अगर आपने ट्राई किया तो बताना कैसा लगा, और नहीं किया है तो आज ही ट्राई करना दीप चिप्स फ्लेवर का एटीट्यूड, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Escabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Could I speak to Manish, please?
2: Speaking.
3: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से. ओके मनीष, आई नीड योर फेवर. आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी. मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को. मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन.
2: ओके
3: राइट, कि पहले इंसान एप था. आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में. यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया. राइट,
2: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
3: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ. 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे. इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके.
2: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं.
3: वही, मतलब... तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था. तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे. तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर. आई एम श्योर के सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था. बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी. तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए. कल का रख ले. मेरी बात सुनो. आई एम प्रोफेसर. मेरी बात सुनिए यार. हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है.
2: हेलो,
3: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी. मेरी बात सुनिए. मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे. यार मैं मुर्गा बनाया, तुम रेडियो मिर्ची पे हो. आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार. मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने जो लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार. इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
6: भाई बहन का रिश्ता होता है priceless. तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
7: Celebrate Rakhi with Rajbhog. Rajbhog wishes you a very happy Raksha Bandhan. Orders on Rajbhog.com or visit your local grocery store.
8: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
9: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
10: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
11: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
10: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
12: फ्रॉम द फाइनेस्ट किचन्स इन इंडिया, अ 1000-year-old ट्रेडिशन ऑफ खानदानी शेफ्स रेसिपीज. The Naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jaan.

0: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
1: ओ दलजीत दोसांझ, भाई आप क्या लेने आए हो?
2: शुद्ध देसी घी।
1: लो भाई, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है।
2: घी टेस्ट के लिए थोड़ा खाते हैं, घी सेहत के लिए खाते हैं। मुझे चाहिए शुद्ध देसी घी, जो घर वाला टेस्ट दे, जो ब्रांड भी हो ना वो ट्रस्टेड हो। वो एक नाम मेरे दिमाग में नहीं आ रहा।
1: नानक घी भाजी,
2: नानक घी चाहिए यार। अगर आपको भी चाहिए शुद्ध देसी घी तो कहिए नानक घी चाहिए। सो गुड सो प्योर, इट्स नानक।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी कभी लाइफ में सब कुछ सेम लगने लगता है, मतलब सेम जॉब, सेम रूटीन, सेम गोल्स, पर फिर भी हम थोड़ा पॉज ले लेते हैं और सोचते हैं कि क्या इसे बेटर बना सकते हैं। और अक्सर जवाब होता है हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, बस थोड़ा सा रीथिंक, थोड़ा सा रीसेट और चीज़ें ज़्यादा अलाइन लगने लगती है। आजकल चेंजिंग मार्केट में भी लोग यही कर रहे हैं, जो उनके पास है उसे ही स्मार्टर बनाने की कोशिश। और जब बात घर की आती है तो ये रीथिंक एक स्मार्ट मूव बन सकता है, जिसे हम कहते हैं रीफाइनेंसिंग। और इसी को सही तरीके से कैसे समझें और कब ये आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, यही बताने आ रहे हैं मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लायन मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
1: शुक्र करो, शुक्रवार है भाई और बहनों। मैं हूँ आपका दोस्त बीश फ्रॉम लायन।

0: starts 5:30 p.m. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Shanda, let's do not donkey, have a funky time.
2: बॉलीवुड की कुछ हीरोइंस का लुक ना फिल्म से निकलकर सीधा फैशन मेमोरी बन जाता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और कभी माधुरी का आइकॉनिक इंडियन लुक, तो कभी दीपिका का ग्रैंड ट्रेडिशनल स्टाइलिंग, तो कभी करीना का एफर्टलेस ग्लैम। यार फिल्म खत्म हो जाती है लेकिन वो लुक याद रह ही जाता है, क्योंकि मेमोरेबल स्टाइल यूजुअली लाउड नहीं होता। आउटफिट, कॉन्फिडेंस और वो केयरफुली चोजन फिनिशिंग टचेस मिलकर ही उसे सिग्नेचर बना देते हैं। और रियल लाइफ में भी किसी की वेडिंग हो, पार्टी हो या स्पेशल इवनिंग, उस पर हम सबका अपना अपना एक हीरोइन मोमेंट तो बनता है। और उसी के लिए तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स। एंजॉय अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, प्लस 0% डिडक्शन ऑन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड गोल्ड अबाउट 18 कैरेट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो मूवी स्क्रीन हो या रियल लाइफ, तनिष्क के फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स के साथ अपना सिग्नेचर मोमेंट्स आप भी क्रिएट कर सकते हो। और दोस्तों मुझे जरूर बताना कि बॉलीवुड की कौन सी ऐसी हीरोइन है जिसका लुक आपको आज भी आइकॉनिक लगता है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI, क्योंकि मेरी फेवरेट हीरोइन का आइकॉनिक गाना आपके लिए राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

सोचा है हमारे लाइफ में नोटिफिकेशंस कितनी सारी होती है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और दिन भर की नोटिफिकेशन, जैसे कि योर ऑर्डर हैज बीन डिलीवर्ड, योर पेमेंट वॉज सक्सेसफुल, मीटिंग स्टार्ट्स इन 10 मिनट्स। यार रोज इतनी नोटिफिकेशन आती है कि कभी कभी दिल करता है कि एक नोटिफिकेशन ऐसी भी आए जैसे कि कंग्रेचुलेशन, यू आर अ विनर। वैसे वो नोटिफिकेशन शायद इतनी दूर भी नहीं, बिकॉज इस रक्षाबंधन नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा इन एसोसिएशन विद वीरानी ज्वेलर्स। यानी इस रक्षाबंधन एक्साइटिंग प्राइजेस और अमेजिंग हैम्पर्स जीतने का मौका आपका इंतजार कर रहा है, थैंक्स टू नानक फूड्स ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ एंड वीरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड इज इन न्यू जर्सी, जहां फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स भी चल रहे हैं ऑन 24 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट वीरानीज्वेलर्स.com फॉर मोर डिटेल्स। तो आपको करना है बस आसान सा काम, टाइप करना है राखी और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजना है 9033647244 9033647244, या फिर आप मुझे इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हो @RJMirchiSiddhi SIDDHI। और हो सकता है अगली नोटिफिकेशन आपके चेहरे पर स्माइल आए, क्योंकि शायद वो कहे कि कंग्रेचुलेशंस, यू आर द विनर। तो आज ही पार्टिसिपेट कीजिए इन नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा इन एसोसिएशन विद वीरानी ज्वेलर्स। अब देखते हैं ये जो अगला गाना है वो आपके चेहरे पे कितनी स्माइल लाती है। तो सुनते रहिए मिर्ची, it's hot.

0: brought to you by Deep Foods. Deep Foods खाओ तो जानो।
1: ओ चन्नती कुड़ी, ओ चन्नती कुड़ी।

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकां ली पंग होगी।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels. Sham Shandar,
1: let's do not donkey, have a funky time. एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी और बातें हो रही है 2009 के उस सुपर डुपर हिट एल्बम की जिसका यार हर एक गाना धमाकेदार था। कंपोज्ड बाय प्रीतम, 2009 का लव आजकल का एल्बम। और वैसे तो यार इसके सारे ही गाने अमेजिंग थे, लेकिन एक गाना ऐसा है जिसे सुन के ना शांत रहना इम्पॉसिबल हो जाता है, आर फेवरेट आहू आहू। क्योंकि सच बताओ तो आहू आहू वो गाना है जो सुनते ही बॉडी पहले रिएक्ट करती है और दिमाग बाद में बोलता है। फिर चाहे इवनिंग ड्राइव टाइम हो या किचन में चाय बन रही हो, इस बीट पे शोल्डर्स खुद हिलने लगते हैं, क्योंकि नीरज श्रीधर की जो प्लेफुल वोकल्स है, मास्टर सलीम का पंजाबी फायर और सुजन डी मेलो का एटीट्यूड और ऊपर से प्रीतम के ढोल मीट्स क्लब का ग्रूव, ये गाना मतलब फुल ऑन कंट्रोल्ड मैडनेस है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि ये जो सॉन्ग का फोक क्लब फ्यूजन है ना, उस वक्त ही इतना ज़्यादा फ्रेश लगता था और ना सिर्फ उस वक्त, अभी भी उतना ही ग्रूविंग है। और उसके ऊपर मास्टर सलीम का जो रस्टिक पंच है, उसने इस ट्रैक को वो देसी स्वैगर दिया था जो हमें सीधा डांस फ्लोर पे लेके जाता है। वैसे ऑनेस्टली ये जो गाना है वो उन रेयर गानों में से है जो थोड़ा सा फ्लर्ट करता है, थोड़ा सा टीज करता है और बहुत ज़्यादा ग्रूव कराता है। तो चलिए आपको मैं चैलेंज देती हूँ कि आहू आहू सुन के ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टिल बैठे हो। टेल मी ऑन कि ये गाना सुन के क्या आपने थोड़ा हेड बॉप किया या फिर फिंगर टॉप किया या फिर स्टरिंग पे बीट मारी, और अगर मारी तो यू आर कॉट। दोस्तों मुझे जरूर बताना कि ये सब हुआ कि नहीं। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्दी SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए लव आजकल का आऊं आऊं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La vizba la burga.
2: Mirci, burga.
3: हेलो
4: आकाश
3: जी,
4: आकाश मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपने मुर्गा बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था ना?
3: हाँ, बिल्कुल।
4: मुझे बताइए किसका मुर्गा बनाना है?
3: मेरी गर्लफ्रेंड है।
4: ओहो, यही मिली आपको?
3: जी, बहुत पंगे लेती है।
4: अच्छा आकाश, ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटी है क्योंकि मुर्गा बनाने से पहले हम जो रिक्वेस्ट करते हैं मुर्गे की, उनसे एक फॉर्म फिल करा लेते हैं।
3: ठीक है,
4: मुझे अपना पूरा नाम बता दीजिए।
3: आकाश मल्होत्रा।
4: अच्छा आकाश, मैं थोड़ा सा इसको फॉर्म को पढ़ देता हूँ क्योंकि मुर्गा थोड़ा सा मुश्किल भी होता है बनाना, कभी गुस्सा आ जाता है लोगों को, यू नो। तो इसमें कुछ क्लॉज और रूल्स हैं, वो आप फॉलो करेंगे, इसको अग्री करेंगे तो ही हम मुर्गा बनाएंगे,
3: राइट? बिल्कुल।
4: चलिए, अच्छा इसमें ये है, मैं इसमें आपका नाम लिख देता हूँ, मैं आपको पढ़ देता हूँ। मैं आकाश मल्होत्रा अपने होशो आवाज में अपनी गर्लफ्रेंड पूजा का रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बनवा रहा हूँ। अगर कल को पूजा को इस बात पे गुस्सा आ जाता है तो उसका जिम्मेदार आकाश यानी मैं खुद हूँगा, ठीक है?
3: जी, डेफिनेटली।
4: ओके, अगर गुस्सा इतना ज्यादा आ जाता है कि पूजा केस कर देती है मुर्गा बनाने वालों पे, तो उसका जिम्मेदार भी आकाश मल्होत्रा होगा।
3: अच्छा,
4: अगर केस पूजा जीत जाती है और सजा के तौर पे 10 साल की बिना बेल की सजा होती है, तो उसका जिम्मेदार आकाश मल्होत्रा होगा।
3: क्या कह रहे हैं?
4: अगर सजा के तौर पे सजाए काला पानी भेजा जाए तो आकाश मल्होत्रा जाएगा।
3: ये दूसरा क्या सर, मतलब नहीं, मुर्गा बनाने में ऐसा सब भी होता है?
4: नहीं नहीं, ये फॉर्मेलिटी है ना सर, ये पूरा करना होता है, ये कंपनी की तरफ से है। ये लास्ट सुन लीजिए, लास्ट में लिखा हुआ है, अगर मुर्गा बनवाने वाले ने शुरू की 2 शर्तें मान ली हैं तो उसको मुर्गा बनवाना ही पड़ेगा जिसका वो चाहता है। तो मैं पूजा को फोन करता हूँ, अब आप मजे लीजिएगा, है ना?
3: सर मेरी बात तो सुनिए।
4: हाँ बताइए।
3: फन की बात अलग है, लेकिन उसको सीरियसली गुस्सा आ गया। और
4: अरे मेरी बात तो सुनिए, गुस्सा आपको आज
3: तो प्लीज रहने दीजिए, इसको मेरी बात मान लीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी।
4: चलिए मैं एक शर्त पे रहने दूंगा
3: जी,
4: अगर आप बोलेंगे मेरे साथ कुकड़ू। आकाश तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मैं तुम्हें ऑन एयर डाल दिया है और तुम्हारा ही मुर्गा बन गया।
3: मेरा बन गया वो कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक। दिस गोल्ड अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय राज ज्वेल्स, किंगडम ऑफ ज्वेल्स, वेयर ट्रेडिशन मीट्स स्टाइल। This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels. Inefficient.
6: Very complex.
7: Clumsy.
8: Confusion ही confusion.
5: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business. Sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
9: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
9: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Iselin. Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
10: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Iselin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
11: Kisi zamane mein माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
12: क्या बनाया आज? शाही पनीर बनाए, कढ़ाई पनीर बनाए, मटर पनीर बनाए या फ्राई पनीर बनाए? अगर आपके पास नानक पनीर है तो आप कुछ भी बना सकते हैं। आंखों में चमक और चेहरे पे नूर सिर्फ ब्यूटी पार्लर जाने से नहीं आता, उसके लिए अच्छा खाना भी खाना पड़ता है। खाना भी वो जो क्वालिटी और टेस्ट में हो नंबर वन, जैसे आप सबकी पसंद नानक पनीर। सो गुड सो प्योर इट्स नानक।
0: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
0: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
13: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
7: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
14: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
15: एक ही होता है।
7: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और बातें हो रही है 2009 के एक ऐसे एल्बम के बारे में जिसका हर एक गाना ना सिर्फ सुपर डुपर हिट था बल्कि दिल को छू लेने वाला था। जी हाँ, वैसे तो इस एल्बम के बारे में हमने बहुत सारी बातें की है, इसके गानों के बहुत सारी बातें की है। कंपोज बाई प्रीतम, लव आजकल का एल्बम, जिसमें यार चोर बाजारी जैसा ब्रेकअप वाला गाना भी था जिसने ब्रेकअप के बाद मुस्कुराना सिखा दिया था, और एक ऐसा गाना था जिसने बस दूरियों को महसूस कराना सिखाया था। जी हाँ, ये दूरियां बाय मोहित चौहान, क्योंकि कुछ गाने सुनते ही ना दिल में उतर जाते हैं और दूरियां उन्हीं में से एक गाना था। जब चोर बाजारी हमने सुना था तब लगा था कि इम्तियाज अली और प्रीतम ने इस एल्बम को काफी ब्रॉड रेंज बनाया था कि एक हार्ट ब्रेक के गाने को भी इतने हल्के से शरारती रंग में दिखाया था, लेकिन फिर पता चला क्योंकि बाद में दूरियां आने वाला था, क्योंकि दूरियां वो एक ऐसी कहानी बताता था जब साइलेंस भी बोलने लगता है, क्योंकि मोहित चौहान की आवाज़ ही ऐसी थी, जो रॉनस उनकी आवाज़ में थी ना, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो गाना गा रहे हैं, बस ऐसा लग रहा था कि दिल से कुछ बोल रहे हैं। और प्रीतम का कंपोजिशन भी देखिए, मतलब ना कोई बीट्स, बस गिटार और हवा और थोड़ी सी साइलेंस, जैसे गाने में भी ना फासला हो। और यही तो कमाल की बात है इस गाने की, ये गाना सिर्फ दूरियों की बातें नहीं करता, दूरियां महसूस कराता है। किसी का साथ छूटना, लॉन्ग डिस्टेंस या बस एक इमोशनल गैप, हर कोई जो इस गाने को सुनता है ना अपनी कहानी में उसे रख देता है। और मज़े की बात तो ये है कि मोहित चौहान के फ्री फ्लोइंग फ्रेजिंग और ऑलमोस्ट एक कन्वर्सेशनल टाइप सिंगिंग ने इस ट्रैक को बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट बना दिया, और शायद इसीलिए ये हार्ट ब्रेक एंथम कम पर्सनल कन्फेशन ज़्यादा लगता है। वैसे आप भी मुझे बताइए, क्या आपको ये गाना उतना ही डीप लगता है जितना मुझे लगता है? टेल मी ऑनेस्ट एट आर जे मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और अगर इस गाने ने दूरियाँ फील कराई है तो किसको याद करके आज ये गाना सुन रहे हो वो भी बताना। तब तक के लिए सुनते हैं दूरियाँ फ्रॉम द अमेजिंग एल्बम लव आजकल, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: राखी यादों की कारवां है,
1: जहां मीठी करारी नमकीन कई यादें हैं।
0: यही यादें राखी को पूरा करती हैं।
2: अपने सिब्लिंग्स के साथ मीठी तीखी मेमोरी शेयर कीजिए एंड गेट अ चांस टू विन शानदार गिफ्ट हैम्पर्स।
3: क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
4: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
3: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
5: This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
6: From the finest kitchens in India, a 1,000-year-old tradition of Khandani chef's recipes, comes the naan. The same traditional taste, flavor and freshness guaranteed. Deep cow to jano.
7: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
8: ਆਈ ਐਂਜੋਏ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਮਾਮਾ।
9: ਅਰੇ ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰੇ, ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਕਾ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰੇ ਬਾਬਾ।
10: ਅਗਰ ਆਪ ਇਨਮੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਆਪਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੇ ਲੀਏ ਜ਼ੋਹੋ 1 ਸਹੀ ਹੈ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਐਨ ਆਲ ਇਨ 1 ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਸੂਟ ਜਿਸਸੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਯੈਸ, ਯੋਰ ਇੰਟਾਇਰ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜ਼ੋਹੋ 1 ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਯੂਜ਼, ਸਾਥ ਸਾਥ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਕਾਮ ਅਨੇਕ ਸੋਫਟਵੇਅਰ 1 ਜ਼ੋਹੋ 1। ਗੈਟ ਯੋਰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਟ zoho.com/1।
11: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
12: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, ईकेजी एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स।
13: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स। ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस। फॉर एनरोलमेंट कॉल 9088222002 और विजिट aimseducation.edu।
14: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
15: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
14: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first.

0: वॉइस।
1: वही पुराना भरोसा एक नए वादे के साथ। जेसन एंड समीर आर बैक एट SD कैपिटल फंडिंग। बीट योर लॉक्ड रेट विद आवर रेट सेवर टुडे।
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
4: फेमस इंडियन एस्ट्रोलॉजर पंडित रामदेव इज नाउ इन न्यू जर्सी। Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
5: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स।
6: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन्स की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल। ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का। सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी। स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इसलिन, न्यू जर्सी।
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
7: अब मिर्ची खा।
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
6: 6:30 PM, Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
10: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
11: OTT प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा झूठ पता है क्या होता है? शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और वो कहना कि बस एक एपिसोड और, ये सेंटेंस बोलते ही ना इंसान ऑफिशियली 2 घंटे के लिए अनअवेलेबल हो ही जाता है, क्योंकि एक एपिसोड ख़त्म होता है, स्क्रीन पूछती भी नहीं और अगला शुरू हो जाता है, और हम सोचते रहते हैं कि ठीक है यार इस बार लास्ट एपिसोड, और फिर देखते ही देखते रात के 1:30 कब बच जाते हैं समझ ही नहीं आता। और शायद इसीलिए OTT प्लेटफॉर्म को हमसे ज़्यादा हमारी सेल्फ कंट्रोल पे भरोसा होता है। उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि ये लोग स्किप नहीं करने वाले, अगला एपिसोड बजेगा ही। वैसे आपके घर में बिंज वॉच चैम्पियन कौन है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। क्या वो आप हो, आपके स्पाउस हो, या वो दोस्त जो पूरी सीरीज एक वीक में खत्म कर लेता है? फिलहाल OTT एपिसोड नहीं, लेकिन ये अगला बॉलीवुड गाना जो आप स्किप नहीं कर सकते, सुनते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: This Rakshabandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Rakshabandhan with Raj Jewels.
2: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
3: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
2: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
0: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
1: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
1: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
5: This drive time is brought to you by Tanishq Jewelry. Har drive banegi yaadgar.
6: Tera kya hoga Kalia?
7: Sardar, maine aapka namak khaya Sardar.
6: Ab mirchi kha.
8: Radio Mirchi, it's hot.

कुछ खास गाने और उनके कुछ खास किस्से। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और गेरुआ ये गाना सुनते ही ना एक अलग ही ड्रीमी सी फीलिंग आ जाती है। पर एक बहुत ही अमेजिंग सा फन फैक्ट है इस गाने का कि यार अरिजीत सिंह ने जब ये गाना रिकॉर्ड किया था तो बस एक टेक में रिकॉर्ड किया था। अब ऐसे तो कई सारे गाने हैं जो एक टेक में रिकॉर्ड किए जाते हैं, लेकिन ये गाना उसमें भी खास है क्योंकि रिकॉर्डिंग के टाइम पे ना बस डायरेक्टर ने बोल दिया था कि वार्म अप के लिए एक रफ टेक ले लो, मतलब जस्ट एक यू नो एक रिहर्सल टेक ले लो। और जब वो रफ टेक अरिजीत सिंह ने गाया तो वही बन गया फाइनल मास्टर टेक। और टीम ने कहा कि यार ये आवाज़ ही इतनी अमेजिंग है, इतना एफर्टलेस डेप्थ है इस आवाज़ में, इस टेक में, कि इसी टेक को फाइनल करते हैं। तो बस फाइनल टेक कभी किया ही नहीं और यही टेक फाइनल बन चुका था। तो मतलब बोलते हैं ना कभी कभी प्रैक्टिस भी परफेक्शन बन जाती है, तो अरिजीत जी के साथ कुछ ऐसा ही होता है। और शायद इसलिए ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सिंगर्स ऑफ इंडियन सिनेमा। वैसे आपका फेवरेट अरिजीत सिंह का गाना कौन सा, टेल मी ऑन इंस्टेंट आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल सुनते हैं ये वन टेक सॉन्ग ऑफ अरिजीत सिंह, गेरुआ, राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels. Sham Shanda, let's do
1: not donkey, have a funky time. शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी

जी सिद्धि और राखी का सीजन दोनों शोरों से चल रहा है और इस बार सेलिब्रेशंस के साथ एक्साइटिंग प्राइजेस भी आपका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स, क्योंकि इस रक्षाबंधन सिर्फ रिश्तों की मिठास ही नहीं एक्साइटिंग प्राइजेस और अमेजिंग हैम्पर जीतने का मौका भी आपका इंतजार कर रहे हैं थैंक्स टू नानक फूड्स ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ। तो पार्टिसिपेट करना तो बहुत ही आसान है, आपको टाइप करना है राखी और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना है 9033647244 9033647244, या फिर आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी पर भी डीएम कर सकते हो @RJMirchiSiddhi SIDDHI। सिर्फ एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन और आप एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने की रेस में शामिल। और जी हाँ, राखी की शॉपिंग का प्लान हो रहा है तो विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड इजलिन न्यू जर्सी जरूर विजिट कीजिए। वहां फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। डिटेल्स के लिए जरूर जाइए viranijewelers.com पर। तो इस राखी मिठास भी, शॉपिंग भी और एक्साइटिंग प्राइजेस भी, क्योंकि इस बार नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स। आज ही रजिस्टर कीजिए और अब इस फेस्टिव वाइब को म्यूजिक के साथ और भी खास बनाते हैं विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La vida a la burga.
0: Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello, ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब?
2: किसके यहाँ से?
3: स्वर्गीय अनिल चौहान.
2: मतलब किसके यहाँ बात फोन मिलाया आपने?
3: स्वर्गीय अनिल के यहाँ फोन मिलाया भाई साहब. मैं बोल रहा हूँ
2: अनिल ही बोल रहा हूँ. स्वर्गीय नहीं हूँ मैं, जिंदा हूँ.
3: सर स्वर्गीय अनिल चौहान उनका पूरा नाम है. सर मैं से बोल रहा हूँ, पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से. तो ये स्वर्गीय अनिल चौहान के यहाँ से कोई हो तो उनसे बात करा दीजिए.
2: दिमाग खराब है. अब मैं खुद बोल रहा हूँ तो सोच कम से कम.
3: सर आप ये बेवकूफी की बात ना करें. आप एक तो जुबान सवाल की बात करें. मैं पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ. आप कह रहे हैं आप जिंदा हैं, यहाँ पोस्टमार्टम कर रखा है हमने. आपकी रिपोर्ट आ गई है सर, आके ले जाइए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट.
2: स्वर्गीय नहीं, तो अनिल चौहान से ही बात कर रहा है.
3: स्वर्गीय अनिल चौहान यार, आप जो लक्ष्मी नगर में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ.
2: हो गया आपका कि स्वर्गीय अनिल चौहान मैं जिंदा हूँ भाई. मैं रहा है घर परिवार वाले में, तेरे कोई पागल तो नहीं हो गया?
3: कौन पागल हो गया आपकी पोस्टमार्टम? मेरी बात सुन लीजिए आप.
2: नहीं
3: मैंने मारा पोस्टमार्टम हमने किया. स्वर्गीय अनिल चौहान से बात करनी है, उनसे बात कराई. बीच में आप कैसे आ गए यार, कमाल कर दिया आपने. दिमाग खराब मेरा नहीं हो, आपको यकीन नहीं है तो दोबारा आके पोस्टमार्टम करा लो. एक ही रिपोर्ट है दोनों की.
2: डॉक्टर बोल रहा
3: हूँ. मैं डॉक्टर विजय बोल रहा हूँ यार. मैंने खुद पोस्टमार्टम किया उनका.
2: ऐसा
3: केस हम क्या करेंगे? केस तो मैं उन पे करूंगा, स्वर्गीय अनिल चौहान पे, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पे लिखा हुआ आप बाप बनने वाले थे. वो बाप बनने वाले.
2: परिवार वाले आदमी से बात करता है कौन है तेरी?
3: बेवकूफी की बात मत करिए आप. आइए यहाँ पे पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में, दिखाता हूँ आपकी लाश, आपकी बॉडी दिखाता हूँ यहाँ पे आके. पोस्टमार्टम तो करके छोड़ूंगा मैं
2: जी.
3: स्वर्गीय अनिल चौहान जी के यहाँ से कोई बात कर सकते हैं मेरे से? मेरी बात सुनिए. आप फोन मत काटिएगा, बड़ा मुश्किल से मिलता है. अनिल चौहान जी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और आप रेडियो मिर्ची पे हैं. आपका मुर्गा बनाया है, छोटा सा मजाक किया है. आपकी उम्र बहुत लंबी है यार, आप टेंशन ना लें.
2: अरे किसी बहुत मार खाओगे आप, सही बता रहे हैं. क्या
3: सर, मैं पिटने को तैयार हूँ लेकिन आपकी हंसी सुन के मुझे मजा आता है. अब मेरे साथ आप प्यार से कह दीजिए.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: भैया मेरे राखी के.
6: दिस रक्षा बंधन सेलिब्रेट द ब्यूटिफुल बॉन्ड बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर विद अ गिफ्ट एज प्रेशियस एज योर लव. सेलिब्रेट रक्षा बंधन विद राज ज्वेल्स.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
6: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन.
6: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
8: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी, टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, ईकेजी एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थकेयर करियर्स.
6: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स. ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस. फॉर एनरोलमेंट कॉल 9088222002 और विजिट aimseducation.edu.
9: Famous Indian astrologer Pandit Ramdev is now in New Jersey. Expert in palm reading, face reading, horoscopes and birth chart. Call Pandit Ramdev for all your astrological predictions on love, relationships, business and career. Call 732-366-6777.
6: Kuch aawazein sirf gaano ko nahin,

0: सीधे आत्मा को छू जाती है। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
1: नो
0: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
2: सिमरन तू कार छड़ के किधर जा सकती है था? आई नो सिमरन, मेरी गलती है, मैं तेरे को टाइम नहीं दे सकिया।
3: नहीं राज, अपने विच पहला वर्गा हुण कुछ नहीं रहा, सब कुछ बदल गया। तू बदल गया, तेरे ड्रीम बदल गए, तेरे प्रेफरेंसेस बदल गए। कुछ है जो इन्ने सालों विच नहीं बदलिया? है कुछ?
2: हाँ।
3: की?
2: नानक रसमलाई। हाँ सिमरन, हाँ नानक रसमलाई का टेस्ट आज भी वही है जो साडे विआह तो पहला सी।
3: राज
2: सिमरन
4: नानक, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ।
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: बॉलीवुड की एक अच्छी बात यह है कि सिंगर्स का काम ना कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज भी एक अच्छी आवाज सीधा दिल तक पहुंच ही जाती है, चाहे रोमांटिक हो, सुकून भरी हो या थोड़ी इंट्रोस्पेक्टिव। आज के गाने लाउड होने से भी ज्यादा लास्टिंग होने पे फोकस कर रहे हैं और ऑनेस्टली ये फेज काफी रिफ्रेशिंग लगता है। तो आप भी बताना कि आपको बॉलीवुड सॉन्ग में सबसे ज्यादा क्या कनेक्ट करता है, लिरिक्स या वॉइस? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत आवाज का ये खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: ये गाना था करण अर्जुन का, लेकिन लिखा गया था हर भाई बहन के लिए। लड़ाई चाहे रिमोट के लिए हो या आखिरी लड्डू के लिए, प्यार छुपा होता है हर झगड़े के पीछे।
2: तू ना कभी चेंज नहीं होगा,
3: और तू तो देवी है ना।
4: इस राखी बोल दो दिल की बात, क्योंकि नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
1: टू रजिस्टर टाइप राखी एंड सेंड इट टू 9033647244
4: एंड विन गिफ्ट हैम्पर्स फ्रॉम नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.
5: This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
6: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
7: I am not going to bed with you ever again.
6: But why? What did I do?
7: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
6: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
7: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
6: Yes, yes, yes, come soon. Honey!
7: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
8: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
9: Food?
10: Yes.
9: Shopping?
10: Yes.
9: Entertainment?
10: Double yes.
9: Aur health fair?
10: Of course. Sab kuch ek hi jagah. Indo-American Community Fair. September 12th or 13th. Sri Krishna Mandir, Morganville.
11: For vendors and information, visit www.krishnatemple.org.
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: भाई बहन का रिश्ता होता है प्राइसलेस, तो राखी की कोई कीमत क्यों हो?
15: सेलिब्रेट राखी विद राजभोग। राजभोग विशेस यू अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। ऑर्डर्स ऑन राजभोग.com और विजिट योर लोकल ग्रोसरी स्टोर।
16: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
17: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
16: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
18: इंडिया के रंग, सुर और स्वाद सब कुछ एक जगह।
19: एक्सपीरियंस जन्माष्टमी फेस्टिवल विद कृष्णा लीला, ट्रेडिशनल डांसेस, लाइव म्यूजिक, भजन, डिलीशियस फूड, शॉपिंग एंड किड्स एक्टिविटीज।
18: संडे अगस्त 23rd 1 to 6 PM, न्यू Brunswick Performing Arts Center, located at 9 Livingston Avenue, New Brunswick. Free entry and parking. Our website is www.newbrunswickarts.org. Call Tracy at 908-917-2862.
20: At Tanishq, no two diamonds are exactly alike. They're beautifully rare, just like the woman who wears them. That's why this is the perfect time to find yours at the Tanishq Festival of Diamonds, with up to 25% off on diamond value and making charges, plus zero deduction on your old gold exchange above 18 carat. Visit Tanishq, New Jersey at 1429 Oak Tree Road, Islin, New Jersey today. Tanishq, a Tata product. Terms and conditions apply.
21: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
22: Goalie goes down the ground. Goalie goes out of the ground.
21: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
23: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
21: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं।

0: It's 7:30 PM. Mirchi Time Check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.
1: Sham Shanda. Let's do not donkey have a funky time.
2: बॉलीवुड म्यूजिक का डिबेट कभी खत्म ही नहीं होता. ओल्ड इज गोल्ड या न्यू इज बोल्ड. शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों. मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी. और पुराने गाने ना यार टाइम लेते थे दिल में बसने के लिए, लेकिन नए गाने इंस्टेंट वाइब देते हैं. पहले लिरिक्स डायरी जैसे लगते थे, लेकिन आज बीट्स प्लेलिस्ट फ्रेंडली हो गए. दोनों का ना अपना ही अलग चार्म है. एक मेमोरी बनाता है, लेकिन दूसरा मोमेंट बनाता है. और शायद इसी बैलेंस में बॉलीवुड म्यूजिक सरवाइव कर रहा है. वैसे आप भी बताओ दोस्तों, आपका मूड आज किस तरफ है, रेट्रो या रीसेंट? डीएम मी ऑन इंस्टा @RJ मिर्ची सिद्दी SIDDHI. फिलहाल मेरा मूड क्या कहता है वो तो आप अभी सुनेंगे राइट हियर ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: This Raksha Bandhan, celebrate the beautiful bond between a brother and sister with a gift as precious as your love. Celebrate Raksha Bandhan with Raj Jewels.
1: Jai Gurudev. અવસર આવીને ઉભો છે આંગણે. ચલો ભેગા મળી ગણેશજીના આગમનની તૈયારી કરીએ. આપણે ગાયત્રી ચેતના સેન્ટરના ગણેશ ઉત્સવમાં જોડાયો, જેમાં 14 સપ્ટેમ્બર સોમવારે સાંજે 4 વાગે થશે ગણેશ સ્થાપના, અને સાંજે 7 વાગે થશે ગણેશ આરતી, અને 20 સપ્ટેમ્બર સાંજે 4 વાગે વિસર્જન. વધુ માહિતી માટે કોલ ગાયત્રી ચેતના સેન્ટર, વિસ્કાટવે, ઓન 7323578200. જય ગુરુદેવ.
2: रिश्ते विश्वास से बनते हैं, रिश्ते निभाने पड़ते हैं. ऐसे ही खास रिश्तों को संजो कर रखने के लिए गेट ऑथेंटिक एंड प्योरेस्ट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी फ्रॉम सुहाग ज्वेलर्स.
3: खूबसूरत कारीगरी और एलिगेंट डिजाइन की सुहाग ज्वेलर्स की हर ज्वेलरी बनाए आपके खुशियों के पल को स्पेशल. ये भरोसा है साथ का साथ हर खुशी का. सेलिब्रेट बॉन्ड ऑफ प्योरिटी. स्टेप इनटू सुहाग ज्वेलर्स एट 1367 ओक ट्री रोड, इज़लिन, न्यू जर्सी.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी.
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
5: विजिट टुडे, 1358 ओक ट्री रोड, इज़लिन.
6: दिस ड्राइव टाइम इज ब्रॉट टू यू बाय तनिष्क ज्वेलरी. हर ड्राइव बनेगी यादगार.
7: तेरा क्या होगा कालिया?
8: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
7: अब मिर्ची खा.
9: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक दोस्तों. चलिए 8 बजने वाले हैं, इसका मतलब मेरा वीकेंड शुरू होने वाला है और इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय, टाटा, सायोनारा टू यू गाइस. लेकिन आप कहीं ना जाइए क्योंकि आपकी पार्टी यहीं पर शुरू हो सकती है. जी हाँ, क्लब मिर्ची शो आ रहा है, तो बस डीजे की जरूरत ही नहीं है, गाने यहीं पे बजाइए और अपनी पार्टी शुरू कीजिए राइट हियर ऑन मिर्ची. शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, दिस इज मिर्ची सिद्धि साइनिंग ऑफ.